करती हूँ, क्योंकि हम सवेरे उठ करके सभी एक साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सचेत हो रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो हम जागरूक हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात है। आइए आज हम उसी 30 दिवसीय योग शिविर में, जो कि एक सीरीज चल रही है, एक योग शिविर चल रही है, जिसमें हम हर रोज कुछ न कुछ नए आसनों के साथ में एक शब्द उत्पत्ति कर रहे हैं। एक शब्द उत्पत्ति को साथ में जोड़ना आसन के साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण इसलिए है क्योंकि आसन, व्यायाम, प्राणायाम को जब हम साथ में करते हैं तो हमें उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन हम साथ में यदि किसी शब्द की उत्पत्ति को लेकर के करते हैं तो हमें उस शब्द की उपयोगिता के साथ साथ आसन की उपयोगिता भी साथ में सुनने और समझने को मिलती है। हमेशा से हमने सुना है कि हम कोई भी प्राणायाम आसन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम सुखासन की स्थिति में बैठते हैं या पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं। आपने क्या कभी ये सोचा है कि सुखासन और पद्मासन को ही हम आगे सभी आसनों के पूर्व क्यों करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम सुखासन पर ही क्यों बैठते हैं और बाकी आसनों को करते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुखासन और पद्मासन हमारे लिए हर आसन के पहले महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उसके पहले जो एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ने वाला है वह है प्रसन्नता। प्रसन्नता सुखासन एवं पद्मासन। प्रसन्नता सुखासन इसलिए है क्योंकि हम जब किसी भी अवस्था में बैठते हैं तो बड़ी ही चातुरता से उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी प्रसन्नता को पीछे छोड़ आते हैं। हमें ये लगता है कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम चाहे वो सीट पे बैठे हों, हम चाहे वो आरामदायक कुर्सी पे बैठे हों, हम चाहे पलंग पे बैठे हों या हम मैट बिछा करके जमीन पे बैठे हों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम किस आकार में और अपनी किस मन की स्थिति में बैठे हुए हैं। उसी मन की स्थिति को आरामदायक स्थिति भी कहते हैं। देखा गया है कि यदि जब हम कोई आसन प्राणायाम को करें तो हमें सबसे महत्वपूर्ण एक दशा जो सभी लोग कहते हैं हमें करनी पड़ती है, जो कि है सुखासन। सुखासन या पद्मासन। सुखासन इसलिए क्योंकि हम कोई भी आसन जब करने जा रहे हैं तो उसे हम सुखपूर्व ही कर सकते हैं। सुखपूर्व इसलिए क्योंकि जब हम किसी आसन को बड़ी ही तीव्रता से, बड़ी ही लगन से करते हैं तो हमें सुख की उत्पत्ति मिलती है। तो आज प्रसन्नता, जो कि शब्द अपने आप में ही एक विस्तृत जानकारी देता है, नाम से ही विदित है प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब होता है आंतरिक खुशी। कोई भी कार्य करने से जब हमें आंतरिक खुशी मिलती है तो हमारे मुख पर अपने आप से प्रसन्नता आती है, या हम यूं कह सकते हैं कि जिस काम की रुचि में हम, मुझे लगे कि ये काम हम कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता का अर्थ ये हुआ कि हम यदि आपस में मिलजुल करके कोई कार्य करें और उसका जो परिणाम हो वह खुशी व प्रसन्नता हो। तो आइए हम प्रसन्नता की और एक परिभाषा देते हैं। प्रसन्नता की परिभाषा ये हुई कि जिस कार्य में हमें एक रुचिपूर्ण लगे कि हम इस कार्य को करने पर हमारे चेहरे पर एक खुशी का माहौल आ जाता है। हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों का मन खेलने में लगता है, कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, कुछ बच्चों का मन बाहर की एक्टिविटीज में लगता है जो कि आजकल प्रमुख रूप से कराई जा रही हैं, जैसे एक्टिविटीज में बुक्स रीड करना यानी कि किताबें पढ़ना, डांस करना, गेम खेलना, योगा करना और कुछ भी आपके मन चित में अगर चल रहा हो तो हम उसे पूर्ण करने की एक ललक। जिसमें आपकी मन की रुचि, जिसमें आपकी मन की रुचि है, आपकी प्रसन्नता है, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण ध्येय जो होता है वह है प्रसन्नता एवं रुचि। प्रसन्नता और रुचि को हम एक साथ इसलिए कह सकते हैं

यदि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसके प्रति रुचि होती है और रुचि का मतलब प्रसन्नता। जैसे हम आपको अपने तौर पर बताते हैं, मेरा मेन रुचि कारक जो है वो है नृत्य यानी कि डांस। जब हम किसी भी अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये कार्य हमें हमारे मन की खुशी को वापस लौटा देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम संगीत सुन करके खुश रह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम डांस करके खुश रह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम किसी अवस्था में जा रहे हैं और हमें घूमना अच्छा लगता है तो हम खुशी मना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बुक्स रीड करना, मोबाइल से बातें करना, मोबाइल में बैठ कर के, आजकल तो मोबाइल एक ऐसा एक यंत्र हो गया है जो सभी के हाथों में है। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने मन को जब एकत्रित कर लेते हैं, हम अपनी खुशी को पा लेते हैं, तो हमारे चेहरे पर वो अपने आप से प्रसन्नता आने लगती है। इसका मेन कारण यही है कि जिस कार्य को रुचिपूर्ण करिए और उस कार्य को करने के बाद में प्रसन्नता। तो आइए हम आज आपके साथ में जिस आसन के बारे में बताने जा रहे हैं उसके पूर्ण नाम है प्रसन्नता एवं रुचि। प्रसन्नता हमारे चेहरे पर जो की लाती है, बहुत ही पूर्ण रूप से प्रसन्नता होती है। सबसे मेन कारण होता है खुशी का। हमारे चेहरे पे अगर खुशी है तो ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो पद्मासन सुखासन यानी प्रसन्नता पद्मासन एवं सुखासन। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मासन। तो आइए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं प्रसन्नता पद्मासन की ओर। पद्मासन या कमल आसन बैठकर की जाने वाली योग मुद्रा है जिसमें घुटने विपरीत दिशा में रहते हैं। इस मुद्रा को करने से मन शांत व ध्यान गहरा होता है। कई शारीरिक विकारों से आराम भी मिलता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से साधक कमल की तरह पूर्ण रूप से खिल उठता है, इसलिए इस मुद्रा का नाम पद्मासन है। पद्मासन की विधि हम आपको बताएंगे कि पद्मासन कैसे किया जाता है और कितनी देर किया जाता है। पद्मासन में हम कितनी देर बैठ सकते हैं। धीरे धीरे आपका मन जब शांत होने लगे तो इस आसन को हम 5 मिनट भी बैठ सकते हैं, परंतु प्रारंभिक अवस्था में हम 1 से 1.5 मिनट ही पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन कब करना चाहिए? पद्मासन इस योगासन को करने के दौरान दिमाग को केंद्रित किया जाता है और यही वजह है कि यह दिमाग को शांत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। जैसा कि हमने अभी प्रारंभिक रूप में बताया कि प्रसन्नता एवं रुचि पद्मासन की नाम आगे जोड़ने का कारण यही है कि जब हम पूर्ण रूप से रुचिपूर्ण हो जाते हैं और हमें प्रसन्नता होती है तो ही हम पद्मासन को कर सकते हैं और हमारे दिमाग को शांत करने के लिए सक्रिय रूप से यह तभी कार्य भी कर सकता है। पद्मासन को दिन में 2 बार सुबह एवं शाम अभ्यास कर सकते हैं। घुटनों का सेहत यानी कि घुटनों की बहुत ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें घुटनों के दर्द हो सकता है, घुटने न मुड़ना, उसमें विशेष ध्यान रखने के लिए पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। आइए अब हम पद्मासन सीखते हैं। पद्मासन की पहली प्रक्रिया, पैरों को सामने की ओर फैलाकर योगा मैट या किसी चद्दर पर, साफ सुथरी चद्दर पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। पहले हम आपको बता दें कि दाहिने घुटने को मोड़ें और बाहिनी जांघ पर रख दें। दाहिनी घुटने को मोड़ें और बाहिनी जांघ पर रखें। ध्यान रहे कि एड़ी उदर के पास हो और पांव का तलवा ऊपर की ओर हो। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़ें, पांव विपरीत जांघों पर, हाथों को मुद्रा स्थिति में घुटनों पर रखें, यानी कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे मोड़ करके, फिर सीधा व रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इसी स्थिति में रहकर हम लंबी गहरी सांस एक बार ले सकते हैं और एक बार छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से
पद्मासन की स्थिति में हम बैठ सकते हैं। हम एक बार आपको पुनः बता देते हैं, पैरों को सामने की ओर फैलाकर योगा मैट पर या साफ सुथरी चद्दर पर बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दाहिने घुटने को मोड़ें और बाहिनी जांग पर रख दें। ध्यान रहे कि एड़ी उधर के पास हो और पांव का तलवा ऊपर की ओर हो। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर पर दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़ें, पांव विपरीत जांघों पर, हाथों को मुद्रा स्थिति पर घुटनों पर रखें। सिर सीधा व रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसी स्थिति में बने रहने पर गहरी लंबी सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे। पद्मासन के लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? मुद्राएं शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ाती हैं और यदि पद्मासन के साथ किया जाए तो बेहतर परिणाम तो मिलेंगे ही। हर मुद्रा दूसरी मुद्रा से भिन्न है और उनसे होने वाले लाभ भी। पद्मासन में बैठकर चित्त मुद्रा व आदि मुद्रा का ब्रह्म मुद्रा को अपनाकर आप अपने ध्यान में और गहराई ला सकते हैं। कुछ देर तक मुद्रा की स्थिति में रहते हुए श्वास लें और शरीर को ऊर्जा के साथ महसूस करें। जो लोग पहली बार इस मुद्रा को कर रहे हैं यानी पद्मासन को कर रहे हैं, तो आप दोनों पैरों को मोड़कर, जो अगर परेशानी हो रही है तो आप उस तरीके से विपरीत जांघ को कर सकते हैं। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मासन के लाभ। वैसे तो पद्मासन के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन प्रसन्नता और रुचि पूर्ण पद्मासन के लाभ बहुत सारे हैं। पाचन क्रिया में सहायता करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है व रक्तचाप को नियंत्रित करता है, मन को शांति प्रदान करता है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता प्रदान करता है और यदि किसी को भी मासिक चक्र की परेशानी हो तो उसको कम करता है। पद्मासन को किए जाने से पूर्व कोई ऐसा आसन जो कि आप कर सकते हैं वह है अनुलोम विलोम कपालभाति, जिसे आप बड़ी ही तल्लीनता से करते हैं। तो ये था प्रसन्नता और रुचिपूर्ण पद्मासन, जो हम किसी भी अवस्था में बैठ करके कर सकते हैं, जिसके लाभ, सावधानियां, विधि हमने आपको बताई। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि भोजन के बाद क्या पद्मासन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई भी आसन प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें भोजन 8 से 9 घंटे ज्यादा पर्याप्त होते हैं, लेकिन 5 से 4 घंटे पहले हम पद्मासन स्थिति या कोई भी आसन करने के लिए हमारे लिए पर्याप्त होगा। यानी हम 5 से 6 घंटे पहले भोजन करके ही कोई आसन, व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं।

पूरी पूरी तल्लीनता, पूरा पूरा विश्वास। वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मन चित्त को ये एक आश्वासन देना चाहिए कि हमें इसका संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में जो भी आशंकाएं हैं, उसका दुष्परिणाम हम पर होने लगता है। इसीलिए यदि आप कोई भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, कसरत कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि यह हमारे लिए अति उपयोगी है और इसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आपने आज हर बार की तरीके से आज हमने 30 दिवसीय योग शिविर में पद्मासन की क्रिया को किया, साथ ही साथ में प्रसन्नता और रुचिपूर्ण होते हुए भी इसको और रुचिपूर्ण बनाते हुए हम सब लोगों ने मिलकर के आज पद्मासन सीखा। तो किसी भी आसन, कोई भी योगा, कोई भी आप कसरत कर रहे हैं, तो उसके पूर्व पद्मासन की स्थिति में आप जरूर से बैठें, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। इस श्रृंखला में हम कल फिर मिलेंगे एक नए योगासन के साथ में, एक नए आसन के साथ, एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ। तो तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम जिस योग आसन को बताने जा रहे हैं, जिस प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं, वो हम सभी के लिए, यानी कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, 40 के बाद, 35 के बाद, हमें बहुत सारे ऐसे योग प्राणायाम की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी बढ़ती उम्र को एक तरह काम करता है रोकने का। अब आप कहेंगे कि योगिनी समता ये क्या कह रही है कि एज को, उम्र को कोई कैसे रोक सकता है? बिल्कुल, इसके लिए एक लाइन में आपसे बताना चाहती हूँ। चेहरे बोलेंगे, उम्र तो कोई खास नहीं। एंटी एजिंग यानी बढ़ती उम्र में महिलाओं को अक्सर त्वचा के ढीले पड़ने और झुर्रियों की शिकायत होती है। ऐसे में फेस योग एंटी एजिंग के लिए एक चमत्कार की तरह होता है। जिंदगी भर चलने वाली यह प्रक्रिया विकास, उम्र का बढ़ना भी इसी विकास का हिस्सा है, जिस दौरान शरीर से लेकर त्वचा में ढेर सारे बदलाव आते हैं। बढ़ती उम्र में त्वचा को हेल्दी और युवा बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर वर्तमान जीवन शैली में, जब हमारी जीवन शैली, हमारा वन डे रूटीन इतना ज्यादा ऊपर नीचे, इधर उधर, यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्तता से भरा रहता है। इसी स्थिति में त्वचा को टाइट और युवा रखने के लिए नियमित रूप से कुछ फेस योगासनों का अभ्यास फायदेमंद साबित होता है। खास बात यह है कि इन फेस योगासनों के लिए किसी भी खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन आसनों को किसी भी समय और कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। असल में फेस योग एक प्रकार की योग प्रैक्टिस है, जिसमें चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करने के लिए विशेष अभ्यास किए जाते हैं। ये योगासन त्वचा को निखारने, झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक लाने में मदद करते हैं। फेस योग में विभिन्न प्रकार के चेहरे के व्यायाम, फेस योग में विभिन्न प्रकार के चेहरे के मुद्रा और श्वास तकनीक शामिल होती हैं, जो चेहरे की मांसपेशियों को सख्त करती हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, या कहें कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा, उतना ही त्वचा हमारी हेल्दी रहती है। शरीर में ऑक्सीजन का सही संतुलन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक बनाए रखता है। सही ब्लड सर्कुलेशन त्वचा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए दिनचर्या में गहरे श्वास वाले प्राणायाम को अवश्य शामिल करें। प्राणायाम के लिए शुद्ध स्वस्थ स्थान पर बैठें। उसके लिए सुबह का सबसे अच्छा स्थान और समय माना गया है, इसीलिए शांत जगह पर बैठकर कमर गर्दन को सीधा रखें और धीरे धीरे
श्वास पर ध्यान दें।

देखते हुए गहराई से श्वास को भरें और गहराई से श्वास को छोड़ें। इस क्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसके लिए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठें। प्राणायाम किसी भी एक नासिका से शुरू किया जा सकता है, मगर सही तरीके से और सही समय पर यह करना चाहिए। 15 से 20 बार यह अनुलोम विलोम करने के बाद में आपकी क्षमता जिस तरीके से आगे बढ़े, उसे धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। यह स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा और स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मददगार रहेगा, जिसका सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखाई देगा। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, आजकल टीनेजर्स को, महिलाओं को, लड़कियों को मुहासों की समस्या बहुत होती है, एक्निक, जिसमें हम कराने जा रहे हैं आज शशांक आसन। शशांक आसन चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है। इस आसन को करने से चेहरे की त्वचा पर रक्त संचार बढ़ता है, इससे त्वचा में निखार आता है और चमक दिखाई देने लगती है। सबसे अहम है कि शशांक आसन से चेहरे की मांसपेशियों में कसावट में सुधार होता है, जिससे चेहरे की झुर्रियां, फाइन लाइंस कम होती हैं। इस आसन को करने के लिए आप वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सामने की तरफ पूरी तरह झुक जाएं, जिससे दोनों हाथ सामने रहेंगे और माथा जमीन से टच करेगा। इस मुद्रा में होने पर आपको महसूस होगा कि ब्लड सर्कुलेशन दिल और चेहरे की तरफ है। असल में जिस तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस अंग को पोषण भी मिलता है। शशांक आसन से मानसिक तनाव भी कम होता है, जो त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके नियमित अभ्यास से त्वचा स्वस्थ, निखरी और युवा बनी रहती है तथा मुहासे जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राकृतिक चमक के बारे में। प्राकृतिक चमक हर एक महिला, हर एक लड़की की एक ये ख्वाहिश होती है कि हमारे चेहरे पर प्राकृतिक चमक हो। तो उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंडूक आसन। अब बात करते हैं मंडूक आसन कैसे होता है। मंडूक आसन की जो त्वचा को हेल्दी, यंग और ग्लोइंग रखने में मदद करता है। मंडूक आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को नाभि पर रखते हुए सामने की तरफ झुक जाएं। जितना झुक सकती हैं, लेकिन गर्दन को थोड़ा ऊपर ही रखें। थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। मंडूक आसन की इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। ध्यान दें कि मंडूक आसन पेट के लिए अधिक फायदेमंद होता है। अगर आपको इस आसन के त्वचा पर लाभ दिखने लगे, तो नीचे झुकते हुए गर्दन को ऊपर की ओर रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं होगी। मंडूक आसन से चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और वहां मौजूद त्वचा में रक्त का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे त्वचा में ताजगी आती है और निखार आता है। साथ ही साथ प्राकृतिक चमक भी बढ़ती है और झुर्रियां कम होती हैं। आइए अब हम चलते हैं एक आम समस्या पर, क्योंकि आजकल ये आम समस्या सभी को देखने के मिलती है। डबल चिन के लिए गर्दन और हमारे गालों के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसमें डबल चिन हो जाती है, यानी चिन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो लटकने लगता है, चाहे आपका चेहरा भरा हुआ हो या फिर थोड़ा सा पतला हो, तब भी डबल चिन की समस्या सभी को होती है। उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भुजंग आसन और सर्पासन। भुजंग आसन और सर्पासन से चेहरे की त्वचा को कई लाभ मिलते हैं। यह आसन गर्दन, सिर और चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं और त्वचा को टोन करते हैं।
जिससे त्वचा पर निखार आता है। ये आसन तनाव को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर मौजूद दाग धब्बे और मुहासे कम होते हैं। इसके अलावा भुजंग आसन, सर्पासन त्वचा की कसावट को बनाए रखते हैं तथा झुर्रियों को बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा करते हैं। भुजंग आसन करने के लिए सर्वप्रथम आप पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें और दोनों पैरों को पीछे मिलाएं।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह

0: व्हाट इज दिस? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, आई एम टेलिंग, अगर पैसा नहीं आया ना, यू विल हैव टू पे।
1: बट पापा, शी इज नाइस।
2: भैया देखो, दिल्ली वाली दीदी आ गई।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग वाले शो में। और आज ऑफकोर्स दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा है, क्योंकि भाई आसमान पर बदली छाई हुई है, यानी कि मौसम ने इशारा किया है कि वो आज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस बेहतरीन से मौसम का मज़ा उठाना है। और वो कैसे भाई, अपनी हर एक फेवरेट चीज़ें करके, जैसे कि सुबह होते ही 89.6 एफएम ट्यून करके और उस पर प्ले हो रहे गाने सुन करके, या फिर कुछ गानों को डेडिकेट करते हुए, और साथ ही साथ एक बढ़िया सी गर्मा गर्म प्याली वाली चाय को सिप करते हुए। इतना कुछ तो है हमारे पास जो हम आज इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बहरहाल आपका क्या है मानना, ये ज़रा आप सोचिए और सोचने के बाद बताइए कि आपके पास आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको करके आप ख़ुद को बेहतर फील करा सकते हैं। जी हाँ, और ख़ुद को बेहतर फील कराना भाई ये हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है और ये हम खुद ही लेने वाले हैं। तो चलिए, जब इतना बेहतरीन मौसम है, इतना अच्छा समय है, तो क्यों ना आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आखिर क्या है और क्या ऐसी बातें बता रहा है जो हमको जाननी है जरूरी।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट बड़ा ही खूबसूरत है। क्या कहता है आज का थॉट ऑफ द डे? आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि भाई जिंदगी भर जिज्ञासु बने रहिए, जिंदगी भर जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि हर नया सवाल समझदार बनने का मौका है। जिंदगी भर जिज्ञासु बने रहिए। जिज्ञासु, यस, क्यूरियस, यानी चीजों को जानने की इच्छा रखने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर चीज जान सकते हैं या आपको हर एक चीज में दिलचस्पी आ सकती है, लेकिन आपको जिन चीजों में आती है, जिन सेक्टर्स में आती है, जिन सब्जेक्ट्स में आती है, जिन एरियाज में आती है, जिस टाइप के लोगों में आती है, जैसे आती है, वहां पर आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि भाई आखिर आपको दिलचस्पी किस में आ रही। क्योंकि बड़ा ही प्यारा थॉट है और ये थॉट कह रहा है कि अगर आप जिज्ञासु बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर नए सवाल आएंगे, और अगर नए सवाल आएंगे तो ये बिल्कुल फैक्ट सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर चीज़ों को समझने की ताकत और बढ़ रही होगी। और समझना चाहिए, क्योंकि आपको नए नए आयाम मिलते हैं, नए नए एंगल्स मिलते हैं सोचने के, समझने के, और ये एंगल्स हमेशा ही रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये एंगल जो है हमें लाइफ में नए आयाम जब देता है तो उसी बोरिंग सी लाइफ को हम नए तरीके से देख पाते हैं और हमको उन्हीं चीज़ों में कुछ नया अलग मिल जाता है, और यही खूबी है नए तरीके से देखने की। बिलकशक। सो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात हम समझ रहे हैं तो हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज्ड नज़र आने वाली है। तो आपको कई चीज़ों में समझदारी समझ में आएगी, और जब हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो हमको अपना दुख दर्द, अपना जो पेन है वो भी समझ में आने लग जाता है, किसी और की प्रॉब्लम को भी हम समझ पा रहे होते हैं, किसी के दूसरे को दर्द को भी हम महसूस कर पा रहे होते हैं। क्योंकि फिर हम सिर्फ अपने तक नहीं रहते बल्कि चीज़ों को समझने के लिए हम सिनारियोस को समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है, क्योंकि आपको हर रोज़ कुछ नया मिलने लग जाता है, आप चीज़ों को जानने की सोचने लग जाते हैं, और इस तरह से आपकी लाइफ में फिर कुछ नया आने लग जाता है। तो ये फैक्ट है और ये फैक्ट यूं ही चलेगा, ऐसा ही रहता है फ़िलहाल। सो मुझे लगता है कि इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमें जो ये लाइफ मिली है इसमें अगर हम जिज्ञासु बनकर रहते हैं चीज़ों को, क्यूरियस बनकर के जानने के प्रति, तो हमको काफ़ी कुछ सच में समझ में आने लग जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे, और आपको पता है कि हाँ ये थॉट ऑफ द डे कितनी सच्ची बात कह रहा है। फिलहाल आप भी क्या जिज्ञासु हैं, और जब जब आप जिज्ञासु बने हैं तो आपको भी क्या लाइफ में कुछ नया मिला है? जिन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर नई नई जिज्ञासा रही है उससे आपको क्या समझ में आया है, उससे आपको क्या मिला है, आपने क्या समझा है? और आपने अपने आसपास ऐसे किसी शख्स को देखा हो जो सच में क्यूरियस रहता हो? वो बहुत कॉमन बातें नहीं करता है, वो ऐसी बातें करता है कि आप हैरान हो जाते हैं। भले ही आप उसकी बातों से इत्तेफाक ना रखते हो लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मुंह पे आप कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल में मेरा ये कोई ओपिनियन नहीं है, तो कई बार लगता है कि यार हमारा ओपिनियन शायद वही है जो कॉमनली हमने बिना सोचे बस यूं ही बोल दिया है, और सामने वाले ने अपना एक पर्सपेक्टिव खुद से बनाया है, खुद से बुना है अपना एक नया ओपिनियन, और वो हमको ज़्यादा पसंद आने लगता है। तो अब कभी भी लगे तो आप क्यूरियोसिटी अपनी जाहिर ज़रूर करिएगा और नई चीज़ों के बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि थॉट भी यही कह रहा है कि ज़िंदगी भर आप जिज्ञासु बने रहें, क्योंकि हर नया सवाल जो आपके जहन में आएगा वो आपको समझदार बनने का मौका देगा। अब जिस भी चीज़ को लेकर के आता है, अगर सवाल आया उसका जवाब आप ढूंढेंगे, जवाब ढूंढने में आप चीज़ों को, कई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कई नई चीज़ें समझ में आएंगी, और यही तो रहेगा मेरे दोस्त जो आपको समझदार बनाएगा। तो चलिए वो वाला नहीं, वो वाला समझदार बनते हैं जिसमें ज़िंदगी का मज़ा है और हम चीज़ों को और लोगों को और सिनारियोज़ को जान पाते हैं।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई, इसी बातचीत के बीच में आपके कुछ मैसेजेस आ गए हैं, और साथ ही साथ चूंकि आपने ट्यून कर लिया है फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के एप्लीकेशन से, सो क्या कुछ लिखा है चैट पर ये हम पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं। क्योंकि आप अगर सुनते हैं 89.6 एफएम को उसकी एप्लीकेशन से, सो आपको मौका मिलता है चैट पर लाइव बातचीत करने का और अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया, सिर्फ इतना देखो वो तुम्हें क्या सिखा गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। और ये लिखा है अनूप मिश्र जी ने। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सुप्रभात आपको भी। आशु जी हमारी लखनऊ से मौजूद हैं, लिखा है सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। आगे लिखते हैं, चुरा लीजिए कुछ खूबसूरत से पल जिंदगी से हर रोज, जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। वाओ क्या बात है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी लिखती हैं, सर जी सुप्रभात, सुप्रभातम आपको भी। साथ में आपने लिखा है, वाओ लवली थॉट, मैं प्रेजेंट में भी जिज्ञासु हूं और फ्यूचर में भी जिज्ञासु बनी रहना चाहूंगी सदा ही सदा। क्या बात है, तो ये सदा ही आपकी मनोकामना पूरी रहे और आप ऐसे ही जिज्ञासु बनी रहें, क्योंकि ये आपको बताया कि भाई क्या कुछ मिलता है जिज्ञासु बने रहने में। आशु जी हमारे लखनऊ से लिखती हैं, तुम अपने आप में पर्याप्त हो, तुम्हें केवल कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है। बस तुम विचारों के सागर में डूबे हुए हो और इसका उपाय सिर्फ साक्षी भाव है, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, ये सागर खुद तुम्हें किनारे तक ले जाएगा। वेरी नाइस थॉट सर, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट पसंद आया है। और देखिए भाई, किचन से फौरन निकल करके गीता जी ने भी फटाफट से टाइप करके हम तक मैसेज पहुंचा दिया है गुड मॉर्निंग का अपना। आपको भी गुड मॉर्निंग, आप भी जुड़ गई हैं 89.6 FM गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और साथ ही साथ हर वो शख्स जो इस वक्त जुड़ा हुआ है, हर वो इस परिवार का हिस्सा जिन्होंने फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से या फिर रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से ट्यून किया, आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। सो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक को आपको सुनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवाज़ और ये गाना आपको दोनों ही नोन लगने वाला है, दोनों को ही आप पहचानते हैं और आप कहने वाले हैं हाँ इसको तो काफ़ी सुना है।

आपको अंदाजा है कि अगर मान लीजिए हम ये सवाल आपसे करें तो इसका क्या जवाब होने वाला है? अगर मान ली मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में आखिर कितना वक्त लग सकता है, तो जरा आप सोच करके बताइए या कहीं से भी ये जान करके बताइए कि 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में कितना वक्त लगता है, जरा बताइए। और उसके बाद हम बताते हैं कि ये फैक्ट क्या है और एक्चुअल में कितना वक्त लग जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में। जी हाँ, 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में आखिर कितना वक्त लग जाता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपको अंदाज़ा है और आप समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि आखिर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में कितना वक्त लगता है, और इसके पीछे की पूरी पूरी कहानी को आ करके आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपसे ही बताने वाले हैं। और आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं, चूँकि हम उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते इसलिए हम समझ ही नहीं पाते, हम जान ही नहीं पाते। लेकिन जब हम जानते हैं तो भाई हैरान हो जाते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें इतनी ज़्यादा कीमती है या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा अंदाज़ा भी लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि ये सारी बातें हम आपस में ज़रूर जानें कि भाई हमारे आसपास की जो कुछ भी चीज़ें हैं वो दरअसल कैसे काम करती हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं आपकी मॉर्निंग वाले शो में। क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करिए और बताइए सवाल का जवाब कि आखिर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है। मतलब अंदाजा लगा लो आप यार, कितना वक्त लग सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, कितना लग सकता है।

0: सो मैंने सवाल किया था कि भाई 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में आखिर कितना वक्त लग सकता है, कुछ घंटे, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ दिन या कुछ साल। चलिए इस पर आप लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, किसने क्या लिखा है आइए आपको हम बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें जो पहला सवाल का जवाब दिया है वो गीता जी ने दिया है और आपने लिखा है सैकड़ों साल। ऑलराइट, आपका मानना है कि 2 से 3 सेंटीमीटर को मिट्टी को बनने में आपने बताया कि सैकड़ों साल लग सकते हैं। अच्छा, दूसरा रिस्पांस आया है आशु जी का लखनऊ से, लगभग 100 से 1000 साल का लंबा वक्त लगता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है और पेड़ पौधे कैसे हैं। फिलहाल आपने लिखा है पता नहीं, अब कितना सही है अब कितना गलत है, जो समझ में आया लिख दिया। ऑलराइट, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने, यानी हमारी गीता जी ने और हमारी आशु जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। सवाल यही था कि 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में कितना वक्त लग सकता है। मतलब आप सच में हैरान हो जाएंगे कि हाँ 1000 साल लग जाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर जस्ट मिट्टी के बनने में। अब जरा सोचिए, मिट्टी आखिर कितनी ज्यादा कीमती है जिसको 1000 साल के आसपास लग जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में। अब बात आती है कि आखिर मिट्टी हमारे लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको हम एक बात बता दें, फैक्ट जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे, और वो फैक्ट ये है कि पूरी पृथ्वी पर पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा जीवित सूक्ष्म जीव जो है, यानी जिंदा सूक्ष्म जीव, वो 1 चम्मच मिट्टी में होते हैं। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हर देश को मिला लिया जाए, हर जनजाति मिला लिया जाए, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, पथरीले इलाकों में रहने वाले, कहीं भी रहने वाले, उन सब को मिला लीजिए, वो बहुत कम है

जितना कि एक चम्मच अगर आप मिट्टी उठाते हैं उसमें इतने जीवित सूक्ष्म जीव हैं। अब जरा सोचिए कि ये मिट्टी कितनी कीमती है जिसको हम मिट्टी समझते हैं। दरअसल वो हीरा, सोना और यूरेनियम जैसे जो पदार्थ हैं इसके आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, दूसरी आपको हम बड़ी वजह बताएं कि आखिर मिट्टी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 1000 साल से ज़्यादा का वक्त भी लग जाता है। जी हाँ, 1000 साल से ज़्यादा का वक्त। अब ज़रा सोचिए कि भाई 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी यार कितना ही होगी, कितनी होती है, उंगली के बराबर भी वो पूरी नहीं आ पाती है, एक पूरी उंगली के बराबर। अब ज़रा सोचिए इतनी मिट्टी बनने में 1000 साल से ज़्यादा वक्त लगता है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो फैक्ट है मिट्टी के बारे में वो ये है कि ऐसा अंदाज़ा है कि हमारे 95% भोजन है, यानी हम जो कुछ खाते हैं इस दुनिया में, जो कुछ खाते हैं 95% का जो प्रोडक्शन है वो सीधे या फिर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मिट्टी में ही होता है। अब जरा सोचिए कि मिट्टी अगर गड़बड़ हुई, मिट्टी को हटा दिया जाए तो 95% हमारा खाना ही खत्म हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मिट्टी की इम्पॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। जिस मिट्टी को हम जस्ट मिट्टी कह के फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, उस मिट्टी में इतने सूक्ष्म जीव जिंदा हैं जितने कि पूरे पृथ्वी पर इंसान नहीं है, एक चम्मच मिट्टी में, महज 1 चम्मच मिट्टी में। ये कुदरत का करिश्मा है, ये बहुत बड़ी बात है, और शायद इस बात को आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा फैक्ट आज आपको पता चला है ना। मुझे भी नहीं पता था, कुछ वक्त पहले जब मुझे पता चला इसके बारे में तो मुझे बड़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा है, ऐसा फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप सुनते रहेंगे तो आपको ऐसे कई फैक्ट्स सुनने को मिलते रहेंगे।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

सो आप जो मिस कर रहे हैं काफी वक्त से, यानी कि आपकी सिरी की अपडेट, वो अब आपको मिलने वाली है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में आपके आरजे अदनान से। तो चलिए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और बताते हैं कि अब सिटी में क्या कुछ चल रहा है, यानी शहर में क्या कुछ चल रहा है, जो बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके गुंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, फिलहाल वक्त आ गया है आपको गोंडा की अपडेट्स की तरफ ले चलने का और बताने का कि भाई सिटी में क्या कुछ चल रहा है जो आपको जानना चाहिए, और काफ़ी कुछ ऐसा भी होने वाला है जो काफ़ी आपके काम का हो सकता है। सो चलिए चलते हैं अपनी सिटी की अपडेट की तरफ, यानी सिटी अपडेट की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो बाढ़ को लेकर के है, क्योंकि सरयू के उफनाने से ऐली परसौली के जो 23 मजरे हैं वहाँ पे पानी भर चुका है। लोगों का लंच पैकेट से भर रहा है पेट, और जो है सेफ जगहों की तरफ जा रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोग। जी हाँ, पानी में सब फिलहाल डूब चुका है, चूल्हा सामान सब कुछ। सो आपको बता दें, विश्नोहरपुर उमरी बेगमगंज सरयू के उफनाने से ऐली परसौली के 23 मजरों में पानी भर गया है और घरों में चूल्हे तक डूब गए हैं। सो गृहस्थी का सारा सामान पानी में समा गया है। खेतों में लहलहाती धान की फसल भी बाढ़ की जो है भेंट चढ़ रही है। सो परिवार का जो पेट है वो लंच पैकेट्स से भरा जा रहा है, लेकिन मवेशियों के लिए हरा चारा जुटाना मुश्किल हो गया है। सो फिलहाल एक ये बड़ी परेशानी है जो कि कहीं ना कहीं सामने ही नज़र आ रही है गोंडा में ही अपने। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ, और सरयू नदी का जो लेवल है वो घटा है पर ख़तरा बरकरार है। तो सरयू नदी का जो जलस्तर है वो कल बुध को 14 सेंटीमीटर गिरावट दर्ज होने से बाढ़ का जो प्रभावित एरिया है लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि नदी अब भी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर ही बह रही है। सो बुधवार की शाम 4 बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जो लेवल था वो 106.430 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.070 मीटर है। सो केंद्रीय जल आयोग के हिसाब से बुध की शाम सरयू में कुल 333,866 क्यूसेक पानी पहुंच रहा था। सो इसमें गिरजा बैराज से भी, शारदा बैराज से और सरयू बैराज से पानी जो आया है वो शामिल है। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है गोंडा से वो आ रही है, कोविड कर्मियों के दस्तावेज का होगा सत्यापन। जी हाँ, सो कोविड 19 महामारी के दौरान ज़िले में काम कर रहे कोविड कर्मियों का जो अभिलेख का सत्यापन है वो किया जाएगा। सो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतलाल पटेल ने फिर से काम रखने के लिए कर्मियों को 3 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया है। कर्मिकों को स्वप्रमाणित शैक्षिक प्रमाण पत्र, 2 तस्वीरें, आधार पहचान पत्र, पैन पहचान पत्र, इससे जुड़ी हुई अवधि का बैंक विवरण और आउटसोर्स एजेंसी का नियुक्ति पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना होगा। ये प्रोसेस AMS एप्लीकेशन पर पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों कोविड कर्मियों के लिए लागू होगी। दूसरा ये है कि खाद्य कारोबारियों की बैठक आज होने वाली है। सो आगामी त्योहारों के मद्देनज़र रखते हुए खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने और नए नियमों की जानकारी देने के लिए आज ज़िले के खाद्य कारोबारियों की बैठक बुलाई गई है। सो लखनऊ रोड पर मौजूद दुल्लापुर खालसा स्थित खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय में दोपहर 12 बजे से बैठक होगी। इसमें रेस्टोरेंट्स, मिठाई कैटरिंग और डेयरी उत्पाद के जो कारोबारी हैं वो शासन के नए दिशा निर्देश वहाँ बताए जाएंगे। सो व्यापारी नेता ने बताया है कि ये बैठक व्यापारियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए की जा रही है। दूसरी जो नई अपडेट आ रही है वो ये है कि नए ट्रैक पर आज से अब चलने वाली ही ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें, सो पैसेंजर्स की फैसिलिटी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की तरफ से घाघरा घाट बुढ़वल रेलखंड के बीच नई जो विद्युतकृत ट्रैक पर नए ट्रेन का संचालन आज से शुरू किया जा रहा है। ऐसे में जो रेगुलर ट्रेन है इनको देखते हुए क्षेत्रीय जनता, विशेष रूप से जो घाघरा घाट बुढ़वल रेलखंड के बीच में समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले जो निवासी हैं वो सतर्कता बरते और मवेशियों को रेलवे लाइन के आसपास खुले में ना छोड़े, ये जानकारी जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने दी है। सो नए ट्रैक ओपन होने से जहां जल्दी काम होगा, जहां जल्दी होगा, फास्ट हो जाएगी ट्रेन की रफ्तार, लेकिन इसी के साथ में ख़तरा ये रहेगा कि भाई जो आसपास के मवेशी हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरी लाइन पे भी अब ट्रेन लगातार सरपट दौड़ती रहेगी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि फ़ोन नहीं उठाया तो बिजली कर्मियों पर होगी अब कार्रवाई। जी हाँ, आपको हम बता दें कि उपभोक्ताओं को फ़ोन कॉल नहीं उठाने वाले लाइनमैन, अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी समेत जो भी बिजली कर्मी हैं अब इन पर कार्रवाई होगी। सो मुख्य अभियंता विद्युत वितरण क्षेत्र देवी पाटन यदुनार्थ यथार्थ ने अधिकारियों और लाइन स्टाफ को हर कॉल रिसीव करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल बैक करना अनिवार्य होगा।
सो मुख्य अभियंता ने बताया कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां बिजली कर्मियों और अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायतें मिल रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी गई है। सो क्षेत्रीय लाइनमैन या फिर अभियंता के फोन नहीं उठाने पर उपभोक्ता देवीपाटन जोन के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको अभी नंबर भी चैट बॉक्स पर दे दिया जाएगा। इन फोन नंबर्स पे आप कॉल करके यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपके एरिया का कोई लाइनमैन, अवर अभियंता या कोई अधिकारी जो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है और वो नहीं उठा रहे हैं, उनको करना होगा। इसके अलावा मुख्य अभियंता ने कंट्रोल रूम कर्मचारियों को फोन नहीं उठाने संबंधी हर एक शिकायत को नोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि उनकी हेल्प के लिए हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जो एंट्रेंस है वहां पर लगाई गई है डिजिटल स्क्रीन गोंडा रेलवे स्टेशन पर, जिससे अब देख सकेंगे आप भी हवा की सेहत। जी हाँ, सो गोंडा जंक्शन पर अब यात्रियों को स्टेशन जो प्रेमाइसेज है वहां हवा की क्वालिटी को जानकारी भी इसकी मिल सकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एंट्रेंस गेट पर 55 इंच की डिजिटल स्क्रीन के साथ ही पर्यावरण निगरानी तंत्र स्टैब्लिश किया है। सो स्क्रीन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी QI समेत प्रदूषण से जुड़े हुए आंकड़े लगातार दिखाए जाते रहेंगे। सो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल के साथ PM2.5 और PM10 कणों की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा तापमान और आर्द्रता का रियल टाइम सिचुएशन भी दिखाई जाएगी। सो मंडल रेल प्रबंधक ने बताया है कि इस फैसिलिटी का उद्देश्य यात्रियों, रेल कर्मियों, स्टेशन आने वाले लोगों को जो हवा की क्वालिटी है उसका तत्काल जानकारी अवेलेबल कराना, इससे लोगों को अपने हेल्थ को लेकर जागरूक रह सकेंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण और यात्री सुविधाओं की दिशा में एक जरूरी पहल भी बताया जा रहा है। सो फिलहाल ये जो है नई अपडेट थी वो आप तक हमने पहुंचा दी है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि साइबर ठगी का मामला भी जुड़ा हुआ है, तो आपको हम बताते रहते हैं ताकि जो लोकल में अपडेट्स आ रही है साइबर ठगी को लेकर, उसको लेकर के आप भी सतर्क रहें। सो फिलहाल साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया है। सो इनके कब्जे से 2 मोबाइल, अलग अलग लोगों के नाम के करीब 10 आधार, पैन कार्ड और 1,00,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। सो फिलहाल ASP ने बताया है कि आवास विकास कॉलोनी में राजेंद्र श्रीवास्तव ने साइबर थाने में ये सूचना दी थी। उन्होंने बताया था 4 मई की रात उनके बैंक खाते से बिना जानकारी और बिना उनसे सहमति लिए 5,23,600 रुपये अलग अलग अनाधिकृत लेन देन के जरिए निकाल लिए गए। उन्होंने किसी को OTP, पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी भी नहीं दी थी। सभी लेन देन मेक माई ट्रिप के फर्जी लिंक के जरिए किए गए थे। अब ज़रा सोचिए, इसीलिए मैं आप तक ये अपडेट्स दे रहा हूँ कि देखिए बिना किसी OTP, बिना कोई कॉल, बिना कुछ पूछे मेक माई ट्रिप जैसी कितनी ट्रस्टेबल ये वेबसाइट है, कितनी ज़्यादा बड़ा ये एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो इसकी हेल्प लेते हैं। सो इसलिए आप भी जान लिए कि भाई किस तरह से गोंडा के ही आवास विकास कॉलोनी के ऑफकोर्स एक शख्स के खाते से 5,23,600 रुपए जो है वो निकाल लिए गए। इसके अलावा बता दें कि सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और बुध को पुलिस ने राजस्थान के जयपुर के किसन धर्मकांटा के पास जो कमल खड़का हैं और सीकर जिले के श्री माधोपुर नांगल निवासी करण सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें संगठित गिरोह के लिए काम करते थे ये लोग। सो पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो संगठित साइबर ठगी गिरोह के लिए काम करते थे और गिरोह के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मोबाइल सिम लेते थे। इन्हीं सिम के जरिए कई सारे बैंक्स में डिजिटल तरीके से खाते खुलवाए जाते थे और साइबर ठगी की रकम इन खातों में मंगाई जाती थी। इसके बाद रकम की FD कराकर उसके आधार पर लगभग उतनी ही सीमा वाले क्रेडिट कार्ड्स हासिल किए जाते थे और इन कार्ड्स से महंगे गहने, फ्लाइट टिकट्स और बाकी सामान खरीदे जाते थे। सो रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स और होटल की बुकिंग भी की जाती थी, पार्टियों में भी रकम खर्च की जाती थी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए क्लोजर रिक्वेस्ट डाल दी जाती थी। पुलिस के हिसाब से आरोपियों के मोबाइल में करीब 6-7 बैंक खाते और इतने ही क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल संचालन की जानकारी भी मिली थी।
सो आपको बता दें कि 10 लोगों के नाम के आधार और पैन बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, 1,00,000 रुपए नकद और अलग अलग लोगों के नाम के करीब 10 आधार और पैन कार्ड जो हैं वो बरामद किए हैं। दोनों के खिलाफ साइबर थाने में फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब इस घटना से हमको ये समझ में आता है कि भाई अगर आप भी कहीं पर भी कोई ऐसा लिंक आता है अननोन व्हाट्सएप पे या किसी भी आपके सोशल मीडिया साइट्स पे आता है तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, दूर रहें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लगातार आपको साइबर ठगी की जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप भी ये जो नए नए तरीके हैं लोगों को ठगने के उससे आप बचे रहें। चलते हैं फिलहाल अगली अपडेट्स की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही टीकाकरण को लेकर। सुबह 10 बजे से वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी 10 बजे से टीकाकरण शिविर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ITI में एक सीट पर 3 से ज़्यादा दावेदार आ गए हैं फिलहाल। सो 4 राजकीय संस्थानों में 1,768 सीट्स पर आए हैं 5,507 आवेदन। और कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है अब ITI का भी ऑफकोर्स आवेदन। और सी प्रमाण पत्र के लिए NCD कैडेट्स को किया गया है सेलेक्ट। सो शहीद आजम सरदार सिंह भगत इंटर कॉलेज में कल बुध को माँ गायत्री रामसुख पांडे PG कॉलेज मस्कनवा के स्टूडेंट्स के लिए NCD कैडेट्स की प्रथम और तृतीय साल की जो भर्ती हैं वो प्रक्रियाएँ फिलहाल शुरू हो चुकी है। सो फिलहाल ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि आप तक हमने पहुंचा दी। आई होप कि इसमें आपके जानकारी के लिए भी बहुत कुछ ज़रूर मिला होगा गोंडा अपडेट से। सो आप भी सतर्क रहिए और आप भी बच के रहिए ऐसे साइबर ठगों से जो फिलहाल OTP और कॉल के ज़रिए तो छोड़िए, आपके बैठे बैठे लिंक के ज़रिए सब कुछ खाली कर दे रहे हैं और आपकी एक अच्छी खासी गाढ़ी कमाई चली जा रही है।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
8: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
8: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और फिलहाल इतनी सारी बातों के बीच में कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक अभी पहुँचानी है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शायद ये शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके दिलों में माना जाता है। तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ अलग बातों तक ले जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। अच्छा, वैसे तो देखिए नज़रिया होता है, हम कहते हैं किसी भी बात को कहने का देखने का अंदाज़ होता है, लेकिन क्या लगता है एक छोटी सी चीज़ जिसको हम समझते हैं फोटोग्राफर क्या करना है, जस्ट फोटोज़ क्लिक करना है, चाहे शादियों में हम देख ले या कहीं पहाड़ों में हम देख ले या किसी ओल्ड माउंटमेंट्स में जाते हैं वहाँ पे कैमरा लटका है, एक फोटोग्राफर होते हैं, मैम प्लीज़ सर प्लीज़ फ़ोटोज़, इस तरह पूछते हैं। और कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो पूरा पूरा सभ्यता देखने का नज़रिया उस देश को अलग ही बना देते हैं। ऐसे ही इंडियन के कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स हैं यानी जो इंडियन हैं और जिन्होंने इंडिया को देखने का नज़रिया ही बदल दिया, यानी वो फोटोग्राफर्स जिन्होंने सिर्फ तस्वीर नहीं खींची बल्कि भारत को देखने का नज़रिया बदला, सो इतिहास को कैद किया और इतिहास रच दिया। ये ऐसे कुछ फोटोग्राफर्स का नाम बताते हैं और उनके कारनामे बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ के ज़रिए भारत को कहीं ना कहीं देखने का जो नज़रिया है लोगों का दुनिया के सामने वो ही बदल कर रख दिया। आप इन नामों को सर्च कर सकते हैं और इनकी फोटोज भी आप देख सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

एक तस्वीर कभी कभी हजार शब्दों से ज्यादा कह जाती है। वो किसी ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए दर्ज कर सकती है, किसी अनदेखी जिंदगी को सामने ला सकती है, या किसी ऐसी प्रॉब्लम पर हमारी नज़र रोक सकती है जो सदियों से नज़रअंदाज होती आई हो। सुबह

साल के जो वक्त था उसको करीब से दर्ज किया। आज़ादी से जश्न से लेकर के नेहरू, गांधी और दूसरे जो ऐतिहासिक पल हैं उन तक तस्वीरें, आज नए नए आज़ाद भारत का अनमोल रिकॉर्ड सामने आएगा। होमाई व्यारावाला को अगर आप सर्च करके देखते हैं उनकी फोटोज को। दूसरा नाम मिलता है रघु राय। जी हाँ, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, उनकी तस्वीर उस हादसे की सबसे यादगार मेमोरीज में से शामिल है। उनका कैमरा सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे की छिपी इंसानी कहानी भी दिखाता था, और यही दिखाया था जब 1984 के दौर में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी रघु राय के कैमरे ने। अगर आप रघु राय के कैमरों को देखना चाहते हैं यानी उनकी तस्वीरों को, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। अगला जो नाम है वो है पाब्लो बार्थोलोम्यू। जी हाँ, पाब्लो बार्थोलोम्यू भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक मुर्दे बच्चे को, उसकी तस्वीर ने दुनिया को इस घटना की इंसानी कीमत पर देखने पर मजबूर कर दिया। सो यह तस्वीर 1985 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर बनी और 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी उस फोटो के लिए नवाजा गया है। ज़रा सोचिए कि एक फ़ोटो जो देखने और सुनने में कितनी आम सी लगती है कि यार सामने से जाया, क्लिक कर लिया, नहीं, फोटोग्राफी तो आँखें की वो निगाहें हैं, वो अंदाज है, वो एंगल है जिससे आप अपनी मन की आंखों से, अपने विजन से देखते हैं, राइट। सो अगला जो नाम आ रहा है वो रघुबीर सिंह का आ रहा है। जब डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों का दबदबा था, सो इन्होंने रंगों में भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दर्ज किया। सड़कें, त्यौहार, शहर, गांव, लोग और बदलते हुए जो भारत की तस्वीर थी उसका हिस्सा बने। सो जब भारत बदल रहा था सच में, तो फिर इनकी तस्वीरें उस ट्रांजिशन को दिखा रही थी, उस बदलाव को लेकर के आई थी। अगला जो नाम आता है वो केतकी शेठ का आता है। केतकी शेठ मुंबई से लेकर गुजरात और लंदन तक इन्होंने शहरों को सिर्फ गरीबी, भीड़ और प्रदूषण के नज़रिए से नहीं देखा, बल्कि उसकी जो उसमें एनर्जी है, लोगों और अलग अलग समुदायों के बीच जो जुड़ाव है उसको इन्होंने सामने रखा। सो भारत के उन पुराने फ़ोटो स्टूडियोज को दस्तावेज किया जो डिजिटल फोटोग्राफी के दौर में धीरे धीरे गायब हो रहे थे। सो केतकी शेठ का अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको नज़र आएगा कि भाई केतकी शेठ एक बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद नाम आता है विक्की रॉय का। विक्की रॉय जो है ये अगले फोटोग्राफर हैं, और बचपन से ही घर से निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये रहने वाले विक्की ने अपने प्रोजेक्ट में home.street.home में सड़क और शेल्टर्स होम्स में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी को करीब से दिखाया था। सो इनकी तस्वीरों में सिर्फ आपको मुश्किलें नहीं बल्कि सपने, पहचान और अपनेपन की तलाश भी नजर आने वाली है। अगला जो नाम है वो है ऐश्वर्या श्रीधर का। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को कॉन्वर्जेशन स्टोरी टेलिंग का जरिया बनाया और दुनिया को सिखाया कि एक तस्वीर खूबसूरती से दिखाने के साथ साथ हमें नेचर के बारे में सोचने और उसकी रक्षा करने के लिए भी इंस्पायर कर सकती है। सो 2020 में वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा नाम आता है संदेश कडूर का। इन्होंने 25 साल से ज़्यादा वक्त तक भारत और दुनिया की दुर्लभ प्रजातियों को दर्ज किया, और इनकी तस्वीर लोगों को उन जीवों और जगहों से जोड़ती है जिन्हें देख पाना आम तौर पर भैया बहुत मुश्किल है, और इनकी जो तस्वीरें हैं वो रक्षा का संदेश भी देती हैं ये दुर्लभ जो पशु पक्षी हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इनको बचाने के लिए। सो हमने आपको बताए संदेश कडूर, ऐश्वर्या श्रीधर, विक्की रॉय, केतकी शेठ, रघुबीर सिंह, पाब्लो बार्थोल्यूमो, रघु राय और होमाई व्यारावाला के बारे में। सो ये ऐसे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने भारत को देखने का नया नज़रिया दिया, बिल्कुल चेंज करके रख दिया, और आज अगर आप इनकी तस्वीरों को देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा न्यूनेस पाने वाले हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आई होंगी, और आपको जो भी नाम याद है इनमें से आप उनको सर्च करके देखने वाले हैं। और हम देखिए क्या कहते हैं, ज़िंदगी में जब कुछ नया करते हैं या कुछ नया जाने की कोशिश करते हैं तो हमको ज़िंदगी के नए आयाम मिलते हैं और ज़िंदगी न जाने की मज़ेदार लगने लगती है। तो प्लीज़ खोजना हमेशा जारी रखिए,
चीज़ों को जानना हमेशा जारी रखिए।

0: ये ज़िंदगी मज़ेदार रहेगी, बहुत कुछ दिखाएगी, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जिनको अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अब कर लेंगे।
1: Yeah.

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: ओए सन्नू।
2: अरे बोलो चक्कू।
1: तुम्हें पता है
2: क्या,
1: मेरे पापा ना बहुत बड़े संगीत तज्ञ हैं। और तुम्हें पता है जब वो सितार बजाते हैं टन, तब सैकड़ों आदमी ना पत्थर की तरह बैठ जाते हैं।
2: और हम बता चक्कू, जब हमारे पिताजी जो काम करते हैं ना, तो हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं।
1: वो क्या बजाते हैं भाई?
2: नील

0: वेलकम अगेन इन मॉर्निंग वाला शो. गुड मॉर्निंग गुंडा. आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गुंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर आरजे अदनान. सो इतने सारे फैक्ट्स के बीच में चलिए भाई, हेल्दी वेल्दी वाली अगर बात नहीं होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधूरी हो जा रही है. सो फिलहाल एक अभी एक ऐसा नया नियम आया जो कि आप और हमारे सभी के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हर चीज़ जो है 100% प्योर होती है. जो आप ब्रांड्स को अब देखते हैं बताते हुए कि भाई 100% प्योर. सो फिलहाल आपको हम बता दें, FSSAI ने 5 कंपनीज के दावे पर रोक लगाई है और ये कार्रवाई हुई है ताकि 100% शब्द का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट के लेबल पर इस तरह से ना हो जिससे कि जो कंज्यूमर है, ग्राहक हैं, वो गुमराह हो. और कंज्यूमर कौन है? आप और मैं. जी हाँ. सो क्या है ये पूरी जानकारी, आइए आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि FSSAI का आखिर क्या नया फरमान है जिससे कि ग्राहक गुमराह ना हो.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये 100% प्योर वाला मामला। दरअसल पूरा मामला हम बताएं तो FSSAI ने 100% दावों पर जताई है अपनी आपत्ति। फूड प्रोडक्ट्स के लेबल, पैकेजिंग, वेबसाइट और विज्ञापनों में 100% जो शब्द हैं इसके ऐसे इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई है जिससे कि कंज्यूमर भ्रमित हो सकते थे। सो कार्रवाई के बाद कंपनीज ने ऐसे दावे हटाए हैं या उनमें सुधार किया है। सो जुजा फूड की अगर हम बात करें तो केरल की जुजा फूड के कई प्रोडक्ट्स पर कई 100% दावे, जैसे 100% रागी, 100% वीगन, 100% केरला बनाना पाउडर, 100% स्वीट्स पोटैटो पाउडर, 100% क्लीन इंग्रेडिएंट्स, FSSAI की कार्रवाई के बाद दावे हटाने पर सहमति बनी। इसके अलावा मास्टर शो एंड बॉर्न बिस्किट्स, जी हाँ, सो मास्टर शो एंड बॉर्न बिस्किट रेमन नूडल्स पर 100% नेचुरल का दावा था। वहीं बॉर्न बिस्किट्स के जीरा बाइट बिस्किट्स के विज्ञापन में 100% दावा पाया गया। कार्रवाई के बाद दोनों मामलों में दावे हटाए गए हैं। अगला जो था वो था हनी से कोकोनट ऑयल तक, जी हाँ। सो एपिस इंडिया के शहद एमामी के झंडू हनी पर 100% हनी और एमवे के परसोना कोकोनट ऑयल पर 100% प्योर कोकोनट ऑयल जैसे दावे पाए गए। FSSAI की एडवाइजरी के बाद में इनको हटाया गया और कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई और FSSAI की एडवाइजरी के बाद कंपनीज ने अपने सुधारात्मक कदम भी उठाए। सो FSSAI का संदेश क्या है कि हर 100% दावा भरोसे के लायक नहीं होता है, पहली बात, इस बात को जान लीजिए। दूसरी बात है FSSAI के फोकस है कि खाद्य उत्पादों पे ऐसे दावे ना किए जाएं जो कि कंज्यूमर्स को गुमराह कर सकते हैं। सो लेबल को देखें, दावे को समझें और सोच समझ कर ही खरीदें, ऐसा कहा है FSSAI ने आपसे और मुझसे। यानी इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हर 100% का दावा भरोसे के लायक नहीं होता। दूसरा है कि FSSAI का फोकस है कि जो खाद्य पदार्थ हैं खाने वाले उस पर ऐसे दावे ना किए जाए जिससे कि कंज्यूमर्स गुमराह हो। दूसरा है कि लेबल देखिए, दावे को समझिए और सोच समझ कर ही खरीदिए, ऐसा कहना है FSSAI का। सो ये जो मिलावट की बात है, जो प्योरिटी की बात है, इस पर लगातार हम आपसे बातचीत करते रहते हैं। फिलहाल ये जो जंग है जारी रहेगी क्योंकि मिलावट जो है वो सिर्फ मिलावट नहीं होती है बल्कि ये पूरे समाज को खोखला कर देती है। सो अभी त्योहारों में भी कंसर्न होता है कि भाई जो मिठाइयाँ, जो चीज़ें बिकने वाली है, कोई भी त्यौहार आता है ये कंसर्न जो है ये बढ़ जाता है कि क्या प्योर मिल पाएगी, क्या हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं क्या वो सही मिल पाएगा, क्या हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा। ये कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे जहन में आते हैं और आने भी चाहिए, बेशक आने चाहिए। सो कहीं ना कहीं इन दावों को ज़रा सोचिए, समझिए और इस पर अपनी राय बनाइए और एक अच्छे से हेल्दी वाली लाइफ स्टाइल हमको जीने की पूरी पूरी कोशिश करना है ताकि हम हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर के ख़ुद को सेफ रखें, अपनों को और अपने आसपास के लोगों को और इस पूरे समाज को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही है कि भाई हम चीज़ों को बेहतर बनाएं, राइट। चलिए इसी के साथ में अब आप अपनी राय रखिए और बताइए कि भाई FSSAI ने जो कदम उठाया है क्या वो ज़रूरी है और क्या आप भी किसी ऐसे प्रोडक्ट को कंजम्पशन उसका कर चुके हैं जिसमें 100% का कोई दावा किया गया था जबकि आपको भी लगा था कि यार 100% कैसे हो सकता है कोई चीज़ प्योर, है ना।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861-976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हाँ जी, और इससे पहले भाई एक आ गया है कंटेंट, तो चलिए भाई ले लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ आया है कंटेंट में, चूंकि आपके मैसेजेस भी आए हुए हैं, उनको भी लेना है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि भाई बहराइच से हमारी प्रीति जी ने भेजा है जिज्ञासु मन। जी हाँ, सो ये जिज्ञासु मन जो है वो कितना ज़्यादा जिज्ञासु है, आइए इस बात से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। और वो क्या लिखती हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। सो बड़ा ही मनचला है मेरा जिज्ञासु मन, बड़ा ही मनचला है मेरा जिज्ञासु मन, क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती पल पल। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, उनसे नई नई सीख लेती अक्सर रुचि संग आगे बढ़कर। कभी कभी हमारे छोटे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं भागते हुए आधुनिकता के नए नए टेक्निकल सोर्सेस को। अभी भी मेरा जिज्ञासु मन बहुत कुछ सीखने की कतार में लगा हुआ है और भविष्य में नई नई सीख लेने की प्रयत्न करती रहूँगी। कुछ नया ना सीखूं, कुछ नया ना करूं, तो ये भी कोई ज़िंदगी है, मानवता की ज़िंदगी है। सो भाई, ये नया जो सीखना है और ये जो जिज्ञासु मन है, ये सच में अप्रिशिएबल है आपका। थैंक यू सो मच कि आपने लिखा भी और हम तक पहुंचाया भी, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और यस, कुछ और मैसेजेस जो आए थे। क्रिकेट लवर, आपका भी स्वागत है। नव्या, आपका भी स्वागत है। इम्तियाज़, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रीति जी ने बोला है वेरी यूज़फुल, फॉलो करने योग्य जानकारी, ठगी से बचने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को सॉन्ग्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। धर्मेश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। इरफान शाह का भी स्वागत करते हैं। पिंटू कुमार गौतम गोंडा से, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और कमल नयन जी, आपका भी स्वागत करते हैं रेडियो ज्ञानस्थली पर 89.6 FM के मॉर्निंग जॉक आर्च अदनान। सो यस, इतने सारे कॉमेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं और मुझे लगता है आज जो बातचीत हुई है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही। आज एक दो चीज़ नहीं, आज कई सारी चीज़ें रही जिसको हमने जानने की भी कोशिश की, सीखने की भी कोशिश की। और ये चीज़ें तो निरंतर और प्रयत्न करते हुए चलती ही रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज का थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल शो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके बताए जाने का इंतज़ार हम कर रहे हैं और फिलहाल आपसे ले रहे हैं विदा। लेकिन आपको बने रहना है अपने 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में वीडियो मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के बाद। अब बैक टू बैक शोज आप एंजॉय करते रहेंगे अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद गोंडा एफएम पर। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो, या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना शो गांव की गूंज। आज हमारी पूरी टीम यानी मैं, समता दी, गीता दी और किरण दी खड़े हैं पंजाब की उस पावन धरती पर, जहां हर सांस में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में घी, गुड़ और प्यार की मिठास खुली हुई है। यहाँ की मिट्टी जैसे हर आने वालों को अपने पन से गले लगा लेती है।
7: बिल्कुल सही कहा जया, जैसे ही हमारी गाड़ी ने इस खूबसूरत गांव नूरपुर कला की सीमा को छुआ, खिड़की से बाहर का नजारा देखकर तो मैं तो जैसे कुछ पल के लिए खो ही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरे खेतों पर पीले रंग की सुनहरी चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक लहलहाती सरसों, उनके बीच से गुजरती हुई हवा और वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी।
8: और सिर्फ खेत ही नहीं समता, यहाँ के लोग भी उतने ही रंगीन और दिलदार हैं। रास्ते में हमें जो भी मिला, हर किसी ने मुस्कुराकर जी आया नू कहकर हमारा स्वागत किया। ऐसा अपनापन शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। और गीता दी, आपने देखा वो बुजुर्ग बाबा जी जो बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए हैं। देखिए कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं।
9: हाँ किरण, मैंने उन्हें बहुत गौर से देखा। उनकी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी पगड़ी और चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो गहरी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर पूरे जीवन की कहानियाँ लिखी हूँ। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने धीमे से कहा, पुत्र खुश रहो, रब रखा। उस एक आशीर्वाद में इतना स्नेह था कि मेरा तो दिल भर गया।
10: सच में यही तो है असली पंजाब, जहाँ खेतों में हरियाली है, दिलों में सादगी है और हर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी कह रहा है।
7: और जया, क्या तुमने गौर किया, दूर से ढोल की हल्की हल्की आवाज भी आ रही है। लगता है गांव में कहीं और छोटा सा जश्न भी चल रहा है, शायद फसल की खुशी या फिर कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है। यहाँ तो हर छोटी बात भी उत्सव बन जाती है।
8: और हाँ, वो देखो उधर खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर थकान तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष और गर्व है। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से हमारे देश का पेट भरते हैं। सच में इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।
9: और इन खेतों के बीच से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने अंदर किसी सादगी भरी दुनिया में घसीट कर ले जा रही हो। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हर पल जैसे ठहर कर जीने का मन करता है।
10: तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत गांव नूपुरपुर कला की सैर कराएंगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी खुशियों और संघर्षों को महसूस करेंगे।
7: और साथ ही जानेंगे कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो हर दिल को छू जाता है।
8: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक दिल को छू लेने वाला सफर, और गांव की गलियों से खेतों की खुशबू तक,
10: और इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज के साथ
11: स्वागत है आपका गांव की गूंज में।

0: अरे वाह, इस मधुर संगीत ने तो जैसे पूरे माहौल में जान डाल दी है। ढोलक की थाप और हवा में घुली सरसों की खुशबू, दिल अपने आप ही झूमने लगता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ? गुरु नाम सिंह जी के विशाल खेत में। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जहाँ तक आंख जाए बस हरियाली ही हरियाली है। सच कहूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे पंजाब का अन्न भंडार भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल किरण दी, और देखो ना, इस मिट्टी का रंग भी कितना गहरा और समृद्ध है, जैसे इसमें वर्षों की मेहनत, परंपरा और प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो। गीता दीदी, आप तो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती हो, आपको यहाँ की खेती में सबसे खास क्या लगा?
2: यहाँ आकर सबसे ज्यादा जो चीज दिल को छूती है वो है परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम। एक तरफ पुराने समय के वो कुएं जिनमें कभी बैलों के सहारे पानी निकाला जाता था, उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, और दूसरी तरफ आज की किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अरे वाह, मैंने गौर किया कि यहाँ के खेतों में जो पानी है उसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। हर चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी बना रहे और फसल भी अच्छी हो।
2: बिल्कुल, यहाँ का किसान अब सिर्फ हवा चलाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति बन चुका है। उसे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितनी खाद देनी है और पानी का सही उपयोग कैसे करना है। यही वजह है ना कि यहाँ की जमीन हर साल सोना उगलती है।
3: पंजाब को पांच नदियों की धरती भी कहा जाता है, और उन्हीं नदियों के आशीर्वाद इन खेतों में साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, वो सामने बहती नहर चांदी की लकीर जैसी चमक रही है।
1: सच में जया, ये नहरें ही तो इस गांव की जीवन रेखा है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही इन खेतों में पानी बहता है, और पानी ही तो जीवन है, फसलों का भी और किसानों का भी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ खेती सिर्फ एक काम की नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये खेत उनकी पहचान हो।
0: अभी मैंने गुरनाम सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि पुत्र, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे जितना प्यार देते हैं ये हमें उससे कई गुना वापस देती है। सुनकर सच में दिल भर आया।
2: और यही रिश्ता इस मिट्टी को इतना खास बनाता है, प्यार, मेहनत और विश्वास का रिश्ता।
3: तो दोस्तों, इस हरियाली, इस मेहनत और इस अनमोल मिट्टी को सलाम करते हुए चलिए इस ताजी हवा और खेतों की खुशबू के बीच सुनते हैं एक प्यारा सा गीत,
1: तो भी इसी तरह छू जाए जैसे हमें ये नजारा छू रहा है।
0: बने रहिए हमारे साथ,
2: क्योंकि सफर अभी जारी है गाँव की गूंज के साथ।

0: अब हम गांव के अंदरूनी हिस्से में हैं और सच कहूं तो यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहां के घर ओहो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजबूत, भव्य और किसी भी अकेलेपन से ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, जहां रंग बिरंगी पीढ़ियां छोटी कुर्सियां जैसे सजी हुई हों।
1: बिल्कुल समता, और जया तुमने एक बात और नोटिस की है, यहाँ के घरों की दीवारें सिर्फ सीमेंट की ही नहीं है बल्कि उन पर हाथों की मेहनत और कला की छाप है। मिट्टी के लेप से बने खूबसूरत पैटर्न, रंगों से कई चित्रकारी, औरतें इसे चौक पूर्णा कहती हैं। हर डिजाइन जैसे कोई कहानी कह रहा हो, खुशी की, त्योहारों की और परंपराओं की।
2: हाँ किरण, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। मालूम है, मैं एक घर के अंदर गई और वहाँ जाके देखा, फर्श इतना साफ कि जैसे अभी अभी धोकर चमकाया गया हो, बर्तन एकदम करीने से सजे हुए चमकदार, हर चीज अपनी जगह चकाचक।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है कि ये सफाई सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही दिखाई देती है। मैंने ध्यान दिया, किसी भी घर के सामने कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं पड़ा है, हर गली साफ, हर मोड़ साफ सुथरा, जैसे पूरा गांव मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो।
1: और ये सब सिर्फ औरतों का काम नहीं है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी खेतों में, कभी घर की देखभाल, कभी पशुओं की सेवा, हर काम दोनों समान मिलकर करते हैं।
2: और हाँ, मैंने एक घर में और देखा, चाची जी रसोई में तंदूर पर रोटियां बना रही थी और उनके साथ ही चाचा जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और पशुओं को चारा भी दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी लेकिन उससे ज्यादा कहीं संतोष झलक रहा था।
0: और ये जो मेहनत है ना, यही इस मिट्टी की असली ताकत है। यूं ही नहीं कहा जाता है पंजाबियों के हाथों में सोना होता है, ये लोग जहाँ भी मेहनत करते हैं वहाँ समृद्धि अपने आप चली आती है।
3: सच में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हैं। ना सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं बल्कि अपनी जगह को भी उतना ही महत्व देते हैं। पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी की बचत करना और गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।
1: और देखो देखो, हर घर के बाहर छोटे छोटे गमले भी रखे हैं, कहीं तुलसी का पौधा, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब, जैसे हर घर अपनी खुशबू से पूरे गांव को महका रहा हो।
2: देखो आंगन के उस कोने में वो जो बड़ा सा एक मिट्टी का तंदूर रखा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी अभी एक चाची जी ने हमें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाई, जिस पर सफेद मक्खन इतना ज्यादा लगा हुआ था कि सच में रोटी का वजन संभालना मुश्किल हो रहा था।
0: और उस रोटी में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उसमें उनके हाथों की मेहनत और दिल का प्यार भी मिला हुआ था।
3: यही तो है पंजाब का असली दिल, मेहनत, सादगी, सफाई और ढेर सारा प्यार। यहाँ हर घर एक कहानी है और हर आंगन एक एहसास है
1: और हर इंसान एक मिसाल है मेहनत और जागरूकता की।
2: तो चलिए इस खूबसूरत जीवन शैली और इन सच्चे लोगों को दिल से सलाम करते हैं
3: और इस सादगी और प्रेम को समर्पित करता हुआ अब हमारा अगला गीत।

और इस समय हम लोग गांव के केंद्र यानी सांझी चौपाल पर हैं। और सच कहूं, यहां अगर ऐसा लगता है जैसे गांव की धड़कन

0: यही बसती हो। इस विशाल बरगद के पेड़ को देखिए, इसके जड़ों में जैसे वर्षों की कहानियां समाई हुई हैं। इसी छांव में बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग फैसले लेते हैं और शाम होते ही यही जगह हंसी और ठहाकों और किस्सों से गूंज उठती है।
1: बिल्कुल गीता दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, चार पांच बुजुर्ग एक साथ बैठे थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई अपनी पुरानी यादें सुना रहा था। एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में फैसले भी दिल से होते थे और रिश्ते भी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है।
2: और यहाँ बड़े ही नहीं, यहाँ बच्चे भी चौपाल के आसपास खेलते नजर आ रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह चौपाल हर उम्र के बच्चों को जोड़ने का काम करता है।
3: सही कहा समता दी, ये चौपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, जहाँ हर समस्या का हल, हर खुशी का जश्न और हर दुखी का सहारा है।
0: और हाँ, इसी चौपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खास परंपरा है, सांझा चूल्हा। किरण, तुमने तो इसके बारे में सुना ही है ना?
1: हाँ गीता दी, और मैंने आज खुद भी देखा, कुछ घरों में आज भी लोग मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है और कोई बच्चों को खाना परोस रहा है। वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि रिश्ते पकते हैं।
2: सच में, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सुख दुख में कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, और अगर खुशी का माहौल हो तो पूरा गांव एक साथ जश्न मनाता है।
3: यही तो है असली एकता, जहां मैं से ज्यादा हम की अहमियत होती है।
0: और चौपाल के इस माहौल में एक और चीज है जो दिल को बहुत खुश करती है, वो है यहाँ का अपनापन। मैंने एक बुजुर्ग दादी जी से बात की तो उन्होंने मुझसे बताया, बेटा यहाँ कोई पराया नहीं होंदा, सब अपने ही होंदे। सुनकर मन में, सच में मन भावुक हो उठा।
1: और देखो देखो, चौपाल से थोड़ी ही दूर पर वो खुला मैदान, वहाँ का जबरदस्त नजारा है।
2: अरे वाह, वहाँ तो कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है। क्या जोश है, क्या ऊर्जा है, हर खिलाड़ी जैसे मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हो। कबड्डी कबड्डी की आवाज पूरे माहौल को और भी जोशीला बना रही है।
0: और इन नौजवानों को तो देखो, लंबे चौड़े मजबूत कद काठी, सच में हर एक गबरू जवान किसी शेर से कम नहीं लगता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीत का जुनून साफ दिखाई देता है।
1: मैंने एक खिलाड़ी से पूछा, थकते नहीं हो क्या? तो वो हंस कर बोला, पंजाबी कभी थकते नहीं, बस थोड़ा रुक कर फिर दोगुनी ताकत के साथ खेलते हैं।
2: वाह, यही जज्बा तो पंजाब की पहचान है, मेहनत, हिम्मत और जोश का संगम।
3: और सिर्फ खेल ही नहीं, यहाँ के युवाओं में अपने गांव और परंपराओं के लिए गहरा लगाव भी है। वे आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं।
0: सच में, ये चौपाल, ये सांझा चूल्हा, ये खेल का मैदान, सब मिलकर इस गांव की आत्मा को जीवित रखते हैं।
1: और यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो, ताकि हम इन पलों को पूरी तरह से जी सकें।
2: अब तो मन कर रहा है कि हम भी इस माहौल का हिस्सा बन जाएं, कभी चौपाल में बैठकर बातें करें और कभी कबड्डी खेलें, तो कभी सांझे चूल्हे पर रोटी सेकें।
3: बिल्कुल, तो चलिए इस उत्साह, इस अपनेपन और इस जीवन संस्कृति को सलाम करते हुए,
1: और हाँ, थोड़ा जोश आपके दिलों में भरते हैं,
0: ताकि आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर सकें
2: और झूम उठे इस रंग में।
3: पेश है एक दमदार भांगड़ा बीट जो आपके दिल की धड़कनों को भी थिरकने पर मजबूर कर देगी।

0: जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, पूरे नूरपुर कला में एक अजीब सी शांति उतर आई है। देखिए, आसमान के रंग भी बदल गए हैं, नीले से सुनहरे और अब हल्के नारंगी से गहरे लाल में ढलते हुए। खेतों के ऊपर पंछी उड़ते हुए और घोंसलों की ओर लौट रहे हैं और हवा में एक ठंडी सी मिठास घुल गई है।
1: हाँ किरण, और इस वक्त गुरुद्वारा साहिब से आती अरदास की वो पवित्र आवाज सच में मन को भीतर तक शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। उस आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो सारे दिन शरीर की थकान और भागदड़ को पल में मिटा देती है।
2: और देखो ना, जैसे ही अरदास की आवाज गूंजती है, गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कोई आंखें बंद कर लेता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक जुड़ाव है अपने विश्वास से, अपनी संस्कृति से।
3: सच में ये दृश्य दिल को छू लेने वाला है। शहरों में हम भागते रहते हैं समय के पीछे, काम के पीछे, लेकिन यहाँ हर पल जीने का एक अलग सलीका है। यहाँ शांति को महसूस किया जाता है और उसे जिया भी जाता है।
0: जैसे जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, गांव की गलियों में टिमटिमाते बल्ब और घरों के आंगन में जलते दिए एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहे हैं। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही है और कहीं से रसोई में बनती हुई रोटियों की खुशबू।
1: वास्तव में किरण, यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि असली सुकून ऊंची ऊंची इमारतों या महलों में नहीं है, बल्कि इन कच्चे पक्के रास्तों में, इन खुले आंगनों में और सबसे ज्यादा इन खुले दिलों में मिलता है।
2: और आज के इस एक घंटे के सफर में हमने सिर्फ एक गांव नहीं देखा बल्कि एक जीवन शैली को महसूस किया है। मेहनत, सादगी, अपनापन और एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा, अपने दिल से महसूस भी किया।
0: और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि यहाँ हर इंसान मुस्कुराते हुए मिला, चाहे वो किसान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के पास देने के लिए प्यार ही प्यार है।
1: और सच में हम यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जा रहे हैं बल्कि एक सीख भी लेकर जा रहे हैं कि जिंदगी को सरल बनाकर, रिश्तों मजबूत बनाकर असली खुशी पाई जा सकती है।
2: और हमारी ये पोटली अब सच में भर चुकी है ढेर सारी प्यारी यादों से, लोगों के स्नेह से और इस मिट्टी की खुशबू से।
3: तो रेडियो सुनने वालों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। 89.6 FM गांव की गूंज की पूरी टीम, मैं जया, मेरे साथ समता दी, किरण दी और गीता दी लेते हैं आपसे विदा।
0: लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और हम उसे आपके पास लाते रहेंगे।
1: तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गांव, नई मिट्टी और नई कहानियों के साथ।
2: तब तक आप भी अपने आसपास की खुशियों को महसूस कीजिए, अपने लोगों से जुड़िए
3: और याद रखिए, जब गांव समृद्ध होगा तभी देश मजबूत होगा।

0: नहीं जाता ना।
1: हेलो,
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9470931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
11: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
12: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
11: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
12: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
11: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
9: हुक्के से खेलन जाइबो,

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टर स्किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टी स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
8: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
7: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
8: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
7: जी।
8: और आज हम बात करेंगे TB और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
7: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में TB मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
8: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
7: जी,
8: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
7: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
8: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
7: जी,
8: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
7: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हैं।
8: जी आरजी दीदी,
7: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
8: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
7: जी।
8: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
7: जी,
8: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ।
7: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
8: जी दीदी
7: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
8: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
7: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
8: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
7: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
8: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
7: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
8: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
7: जी।
8: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
7: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
8: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
7: जी
8: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
7: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
8: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है। क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
7: जी।
8: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर, भेदभाव खत्म करना।
7: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं। ये कितना खतरनाक है
8: आकांक्षा जी? यह बहुत गंभीर खतरा है
7: जी।
8: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
7: जी,
8: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
7: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
8: जी जरूर
7: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
8: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
7: जी।
8: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
7: जी,
8: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
7: जी।
8: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
7: जी,
8: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
7: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
8: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
7: जी।
8: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
7: जी।
8: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
7: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
8: देखिए खानसा जी
7: जी,
8: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
7: जी,
8: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
7: जी,
8: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
7: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
8: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
7: जी।
8: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
7: बिल्कुल,
8: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
7: बिल्कुल,
8: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
7: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
8: जी आकांक्षा जी
7: जी। मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
8: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
7: जी।
8: दवाइयां डर खत्म करती हैं लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
7: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
8: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है
7: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
8: देखिए आकांक्षा जी
7: जी,
8: मेरा संदेश बहुत साफ है
7: जी।
8: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
7: जी।
8: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
7: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला
8: जी। धन्यवाद मैम, आप
7: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।

वो पता भी नहीं चलता है, और आम की आंखें सब कुछ बयां कर जाती हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ शब्द जो होते हैं हम मुंह से नहीं बोलते, हमारी आंखें बोल देती हैं। ऐसे ही कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारी आंखें पहले ही बता देती हैं, और उस बीमारी को हम कहते हैं पीलिया, जॉइंडिस। जब भी हमारी आंखें पीली पड़ जाती हैं, हाथ पैर पीले पड़ने लग जाते हैं, नेल्स पीले पड़ जाते हैं, और कोई आकर हमको बताता है कि देखो तुम्हारी तो आंखें पीली पड़ रही हैं, और हम क्या कहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है तुमने गलत देखा हो, रोशनी है, लाइट है, ये है वो है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि सच में हमें पीलिया हो रही है, और इस चीज़ को लेकर हम कभी कभार मजाक भी कर लेते हैं। बट ये इतनी गंभीर बीमारी है और इससे क्या कुछ हो सकता है, ये आज आपको जानने को मिलेगा आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। तो हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में, स्मार्ट द्वारा चलाए जा रहे इस खूबसूरत श्रृंखला सेहत सही लाभकारी बैनर के तले। मैं लेकर आई हूँ उस कार्यक्रम को आप सभी के पास, आप सभी के द्वार। मेरा नाम है आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और बात करेंगे आज हम उस शोर की जो आपकी रातों की नींद उड़ा जाता है, जो आपकी आंखों का रंग ले जाता है, आपके नेल्स का रंग ले जाता है, इवन आपके फेस का भी कलर, कई भी कभी कभार जो हम विंटेज फिल्टर लगाकर कैमरे के अंदर पीला पीला करते हैं वो रियल में हो जाता है। और पीलिया एक ऐसी स्थिति है जब आपकी आंखों का रंग, आपके त्वचा का रंग, आप और आपके नेल्स का रंग पीला पड़ने लग जाता है। पीलिया बीमारी कहाँ की है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि भाई पीलिया जब होती है तब आपका जो लीवर है वो वहाँ से शुरू होती है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पीला पड़ता है। कभी आपने सोचा कि पीलिया में क्यों इंसान पीला पड़ जाता है? हम वैसे तो हमारा खून लाल होता है, लेकिन पीलिया में हम पीले क्यों हो जाते हैं? ऐसा सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, कई बार घूमता रहता है, और इसका जवाब भी मुझे फाइनली मिल ही चुका है कि भाई आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएँ होती हैं, यानी कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके टूटने से बनने वाला एक पीला पदार्थ होता है, उसकी मात्रा आपके खून में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप पीले पीले दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इस बीमारी का इलाज है, क्या इसको पहले से ट्रीट किया जा सकता है, और इस बीमारी के दौरान, क्योंकि जब भी किसी को जॉइंडिस होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने से मना कर दी जाती हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप पी सकते हैं, और किन से इस वक्त आपको दूर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अपने कार्यक्रम में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगनी। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, आपको करते हैं जागरूक पीलिया को लेकर के, क्योंकि भाई बदल रहा है मौसम, बदल रही है हवा, और बदलते मौसम में जो बीमारियां आजकल ज़्यादा हो रही हैं वो है मलेरिया, पीलिया यानी कि जॉइंडिस और डेंगू, क्योंकि भाई मच्छरों ने आतंक भी काफ़ी ज़्यादा मचा रखा है। तो सुनते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति, लेकर आई हूं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जो आम भाषा में जिसको हम पीलिया कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने हल्दी भी नहीं लगाई है और आपके नाखून पीले पीले नज़र आ रहे हैं, और आप कहते हो भैया ये नाखून क्यों पीले, खून की कमी हो रही है क्या? ऐसा नहीं होता है, आपको पीलिया हो रही होती है। इवन अनीमिया में आपके हाथ पैर थोड़े अपने रंग बदल लेते हैं, खून की कमी में अपना रंग बदल लेते हैं, लेकिन अगर वो हल्दी की तरह पीले दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। अब जॉइंटिस है क्या, ये पीलिया क्या है? जब शरीर में बिलिरुबिन नाम का जो पीला पदार्थ है उसके बढ़ने के कारण से होने वाली एक ऐसी स्थिति जिसमें आपकी आँख, आपकी त्वचा और आपका जो पेशाब है उसका रंग पीला हो जाता है, ये मुख्य रूप से लीवर के ख़राब होने का संकेत है। या फिर ये कोई अपने आप में होने वाली बीमारी नहीं होती है, या तो इसमें बताते हैं भाई आपके जो खून है उसमें कुछ दिक्कत चल रही है, या फिर आपके लीवर सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ चुकी है जिसकी वजह से वो इस पीले पदार्थ को यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से निकलता है उसको वो सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? बेशक ठीक किया जा सकता है और बहुत सारे लोग इससे ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आपको पता हो कि सही समय पर आपको पीलिया हो चुका है। कई बार ऐसा होता है हम पीलिया को सीरियसली नहीं लेते हैं और हम कई बार लेट जाते हैं, तो फिर दिक्कत तो होनी ही होती है, क्योंकि भाई पीलिया आपका लीवर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब चल रही हैं जिनका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप उसे ही ध्यान से नहीं देखते हैं तो आती हैं प्रॉब्लम्स। आप चीज़ों को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार आ रहा है, हाथ पैरों का रंग पीला पड़ चुका है, और ये तब होता है जब पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। स्टार्टिंग में अगर सिर्फ आपका रंग बदल रहा है और आप उसको पहचान जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो शायद फिर आपको वो एक दो तीन महीने का जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको सिर्फ गर्म पानी दिया जाता है, आप पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जून की गर्मी में भी आपको गर्म पानी दिया जाता है क्योंकि आपको ठंडा पानी पीने से मना कर दिया जाता है। तो भाई ऐसी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो शुरुआत में ही पहचानना होगा लक्षण, कि क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी खराबी चल रही है जो आगे जाकर पीलिया बन सकती है। चलिए मैं आपको बता दें, सबसे पहला, सबसे मुख्य कारण जो होता है, जो मुख्य सिम्टम होता है, वो ये होता है कि आपकी त्वचा और आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है वो पीला पड़ना दिखाई पड़ जाता है। आपके नाखून आपको पीले दिखाई पड़ते हैं, आपकी आँखें आपको पीली दिखाई पड़ती हैं। इवन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी स्किन यानी कि आपकी त्वचा भी पीली पीली नज़र आती है, बट क्योंकि सबसे पहले हमारा वो हिस्सा पीला नज़र आता है जो सफ़ेद होता है। तो अगर कभी भी आप अपने नाखून को या फिर आप अपनी आँखों को हल्का सा भी पीला देखें तो ये ना सोचें कि ये लाइट का इफेक्ट है, या फिर मैंने बहुत देर से स्क्रीन देख रहा था इसलिए मुझे हर चीज़ पीली पीली नज़र आ रही है, या फिर मम्मी ने खाने में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी हुई। ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए और जाके चेक कीजिए कि कहीं सच में तो आपको पीलिया नहीं हो रहा है। दूसरा सिम्टम जो होता है वो होता है बुखार आना। बुखार आना, भाई हर बीमारी में आपको बुखार ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो WBC है, जो आपको बचाने के लिए दिन रात लड़ाई करते हैं, वो जब भी कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया, कोई नई बीमारी आपके शरीर में पाते हैं तो अपने टेम्परेचर को ऑलमोस्ट बढ़ा देते हैं। भाई ब्रेन को सिग्नल जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि हम इस बीमारी को ख़त्म कर सके। तो कोई भी बीमारी आपको होती है तो उससे पहले सबसे पहले आपको बुखार का लक्षण देखने को मिल जाता है, और इसीलिए बुखार आता भी है क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो भाई बुखार आना ये होता है सेकंड सिम्टम। फिर होता है आपके पेट में दर्द, क्योंकि आपके लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है और अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो पेट में दर्द होना तो लाजिम है। तो आपको पेट में दर्द रहता है, आपके पेट में मरोड़ रहती है और आप कहते हैं भैया मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं। अगर आप मम्मी से कहते हो मम्मी पेट में दर्द है और मम्मी ने मजाक में कह दिया कि हाँ जाओ बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा खाओ, तो ये मत समझ लेना कि सच में उसी की वजह से दर्द हो रहा है। हाँ बीमार उस वजह से ज़रूर पड़ सकते हो, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बर्गर पिज़्ज़ा खाया है इसी वजह से पेट में दर्द है। अगर आपको लगातार पेट में दर्द हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से दिखाने में क्या बुराई है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो अच्छी खासी फीस बन जाएगी। फिर हम जाते कब हैं, जब लास्ट स्टेज आ चुका होता है, जब डॉक्टर के हाथ से भी केस ऑलमोस्ट बाहर हो चुका होता है, तो हम उस केस को सीरियसली लेना शुरू करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। होता है ना? जी हाँ, मुझे पता है आप भी उनमें से ही एक हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट मुझे ऑफ एयर दिखाई पड़ रही है, यानी कि स्क्रीन के पीछे से दिखाई पड़ रही है। फिलहाल हम आपको बता दें चौथा जो लक्षण होता है वो होता है फ्लू जैसे लक्षण। अब आपने देखे होंगे फ्लू में आपके सर में दर्द रहता है, आपको बुखार आती है, थकान लगा रहता है हमेशा, जब भी आप कोई काम करते हैं आपको थकान थकान सी फील होती है, सांस नहीं आता, एंड इवन आप काम करने का भी मन नहीं करता है। तो भाई अगर इस तरह के भी आपको लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लगातार थकान है, बुखार है, चिल्स आ रहे हैं यानी कि आपको झुरझुरियाँ आ रही हैं,
जून की गर्मी में भी आप 3-4 मोटा जैकेट पहनकर बैठे हैं और मम्मी कह रही है ओ पागल लड़की निकाल दो इसको, तो भाई इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वायरल है, बदलते मौसम में हमें सिर्फ वायरल या फ्लू हो चुका है और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ये बहुत लंबे समय तक जा रहा है, हाथ पैरों का रंग भी पीला दिखाई पड़ रहा है, तो ये पीलिया का लक्षण है। दूसरा है कि गहरे रंग का पेशा। अगर आप टॉयलेट जाते हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आप जो यूरिनेट कर रहे हैं तो आपकी यूरिन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। अब हर बार अगर आप जा रहे हैं और आपने सुबह से पानी ही नहीं पिया है, तब तो भाई डार्क होना लाजिम है। फिर ये मत सोच लीजिएगा कि अरे नहीं, आज तो हमारा देखो डार्क है और अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज सुबह ही सुना था पीलिया हो रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सुबह से पानी ही नहीं पी रहे हैं, आप सुबह से आपने सिर्फ एक ग्लास पानी पिया है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, अंदर से वो डिहाइड्रेट है। तो जब भी आप यूरिनेट करने जाते हैं तो आपके जो टॉयलेट का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा येलो होता है, येलोइश होता है, इवन बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बार बार पीला दिखाई पड़ रहा है, आप पानी लगातार पी रहे हैं, आप अपना ख्याल लगातार रख रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपके पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा गहरा दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक सिम्टम होता है कि आपको पीलिया हो चुकी है और आपको एक बार जाकर ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर जो आपके टेस्ट कराएंगे, जो आपको चेक करेंगे, वो आपको क्लियर बता सकते हैं कि क्या आपको पीलिया है या नहीं है। नहीं तो भाई घर में ही बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि आज हमने दाल में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर हमने कोई दवा खा ली थी, तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हालांकि ये होता है कि कुछ दवा खाने के बाद हमारे पेशाब का रंग गहरा हो जाता है या पानी ना पीने की वजह से भी गहरा हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ लगातार देखने को मिल रही है, 3-4 दिन से आप लगातार इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और आपकी दिनचर्या एकदम बराबर चल रही है, आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, आप ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से जाकर चेक करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपको बता दें, आप लगातार थके हुए महसूस करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, मम्मी कहती है भाई छत पे से जाके कपड़े उतार लो, आपको 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में लगता है कि पूरा बुढ़ापा आज मेरे ऊपर ही आ गया है, दादी को छोड़ के बुढ़ापा मेरे अंदर आ चुका है, जोड़ों में दर्द बना हुआ है और थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, काम करने का मन नहीं है। और मम्मी से कहते हैं मम्मी बहुत थकान हो रही है, मम्मी कहेंगी लो भाई सुबह से सो रहे हो, रात में भी सो ही रहे थे, सुबह से उठे नहीं हो, तुम्हें थकान क्या हो रही है, तुमने काम कौन सा किया है। तो भाई अगर आपका बच्चा इस तरह की कंप्लेन कर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसको हल्का हल्का बुखार भी है, उसके पेट में भी दर्द है, तो हर बार इन चीज़ों को मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो आपको हर एक चीज़ का सिम्टम देना पहले से शुरू कर देता है, वो आपको बताना शुरू कर देते हैं कि देखो भैया अंदर कुछ गड़बड़ी है, अभी ठीक कर लो, बाद में ठीक करोगे तो बाद में फिर हम भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी आप हमको ले रहे हो, यानी कि सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आता है कि आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, कहीं भी आपको इचिंग शुरू हो रही है, या फिर आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटता है। अब यूँ तो हमारे भारत में जब किसी का वज़न बहुत घटना शुरू हो जाता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारी दादी नानी आकर कहती हैं कि अरे तुम तो बहुत पतले हो गए हो। पहले तो हमको लगता है कि यार दादी नानी को तो हमेशा ही पतले लगते हैं, मम्मियों को तो हमेशा पतले लगते हैं, बट अगर आपका दोस्त भी बोल रहा है तो हमें लगता है कि अरे वाह बिना एक्सरसाइज करे हमारा वज़न कम, गॉड हम पर मेहरबान। बट ऐसा नहीं है, गॉड मेहरबान नहीं होते हैं, अंदर की बीमारी आप पर मेहरबान हो जाती हैं और वो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम करना शुरू कर देती है। तो अगर आप दिन भर वही सब खा रहे हैं जो आज तक खाते आ रहे थे, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा था, अगर वो आपका बहुत तेज़ी से वेट लॉस होना शुरू हो गया और आप सोच रहे हो कि मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इसके आगे जाकर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो भाई अगर लगातार आपकी त्वचा का रंग बदला हुआ है, बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, फ्लू जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी टॉयलेट का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, आपका वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो भाई ये वो सारे लक्षण होते हैं जो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, और ये कुछ गड़बड़ी कुछ और नहीं जॉइंडिस है, यानी कि पीलिया है। अब इसको जाकर आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के इलाजों में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर का देसी उपचार करके ठीक हो जाऊंगा, तो ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई लकी इंसान हो जिसके ऊपर घर की दवाइयाँ, घर के उपचार काम आ गए हों, देसी नुस्खे काम आ गए हों, लेकिन आपके ऊपर भी वही चीज़ काम करेगी, ये ज़रूरी तो नहीं। तो भाई हमने आपको बताया कि क्या होती है पीलिया और क्या होते हैं उनके सिम्टम्स। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पीलिया हो जाती है तो किस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देनी चाहिए, क्या हैं जिनको ऐड करना चाहिए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। तब तक के लिए आप बताइए कि आपको कभी या किसी आपके आसपास वाले को पीलिया हुआ, तो जिसको आपने बताया था कि नहीं नहीं नहीं तो वो पीलिया है, उसने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया और एक महीने बाद डॉक्टर ने उन्हें खुद बताया कि जॉइंटिस हुआ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है। लोगों को लगता है जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम मजाक करते हैं या उनके बारे में बुरा सोचते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं ना। चलिए
सुनते रहिए आप अपना शो स्वास्थ्य संगिनी, सेहत सही लाभ के बैनर के तले मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति, लेकर आए इस खास प्रोग्राम को आप सभी के लिए आपके द्वारा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास सपोर्ट, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति, लेकर आई हूं आपके लिए सेहत सही लाभ कई बैनर के तले इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात है आपके सेहत की, आपके अपनों की। क्योंकि भाई, अपनों का ख्याल रखना अपना ही काम होता है और अपना ख्याल रखना भी अपना ही काम होता है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो आप दूसरों का ख्याल भी नहीं रख पाते। स्पेशली ये लाइन उनके लिए है जो हमारे घर की मम्मियाँ हैं, बहन हैं, आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनर है, यानी कि हमारे घर में जो फीमेल्स हैं वो अपना ख्याल ज़्यादा नहीं रखती है। क्योंकि हमारे यहाँ अपना ख्याल रखने का मतलब होता है कि सेल्फिश हो जाना, आप अपने आप को लोगों से ज़्यादा ऊपर रख रहे हो। आप खुद को प्रायोरिटी में कैसे रख सकते हो? आपका काम है कि दूसरों को प्रायोरिटी में रखना। आप सुबह उठकर अगर पहले नाश्ता खुद कर लेते हो तो ये क्या बात होती है? आपने कैसे कर लिया? होता है ना, बेशक होता है। और ये चीज़ें हमें आज भी नज़र आती हैं बहुत सारी जगह पर। इवन हमारा इंडिया बदलता जा रहा है, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पुरुषों के बाद ही महिलाओं को खाना खाने को मिलता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि वो जितना खाना बनाती हैं उसका सिर्फ 50% ही उन्हें मिलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो वो दे देती है। अगर सब्ज़ी अच्छी बनी है तो वो अपने लिए सोचती भी नहीं है, उनसे जो मांगता है वो उनको देती जाती है। और वो ये नहीं सोचती है कि अपना ख्याल रखना कि ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये ज़रूरी है, ये प्रायोरिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है महिलाओं का जो सबसे बड़ा काम है वो है त्याग, सेक्रीफाइस करना। और इसी सेक्रीफाइस में ही कहीं ना कहीं आपको सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। क्योंकि महिलाओं में ही अनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, थायराइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड जिस तरह से हमारा दिनचर्या बदलती जा रही है, हमारी डेली लाइफ बदल रही है, उस तरह से और भी बीमारियाँ आती जा रही हैं। और पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो आपकी गलत आदतों की वजह से, या फिर आपकी कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर रही होंगी जिसकी वजह से आपको पीलिया। हरकतें क्या हैं? आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है और आपने उस बीमारी को अपने अंदर ले लिया है। हालाँकि आपके लिवर ने, आपके शरीर ने उसको ठीक भी कर दिया और आपको पता भी नहीं चला, तो आपको क्या लगेगा कि पीलिया मुझे उस बीमारी से हुई है, मतलब उस वायरस से हुआ है? जी नहीं, आपको पीलिया हो रहा है आपकी लिवर की वजह से, यानी कि आपका जो लिवर है वो पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम अपने लीवर को कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं देते हैं। हम अपने लीवर को क्या देते हैं? बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा कार्ब्स। और उससे भी अच्छी बात यह होती है कि हम शराब का भी सेवन करते हैं और हमें लगता है कि यार शराब पीने में कैसी बुराई है, बाहर के लोग भी तो पीते हैं। जी हर कोई पीता है, लेकिन एक लिमिटेड वे में। और हमारे भारत में लिमिट का नाम जब कोई सुनता है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि भाई एक ही ज़िंदगी है और एक ही ज़िंदगी में कितनी रोक टोक है। फिलहाल जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक हमको सारी रोक टोक बहुत बुरी लगती है। जब हमसे मम्मी कहती है कि बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा छोड़कर घर का खाना खाओ, तो हमें लगता है कि यार घर का खाना तो डाइट होता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाते हैं तो आपके दोस्त भी कहेंगे अच्छा तो तुम डाइट कर रहे हो, बल्कि वो रियल फूड होता है, यानी कि असल खाना होता है जो हमें मदर नेचर से मिल रहा है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो असल में हमारे लिए बना है। बट हमें पसंद आता है वो जो तेल में नहा कर, डुबकियाँ लगा कर निकला हुआ है, जिसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, फैट बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज इतनी ज़्यादा हैं और कैलोरीज का कोई काम भी नहीं है, यानी कि वो आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपका मोटापा बढ़ा रहे हैं, आपके लीवर के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, आपको फैटी लीवर जैसी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने पहचान लिया है कि आपको पीलिया हो ही चुकी है तो आप क्या करेंगे, क्या कुछ खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पीलिया में खाने के लिए ताज़ा फल या फिर सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, जो लीवर के कार्य को बेहतर बनाते हैं, यानी कि आपके लीवर को ठीक करते हैं और लीवर अपना काम वापस से बेहतर कर सकता है। इसमें आप क्या क्या खा सकते हैं? इसमें आप सेब, संतरे, पपीता, पालक, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं जो पीलिया के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो भाई, इनके लिए आप जूस बनाकर पी सकते हैं, स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, या फिर इनमें हल्का भून कर खा सकते हैं। हमारे यहाँ जब भी हम अच्छा खाना भी खाते हैं तो उसे तेल में नहला कर खाते हैं। हम कहते हैं भाई तेल ज़्यादा डालो स्वाद आएगा, और स्वाद के चक्कर में पता चलता है कि हम जो चीज़ खा रहे थे ताकि हमें परेशान ना करे, हमें फ़ायदा दे, ये इसका उल्टा ही होता जा रहा है, हम तो और बीमार होते जा रहे हैं। तो भाई, इन सब्ज़ियों को आप उबाल कर खा सकते हैं, इनका सूप बना कर पी सकते हैं, इनका जूस बना कर पी सकते हैं, फलों को ले सकते हैं, या फिर स्मूदी, क्योंकि आप वेजिटेबल स्मूदी भी पी सकते हैं, फ्रूट्स की स्मूदी भी पी सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का भून कर इनको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, हल्का फुल्का, यानी कि थोड़ा सा स्प्रे करें ऑयल को, उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ आता है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, यानी कि वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हमारे भारत में अगर किसी से ये कहा जाए कि प्रोटीन अपने डाइट में शामिल करें, तो लोगों को लगता है कि प्रोटीन, अगर प्रोटीन पाउडर से लेंगे तो किडनी में पत्थर हो जाएंगे, यानी कि पथरी हो जाएगी, हमारी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी, लीवर फेल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ना लीवर ख़राब होता है, ना किडनी फेल होती है, ना उसमें कहीं स्टोन्स होते हैं, पथरियाँ होती हैं, इवन ये सारे भ्रम हैं हमारे आसपास जो फैले हुए हैं। जब तक आप खाने में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आपकी मांसपेशियाँ जो प्रोटीन से ही बनी हुई हैं वो डेवलप नहीं हो पाती और आपको थकान थकान लगी रहती है। हमारे भारत में प्रोटीन की इतनी कमी है कि अभी तक हमारे डाइट को अगर आप ध्यान से भी देखेंगे, जो घर का बना खाना होता है उसमें भी कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। प्रोटीन सिर्फ 2 ग्राम आपको एक छोटी सी दाल की कटोरी में देखने को मिल जाएगा, और उसे ही हम प्रोटीन समझ के सोचते हैं कि भाई हमने तो प्रोटीन पूरा किया है ना। बट उसके साथ हम क्या लेते हैं, आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी, रोटी में घी लगा लिया है, तो सारी चीज़ें घूम घाम कर जो आती हैं वो कार्ब्स के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और हमारा जो देसी खाना होता है वो प्रोटीन से बहुत दूर होता है। तो भाई आपको अपने दिन में, अपने खाने में प्रोटीन शामिल करने की ज़रूरत है। अब आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मीट से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको टोफू से मिल सकता है, आप पनीर खा सकते हैं, इवन अगर आप घर का बना चीज़ भी खाते हैं तो भी आपको प्रोटीन ही मिलेगा, बट बाहर का नहीं खाना, क्योंकि बाहर का चीज़ बहुत प्रोसेस्ड होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो उसका प्रोटीन कम करके उसे आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा बना देती हैं। इनके अलावा आप साबुत अनाज खा सकते हैं जिसमें ब्राउन राइस, किनुआ, ओट्स और फाइबर, मिनरल्स से भरपूर चीज़ें। फाइबर आपको किस किस में मिलता है, चलिए ये भी बता देते हैं। फाइबर आपको पपीते में ज़्यादा मिलता है, अगर फलों की बात करें पपीता, नाशपाती, अमरूद, इनमें आपको फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। स्ट्रॉबेरीज में आपको फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, ओट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है, चिया सीड जिनको हम सुनते आए हैं, लेकिन वो खाने का एक तरीका होता है कि आप इसे ओवरनाइट ज़रूर सोक करें ताकि ये अपना पूरी तरह से फूल के बड़े हो जाए, नहीं तो ये आपके गले में भी फंस सकते हैं अगर आप इनको सूखा ही खाने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि ये अपने साइज़ से 10 गुने ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आप फाइबर से भरपूर चीज़ें लीजिए, ऐसा खाना खाइए जिसको आप आसानी से पचा सके, जो बहुत ऑयली ना हो, बहुत स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना हो। हैवी खाना जब भी आप लेंगे और आपका लीवर पहले से ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके डाइजेशन पर जोर पड़ने वाला है, तो ये चीज़ें आपकी जो कंडीशन है वो और भी वर्स कर देंगी, और भी ख़राब कर देंगी। तो बस ऐसा करते रहिए और अपनी दवा टाइम पर लिया करिए, और गर्म पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि भाई गर्म पानी पीने से आप अपने सेहत के साथ दोस्ती करते हैं। आपको लगता है कि फ्रिज का निकला चिल्ड वाटर हमारे लिए अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं। अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं या गर्म पानी सुबह उठकर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद पीते, तो आप अपने डाइजेशन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाकर रखते हैं, खुद को डिटॉक्स भी अच्छे से करते हैं। तो बस यही सब करते रहिए और पीलिया से बच कर रहिए, क्योंकि भाई मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ने वाली है। गर्मियों में फूड पॉइजनिंग, डायरिया, हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, न जाने ऐसी कितनी ही बीमारियाँ हैं जो गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादातर नज़र आती हैं। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए, बाहर की जंक फूड को लिमिट में कीजिए, यानी कि लिमिटाइज कीजिए, हमेशा उसी को खाकर अपना पेट भरने की कोशिश ना करें। अच्छा खाना खाएं, रियल खाना खाएं, रियल वाटर पिए, यानी कि गंदा पानी पीने से भी बचें, क्योंकि गंदा पानी आपको टाइफाइड जैसी बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। तो भाई बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। इतना ही करने की आपको ज़रूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी सुनते रहिए आप अपना शो स्वास्थ्य संगनी अपनी आयुष्मती के साथ, क्योंकि यहाँ पर बात होती है आपके सेहत की, आपके अपनों की सेहत की, और ऑफकोर्स बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है आज के इस प्रोग्राम से जिसको हम लेकर आते हैं हर हफ्ते। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। आप घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना FM रेडियो 11.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अगला कार्यक्रम है सेहत या संग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो या आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है, कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट सी सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुजाता जी।
3: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
4: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
3: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
4: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
3: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
4: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
3: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
4: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
3: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
4: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
3: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
4: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से

0: है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्वीसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्वीसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्वीसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों

0: के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है। तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
2: सुन सहेली
1: और मैं हूँ आपकी आरजे समता
2: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: तो भाई जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में क्योंकि हम आ गए हैं फुल ऑन मस्ती एंड फुल ऑन एनर्जी एंड फुल ऑन मस्ती धमाल एंड फुल ऑफ जॉय तो है ही, पर फुल ऑफ जॉय के साथ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है आज के दिन की, क्योंकि आज है हमारा ब्यूटीफुल सा थर्सडे। पता नहीं क्यों करने की आदत हो गई, सांप नहीं होते जैसे सपेरन, नाग पंचमी अभी क्योंकि गई है
2: सांप सपेरा।
1: अगर मैं सोचती हूँ मेरे साथ कभी ऐसा हो, मुझे ये सौभाग्य मतलब हासिल हो कि ऐसे हम लोग बैठे हुए हों और अंशिका के पैर के नीचे सांप आ जाए, अंशिका के पैर के नीचे से सांप आ जाए और मैं वो बोलूं अंशिका सांप
2: नहीं मैम।
1: तो सोचो अंशिका कितनी जोर से कूद करके पीछे जाएगी, मतलब वाह मजा आ जाए ना
2: उस 360 डिग्री से भी ऊपर।
1: हम भी पैरों पर
2: नहीं करूंगी, यहाँ कुछ नहीं है मैम हमारा,
1: यहाँ छिपकली भी सांस नहीं ले सकती है, तो सांप को सांस लेने के लिए तो सोचना पड़ेगा। नहीं है बाबा,
2: आपको स्टार्टिंग में सांप
1: मैं बताऊं लिसनर्स आपको, नाग पंचमी के दिन हम लोग यहाँ से जा रहे थे शाम को, तो हुआ ये कि यहाँ दुखनाथ मंदिर के बाहर ना उस दिन सब लोग नाग वाग लेके बैठे हुए थे बहुत सारे, तो हम लोग ऐसे बात करते हुए अचानक से जा रहे थे और अंशिका की नजर पड़ी और ये नजर पड़ी और दुर्घटना घटी, इतनी जोर से भाग के आगे चली गई कि हम लोग पूरा उधर से घूम के फिर मंदिर आए। मतलब हमने कहा अरे भगवान इतना डरना चाहिए, मैं मानती हूँ सांप से तो हर कोई डरता है भाई, पर ठीक है डरना चाहिए, बट अभी यहाँ नहीं है तुम्हारे पैरों में, परेशान मत हो, नहीं है
2: होगा भी तो क्या करेगा, हाँ ज्यादा ज्यादा मुझे डस लेगा यही करेगा
1: बस
2: और उसके बाद मैं यहाँ मौजूद नहीं रहूंगी।
1: अच्छा
2: तो मेरी जगह कोई और होगा।
1: तो तुम्हें फिर डर किस बात का है, जब तुम्हें ये भी पता है तो तुम्हें डर किस बात का है?
2: मुझे मुझे काट लेता है या काट लेगा उसका डर बिल्कुल नहीं है। हाँ। काट लेगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूंगी बस यही होगा। हाँ। तो मुझे सिर्फ उसको देख के वो फियर है कि हम देख लेंगे तो फिर नहीं होगा।
1: उसको उसके लिए एक ड्रेस बनवा दे लंबी सी।
2: नहीं मैम जरूरत नहीं है, कृपया करके ऐसी बातें ना करें।
1: अच्छा ठीक है, तो उसकी ड्रेस वेस नहीं बनवाते हैं, हम लोग अपनी ड्रेस की चिंता करते हैं। तो चलिए भाई बहुत ही प्यारी सी दोपहर में लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा शो सुन सहेली में। इस प्यारी सी दोपहर में हम दोनों की बकबक शुरू हो चुकी है और आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
2: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, क्योंकि आज है बहुत ही प्यारा सा दिन, आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा ये हुआ है कि दिन की शुरुआत कुछ खट्टी मीठी तीखी सब हुई,
1: चटनी
2: दही उसमें सेव भी थी।
1: क्लियर बता देना चाह रहे हैं, मैंने इसको आज टिक्की खिलाई है, वही बहुत ज्यादा गुणगान गा रही, इनसे तो कुछ होगा नहीं, ये तो मुझे कभी कुछ खिलाएंगे नहीं, खाली कैसरोल दे दिया था बस, खाली वो भी और ऐसे नहीं इंसान कैसरोल लेकर के आए तो उसमें कुछ खाने के लिए लेकर के आए, एक क्या होता है सिंधौड़ा बोलते हैं उसको, सिंधौड़ा क्या?
2: नहीं मैम वो होता है,
1: मैं नहीं बोलूंगी,
2: सेढ़ा
1: ही भगवान
2: मैम, वो गिफ्ट रैप था, अगर मुझे ही गिफ्ट रैप मिला तो मैं उसमें कुछ कैसे डालती,
1: नहीं
2: पर कोई बात नहीं।
1: मुझे ये बताओ पहले कि सेड़ा कैसे बनता है और मैं वो खाना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी के हाथों का, या तो सेड़ा खिलाओगी या तो मुझे तुम वो जो चावल का क्या बनता है
2: फरा खिला सकती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम अभी लगेगा।
1: तो नहीं फरा छोड़ दो, तुम सेड़ा खिलाओ, उसके पत्ते मिल रहे हैं मार्केट में,
2: पत्ते मिल रहे हैं,
1: देखो ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो सेड़ा के पत्ते हैं।
2: ठीक है
1: मैं बता देती हूँ कहाँ मिलते हैं।
2: ओके,
1: जहाँ तुम एक बार बताशा खा रही थी और मैंने तुमको देख लिया था मम्मी के साथ, थोड़ा सा बस उसके आगे ना एक डीसीएम की शॉप है, उसी के आगे एक आदमी नीचे जमीन पे लगा के बैठा है, हालांकि मुझे बनाना नहीं आता है वरना मैं कप का बना के खुद खा चुकी होती।
2: ओके ओके फिर तो
1: हाँ, रोज लगाता है बेचारा, वो मुझे रोज बुलाता है मंदिर जाती हूँ, मुझे वो रोज कहता है कि मैडम ले लीजिए। तो मैंने एक दिन उसको बाबा को आराम से समझाया, मैंने कहा बाबा मुझे बनाना नहीं आता है तो मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, तो बोला बिटिया मैं बता देता हूँ इसको ऐसे बना, मैंने कहा मेरी खोपड़ी में नहीं घुसेगा ये, जो लोग बनाती है ना मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वहाँ से ले बनाए और मुझे खिलाए।
2: जरूर बनाऊंगी और वहाँ से लूंगी क्योंकि मिल नहीं रहे थे, मतलब जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ तो नहीं मिल
1: रहे। और मतलब मेरी ये उम्मीद है कि मैं सैटरडे का कल का एक दिन तुम्हें दे रहे हैं,
2: हाँ
1: सैटरडे के दिन मुझे ये खाने को मिलेगा, आज जाके लोगी कल भी तुम्हारे पास टाइम है,
2: हाँ
1: सैटरडे को मैं खाऊंगी।
2: ओके
1: पक्का वाला चलो तो भाई एक कमिटमेंट हो गया है और अभी चैट बॉक्स में आकर के आप लोगों से भी कमिटमेंट करना है। नागेश्वर जी आ गए हैं, प्रीति जी आ गई हैं, कमल नयन जी आ गए हैं एंड ऑल जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, प्लीज कम एंड एंजॉय योर फेवरेट शो लाइक सुन सहेली जो कि लेके आती है आपकी आज समता
2: और आरजे अंशिका।
1: तो शुरू करें आज की पोयम को।
2: यस मैम, तो आज हमारा दिन जो है वो बहुत ही प्यारा सा है, तो उस दिन पे हमारे पास बहुत ही प्यारी सी एक पोयम रोज होती है, आज भी होने वाली है, जो आप सुनेंगे किससे?
1: क्या
2: अभी मैंने कहा आप पोयम सुनेंगे? हाँ। तो मैंने उसमें एक सवाल भी पुट अप किया कि किससे
1: किससे मुझे कुछ और समझ में आया।
2: क्या समझ में आया?
1: किससे
2: यही समझ में आया, यही समझ में आएगा आपको मैम, यही समझ में
1: आया। मैंने यही इमेजिन किया किससे, मतलब तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोल रही है ऑन एयर ये,
2: ऐसा मैं
1: किससे, तो मैं जब पता नहीं क्यों मुझे वो दिमाग में आ गया किस
2: अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
1: क्या बनाना पेठा जी, नहीं नागेश्वर जी हम उसको बाद में क्लेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन आप मामला जो किस पे आके किस पे आके अटक गया है।
2: मैंने किस नहीं कहा था, मैंने किस से
1: हो गया,
2: किस
1: चलो
2: से कहा
1: रास्ता
2: था?
1: दो
2: रास्ता देती हूँ
1: जी,
2: रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रख दिया आपने पहले ही,
1: हट गया
2: किस से
1: मिल गया चलो मिल गई,
2: चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रास्ता देते हैं आज कुछ उम्मीदें उतनी ही रखना जितनी पूरी हो जाती हैं, उम्मीदें उतनी ही रखना जितनी पूरी हो जाती हैं, हद से ज़्यादा नहीं होती कई बार ये, पर कई बार हमारी कुछ ज़रूरी उम्मीदें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, दिल में गिला रह जाता है कब होगी नई शुरुआत और कब करेंगे हम अपनी पूरी हुई उम्मीदों पे बात, पर कोई नहीं हम नया आसमां भी ढूंढ लेंगे, एक रास्ता न सही दूसरा चुन लेंगे। तो आइए इसी बहुत ही प्यारी सी लाइंस के साथ करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता की शुरुआत जो आपको सुनाएंगी आपकी आरजे समता
1: जी। थैंक यू सो मच,
2: यू वेलकम।
1: मैं तो आपकी जो दो लाइन पहले वाली थी ना उस पे विचार करने लगी थी कि बहुत ही बढ़िया सी एक बहुत ही विचार करने वाली वो दोनों लाइनें थी, जैसे कि कहते हैं ना कि माहौल चल रहा होता है और वैसी ही कविता की स्टार्टिंग आप बोल देते हो, तो थैंक यू अंशिका,
2: यू वेलकम।
1: चले शुरू करें
2: जी।
1: घर की छत को थामे हैं जो एक पुराने साए की तरह, उनका होना ही काफी है सुकून से सरमाए की तरह, उनकी बातों में छिपी है सर्दियों की मीठी धूप जो भटके हुए बच्चों को राह दिखाए एक राय की तरह, वो सरसराती धीमी आवाज में चुपके से हंस देना, उनका हर बीमार बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देना, घर के हर एक कोने को जो बांधे रखता है एक सूत्र में, कितना अनमोल है उनका हर लम्हा हमारे नाम कर देना, उनकी आंखों में बीता हुआ एक पूरा दौर सोता है, उनके आंचल में ही असली सुकून महसूस होता है, वो जो बिना कहे ही दिल की हर बात समझ लेते हैं, उनके सिखाए सबक से ही जिंदगी का सफर आसान होता है, वो घर की बुनियाद हैं, वो ही हमारी पहचान है, उनकी मौजूदगी में ही से ही महफूज हमारी जान है, रब से बस यही दुआ है सलामत रहे वो हमेशा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से चमकता हमारा जहान है।
2: वाह, बहुत ही प्यारी लाइंस और बहुत ही इमोशनल भी, थोड़ा सा मैं खो गई थी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी। देखिए कहते हैं ना कि जैसे बागवान मूवी में वो एक लाइन कहते हैं कि बुजुर्ग किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं होते हैं, वो जड़ होते हैं और जड़ काट देने से पेड़ कभी हरा नहीं रहता।
1: हाँ।
2: ठीक उसी तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं, तो अपने बड़ों का और अपने वेल विशर्स आपके जो भी हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके हिस्से की रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ चलते हैं
1: जी।
2: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, आपकी कोशिश डिसाइड नहीं करती कि आप लूजर हैं या क्या हैं। आपका रिजल्ट जब आता है तो हम हमेशा कहते हैं कि हम, जैसे किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम उसे कह देते हैं कि तुम लूजर हो, लेकिन उसकी रिजल्ट नहीं बल्कि उसकी कोशिशें, उसके एफर्ट्स डिसाइड करते हैं, डिसाइड ये करता है कि आपने कितनी कोशिश की, क्या आपने अपनी 100% कोशिश की किसी चीज को पाने की। किसी कंपटीशन के लिए हम जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि लास्ट में आपको प्राइज मिला या नहीं मिला, या आपने अच्छा किया या बुरा किया। मैटर ये करता है कि हमने उस पर कितनी मेहनत की और उसने सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव डाला। अगर आपने कोई बात की तो क्या सुनने वाले को वो समझ में आया जो आप समझाना चाहते थे।
1: Exactly.
2: अगर उसे समझ में आया और दो लोगों ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। और रही बात रिजल्ट की, तो कई बार होता है ना कि हमें वो नहीं मिलता है जिसकी हमें उम्मीद होती है, लेकिन वो मिल जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, बट हो सकता है कुछ और मिला हो। कोई आपकी बात से इंस्पायर हुआ हो, उसे लगा हो कि नहीं मेरे पास भी तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस तरह फाइट करूंगा, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ठीक उसी तरीके से हमेशा शब्दों पर ध्यान दीजिए, और किसी भी पल में कोई भी छोटा से छोटा कॉम्पिटिशन हो, बड़ा से बड़ा हो, तो वहाँ आपको सिर्फ जीतने के लिए कोशिश नहीं करनी होती, अपनी खुशी के लिए कोशिश करनी होती है, अपने दिल और अपनी फीलिंग्स को कहना होता है। जब हम दिल से कोई बात करते हैं तो वो सीधा दिल तक जाती है।
1: Exactly.
2: फिर प्राइज मिले या ना मिले,
1: कोई मैटर नहीं करता
2: है। आपको सराहना मिले या ना मिले, कभी भी कोई काम सराहना के लिए नहीं करना चाहिए या जीतने के लिए नहीं करना चाहिए। जब अभिमन्यु महाभारत में जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको ये आशीर्वाद नहीं दिया था कि जाओ विजयी भवन, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जाओ सदा तुम्हारी कीर्ति बनी रहे, यश बना रहे, और लोग जब तक युग चलेगा तब तक तुम्हारा गान करेंगे। तो जब सुभद्रा ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, आपने अपने ये आशीर्वाद क्यों नहीं दिया कि जाओ विजयी हो, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा था कि जीत तो कभी कभी गलती से भी मिल जाती है, या कभी कभी हम छल से भी पा लेते हैं, लेकिन जो यश मिलता है, जो कीर्ति मिलती है, वो सिर्फ सच्चे परिश्रम से मिलती है और वो हमेशा रहती है। अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो वो शब्द आपके कानों में हमेशा के लिए रह गए। ऐसा तो नहीं कि थोड़े दिन बाद हम भूल जाएंगे। तो उसी तरह कोशिश हमेशा पूरी करनी चाहिए।
1: चले,
2: यस मैम,
1: अब लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के दूसरे सेगमेंट की ओर, यानी कि आज के टॉपिक की ओर। तो बस हम यू कहें, यू आए, सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
3: आरजे अंशिका।
2: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के विमेन सेंट्रिक, सॉरी विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम तो रहता ही है, मुझे वेनसडे याद आ रहा था जो कि आज है थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम लेकर के आते हैं सीनियर सिटीजंस पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें।
3: बिल्कुल, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि बढ़ती उम्र में सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो जाती है, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि होती है डेलेरियम। डेलेरियम को अगर सीधी भाषा में हम कहें तो ये एक तरीके की ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपके घुटनों में पानी भर जाता है।
2: ओके।
3: एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि घुटने सूज जाना अचानक से, और बढ़ती उम्र में बड़े बुजुर्गों को जब ये चीज़ होती है तो ये मान लिया जाता है कि अरे उन्हें क्या है, उन्हें गठिया हो गई होगी, या इस तरह की चीज़ों को मान लेते हैं हम। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये गठिया ही हो।
2: अच्छा।
3: कई बार ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कुछ लक्षण भी होते हैं जो कि हमें ध्यान देने चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि ये होता क्यों है। ये उनके साथ होता है जो अपने घुटने पर बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे कि बढ़ती उम्र जब हमारी हो जाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घुटने के बल ज़्यादा ना बैठें, ज़्यादा काम ना करें, अपने पैरों को जितना हो सके उतना आराम दें। कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है अगर चेयर पे भी बैठे हैं वो तो पैर मतलब नीचे करके तो बैठना ही चाहिए, वो सही है, लेकिन हिलाते रहते हैं अपने पैरों को। पैरों को हिलाने से कई चीज़ें अच्छी होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन रेगुलर कई घंटों तक हिलाने से आपके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, फिर जब आप रुकेंगे तो पेन होगा पैरों में। इसलिए हिलाने नहीं चाहिए। और बहुत लोगों की आदत होती है बैठते वक्त एड़ी को ऐसे पैर को नीचे ठोकते रहने की हैबिट होती है ज़मीन में, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेगुलर अगर आप बहुत देर तक ऐसा करते हैं तो जब आप रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में दर्द होने लगा। दूसरा होता है कि कई बार कई चीज़ों को हम नीचे ही बैठकर करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम है नीचे बैठने में, पलथी मारकर बैठने में, लेकिन फिर भी हम नीचे ही बैठना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है तो चेयर पर बैठने में क्या दिक्कत है।
2: सही बात है।
3: फिर लोगों को लगता है कि अरे नहीं, ये जाहिर हो जाएगा ना कि हमारी एज बड़ी है और देखो ये नीचे नहीं बैठ पाते, तो इसमें कोई बड़ी बात
2: नहीं। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसमें कम्फर्टेबल हो। मैं कल की बात बताऊं कि कभी कभी वो शॉर्ट स्टूल्स नहीं होते जो छोटे वाले होते हैं, तो ऐसे ही है कि हाँ अगर मुझे लगता है कि हाँ हमें पैरों में दिक्कत है या फिर हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो चाहे जितने भी लोग बैठे हों उनके सामने आप सबसे पहले अपना कंफर्टेबल जोन देखो ना।
3: बिल्कुल।
2: किसी को दिखाने के लिए थोड़े हम नीचे बैठ रहे हैं या फिर स्टूल पे बैठ रहे हैं।
3: कुछ लोगों को यही लगता है कि अरे वो क्या सोचे,
2: वो क्या सोचे?
3: उससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। ज्यादा प्रेशर कभी नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज ये आती है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं, ऐसी मेडिसिंस होती हैं जिनके की ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ऐसा हो जाता है। कुछ मेडिसिंस का मतलब है जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, तो हाँ आप अपनी दवाई तो लेते ही हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम कि जैसे जब पेन किलर खाते हैं तो कभी ज्यादा दर्द होता है, तो एक दवाई की भी एक सेट टाइमिंग होती है कि 8 घंटे बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं या 10 घंटे बाद हम दूसरी टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन कई बार हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, अरे 4-5 घंटे हो गए ना एक डोज खाए हुए, दूसरा भी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन वो दवाई फायदा करने के बजाय आपकी बॉडी को नुकसान कर जाती है।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
3: इसलिए कभी भी खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर को ही डॉक्टर।
2: और मैंने तो देखा है अंशिका, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, सर्दी जुकाम हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो वो क्या करते हैं सीधे जाते हैं ना वो किसी भी केमिस्ट की शॉप पे, और वो जा करके, या फिर फीवर आ गया तो क्या करते हैं कि उसमें से अपने मन से दवाइयां बता के और दवा ले लेना और फिर उसको खा लेना। तो इससे क्या होता है पता है, इससे आप लोग वो आप ना उसमें हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आपको वही टैबलेट जो बिना आपकी बॉडी का चेकअप किए हुए अगर आप वो दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट भी होता है। और ये तो क्या कहते हैं घुटनों की बात है, या तो फिर ये तो बहुत इंटरनल बात हो गई। इन सारी बातों को लेकर के भी अगर कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लें।
3: बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घुटने टकराए ना, कई बार क्या होता है ना कि बेड से टकरा गया या हो जाता है, मतलब सोफे से आप टकरा गए, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अगर दर्द भी होता है तो हम कहते हैं अरे हो रहा होगा, हल्का लग गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन चोट लगते लगते अंदर के बोन्स कमजोर हो जाते हैं, जैसे फिर आप अगर हल्का सा भी गिरेंगे ना तो क्रैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको चोट लग गई है, आपको पेन हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, आपको जरूरत है, नीड है, तो आप दवाई लगाइए। दूसरी चीज ये होती है कि कई बार हमारे घुटनों से और पैरों से खटखट की आवाजें आती हैं।
2: हाँ, टक टक आती
3: है। हाँ, हड्डियों से आती हैं आवाजें,
2: उसमें कहते हैं कि वो ग्रीस खत्म हो जाती है ना उसकी। उसके लिए मैं एक टिप बताऊं?
3: बताइए।
2: उसके लिए कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं, ये सभी को पता होगा कि देसी घी मतलब 35 वैसे तो हमेशा से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 40 के बाद 35 के बाद में आपने रोज एक मतलब एक रूटीन बना ले कि रोज एक चम्मच देसी घी आपको किसी न किसी में के द्वारा आपको यूज करना ही करना है, जिससे आपके जो घुटनों से ये आवाज आती है ना टक टक की, ये नहीं आएगी।
3: बिल्कुल देसी घी, वैसे मैम ने अच्छा बताया, देसी घी में हलवा भी बनता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं।
2: शुरू हो गई गांव बसा नहीं लुटेरे पहले
3: आगे बना नहीं खाने वाले पहले तैयार है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा है कि अपने पैरों को हमेशा आराम देना चाहिए। आराम देने का मतलब होता है कि जब आप लेटते हैं ना तो पैरों के नीचे तकिए को रखकर लेटना चाहिए।
2: सच्ची?
3: हाँ, इससे दो फायदे होते हैं।
2: मैं तो यही करती हूँ हमेशा, मतलब काफी सालों से।
3: जी मैम,
2: सच्ची ये बात मतलब मुझे सुन के बड़ी अच्छी लग रही है बात, ये कि हाँ मतलब मैं अच्छी दिशा में जा रही हूँ।
3: आप हमेशा सही दिशा में ही जाती हैं,
2: मतलब मैं अभी बुजुर्ग नहीं होंगी।
3: नहीं नहीं, आप कभी बुजुर्ग नहीं होंगी।
2: नहीं ऐसा नहीं है, कभी क्यों नहीं होंगी,
3: नहीं अभी तो नहीं होंगी।
2: प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति का नियम होता है बदलना, तो वो तो होंगे ही होंगे, ऐसी बात नहीं है।
3: दिल से कभी नहीं होंगे।
2: हाँ, दिल से कभी नहीं होंगे, तो
3: दिल
2: तो
3: से कभी नहीं
2: ये तुमने अच्छा बोल दिया, बट हाँ आगे।
3: जी, तो इससे दो फायदे होते हैं। मैं ये कह रही थी कि हमेशा जब हम इससे आपकी नसों में सिकुड़न नहीं होती है,
2: मतलब आप जब सीधा सोएं
3: हाँ,
2: तो तकिया नीचे लगा दे पैरों हाँ, पे। ओके,
3: अगर पेन होता है आपको तो जरूर तो ज्यादा लगाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो भी, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है कि आपकी नसों में कभी सिकुड़न नहीं आती। जब हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं तभी हमें ज्यादा दिक्कत होती है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी नसों में सिकुड़न है? भाई हम इंटरनल तो देख नहीं रहे कि हमें पता चले, लेकिन वो
2: कैसे पता चलता है?
3: वो दर्द होता है
2: पैरों की जो पिंडलियां हैं
3: एड़ी के नीचे आपको पेन होता है, या फिर कई बार चलते चलते देखते ना चलते चलते ऐसे हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं हम, तो चलते चलते अगर एकदम से आपका बैलेंस जाता है तो ये भी एक तरीके से होता है कि घुटने वीक हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये तकिया लगाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा जब भी पैरों में सूजन आ जाए तो कभी भी कोई भी ट्रिक अपने आप से नहीं करनी चाहिए। हमारे पैरों में सूजन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी से सेक लो ठीक हो जाएगा, ठीक है हो सकता है, या आप कहते हैं आइस क्यूब लगा लीजिए, लेकिन कई बार पैरों में सूजन पैरों में पानी भी हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि आपके पैरों में वो सूजन पानी के कारण हुई तो न सिकाई आपको फायदा करेगी गर्म और न ठंडी, और उससे डबल नुकसान होता है। इसलिए कभी भी अगर बहुत ज्यादा पेन हो और बिल्कुल ऊपर तक सूज जाए ना, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा सूजन है, हम एक कदम भी नहीं चल पा रहे, तो वहां तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैर में घुटनों में पानी आ गया हो, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, वो अपनी ट्रीटमेंट करते हैं और वो पानी फिर निकाल देते हैं।
2: जरूरी नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स उसका इलाज ऑपरेशन भी बताते हैं, बट जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही हो,
3: वो अपने हिसाब से अगर दवाई से ठीक हो सकता है तो दवाई से धीरे धीरे, और नहीं तो बहुत सारी टेक्निक्स आजकल तो काफी आ गई हैं, तो वो उसका यूज करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्जरी ही हो।
2: जी, तो इसका प्रिकॉशंस भी होगा अंशिका?
3: जी मैम,
2: तो प्रिकॉशंस हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप सभी को पता है कि प्रिकॉशंस में मैं आऊंगी बताने के लिए आपको, तो अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे। आपका पसंदीदा शो चल रहा है जिसका नाम है
0: सुन सहेली।
2: स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज ये
6: अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट, अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही थी अब उसका निवारण करने का टाइम आ गया है। और मैं बताऊंगी आपको कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं और उसके लिए छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस टॉपिक,
6: इंसानों का भी इलाज कर सकते हैं।
5: मैं सभी का इलाज करना जानती हूँ अंशिका।
6: यस मैम,
5: है ना, जानवरों से लेकर के इंसानों तक। ठीक है, तो ये जो RICE जो ये है, ये फॉर्मूला हमको अपनाना है, जो कि अभी घुटनों की प्रॉब्लम बताई थी अंशिका ने, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें अपनाना है जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि रेस्ट करने वाला भी हम इसको कह सकते हैं, एक ऐसा छोटा सा नाम दे सकते हैं। तो क्या करना है आइए जानते हैं। देखिए, पैरों को पूरा आराम यानी कि आपको रेस्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप खड़े हो रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप कहीं बैठ रहे हैं, तो पैरों में घुटनों का मेन उसमें काम होता है। सभी को पता है घुटने पर इलास्टिक बैंड्स या सपोर्ट वाले जो एक कंपेसेंट्स होते हैं, आप उसको और बैठते या लेटते समय पैर के नीचे तकिया रखकर उसे दिल के स्तर से ऊंचा उठाएं, और बुजुर्गों की नसों के सुकड़ने से जो एक डर होता है वो भी ठीक होता है जी। तो हुआ, पता चला अंशिका
6: जी? मैम
5: ठीक है। अब जो घुटनों का जो अगला, मतलब जो पहला हिस्सा होता है और दूसरे टांग के जो एक हिस्सा होता है वो फूल जाता है, अगर आप ज्यादा उस पर एक जोर देते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक है, चलो। तो अंशिका जब तक उसका निवारण ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहा है, वो मेरी बातें सुन करके इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो बिल्कुल सोचने लग जाती है कि हम क्या बता रहे हैं, वो क्या समझ रही है। तो मुझे लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, और वो सोचने में पड़ गई है कि आखिर हम बुजुर्गों के घुटनों को कैसे ठीक करें।
6: नहीं नहीं मैम, ठीक कर सकते हैं।
5: कैसे कर सकते हैं?
6: कर सकते हैं, चीजें हैं।
5: सिंपली मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल सभी के घर में ना, जो इंडियन टॉयलेट्स तो हट चुके हैं, और इंडियन टॉयलेट्स और जो कि एक वेस्टर्न टॉयलेट सब लोगों के घर में है जिसको कमोड नाम दिया जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि ये ज्यादा प्रॉब्लम जो शुरू हुई है ना, ये इंडियन टॉयलेट में नहीं जाने से भी शुरू हुई। और कहा जाता है कि जब खेत खलियान में या फिर सभी लोग जाते थे, लोग घर के बड़े बुजुर्ग होते थे पहले जमाने के लोग, उन्हें तो कभी घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, उन्हें तो कभी कोई ऐसा नहीं होता था कि हमारे पेट में दिक्कत है। और जो महिलाएं होती थी वो उनका पेट बहुत ज़्यादा कहती थी कि हमारा निकल गया है। जिम, क्या पहले जिम होते थे, एक्सरसाइज मशीन होती थी? ऐसा नहीं होता था, वो ज़मीन पे बैठ करके भी चक्की चलाती थी और अपने बच्चों को पालती थी, और उनका पेट कभी निकलता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम पुरानी चीज़ों को अगर हम फिर से बैकअप में ला करके मतलब उसको स्टार्टिंग से करने लगते हैं, तो काफ़ी चीज़ों का हमें उससे फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ बुजुर्गों में हम ये देखने को हमको मिलती है कि वो एक जगह बैठे बैठे खाना पीना और चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली होती है कि जैसे आपकी बढ़ती उम्र होती है आपको चाय का सेवन जो है वो कम करना चाहिए। घी, आप लोगों को लगता है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है तो घी का सेवन बिल्कुल बंद कर देते हैं, या फिर जो हार्ट वाले जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको जो डॉक्टर्स घी की सलाह देते हैं, ऑयल की सलाह देते हैं, वो वही खाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको अपने घुटनों की ग्रीसिंग बरकरार रखनी है तो पूरे दिन में, हम बार बार खाने में कटोरी भर घी खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरे दिन में मैक्स टू मैक्स 2 चम्मच देसी घी आपको किसी न किसी में, सब्जी में, रोटी में, दाल में, किसी में भी डाल करके उसको, उसका सेवन करना है, ताकि आपके घुटनों की जो ग्रीसिंग है वो खराब नहीं हो। और जो ये टक टक की आवाज़ आती है ना, तो वो बचपन से ही बच्चों को, मतलब अगर आप उसका सेवन शुरू कर देंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी।
6: तो अभी आपने जान लिया कि निवारण क्या है, अब आगे की चीज़ों को भी हम अभी जानेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं अभी आपको बताने के लिए। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा सॉन्ग वेट कर रहा है, उसे सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट वाला शो सुन सहेली।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 9840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
5: RJ अंशिका।
4: चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक को।
5: तो आज हमारा अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सही चीज हमेशा सही जगह पर होनी चाहिए। अगर सही चीज सही जगह पर ना हो ना, तो भी उनकी इम्पोर्टेंस कुछ कम हो जाती है। इसलिए जो चीज है उसे हमेशा सही जगह होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पौधों को भी उनका जो साथी मिलता है वो सही मिलना चाहिए।
4: पौधों का साथी क्या?
5: पौधों को जो साथी मिलता है वो सही मिलना चाहिए, यानी कि गमला
4: जी,
5: जिनमें भी आपको पॉट्स लगाने वो सही होने चाहिए
4: जी।
5: मैम ने शायद कुछ और सुना।
4: हाँ, मैंने कुछ और समझा।
5: हाँ, तो मैं पौधों की बात कर रही थी। मैंने तो जस्ट एग्जांपल देके समझाया आपको कि पौधे जो हैं उनका साथी होता है बड़ा प्यारा सा गमला होता है, उसमें वो लगते हैं, उसमें वो बढ़ते हैं, उसके साथ वो रहते हैं, तो वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि किस तरीके के गमले होने चाहिए। तो मुझे लगता है प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
4: अच्छा, मेरे घर तो सारे प्लास्टिक के हैं। और किसके होते हैं गमले?
5: नहीं मैम, से मिट्टी वाले जो होते हैं और फिर उसके होते हैं टेराकोटा के होते हैं।
4: मेरे यहाँ तो सारे प्लास्टिक के ही गमले हैं। तो क्या मतलब कि प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो खराब होते हैं?
5: नहीं नहीं, खराब नहीं होते। कुछ ऐसे खास प्लांट्स होते हैं जो कि
4: उसमें नहीं फलते हैं।
5: फलते हैं, ये मैं कह रही थी
4: जी,
5: कि कुछ ऐसे खास होते हैं जो प्लास्टिक में नहीं, उनको नहीं लगाना चाहिए। पर कुछ पौधे होते हैं जो कि हर में लग जाते हैं, मतलब न्यूट्रल, जैसे कहते हैं ना, जैसे इंसान होता है न्यूट्रल।
4: हाँ,
5: कि वो सबके साथ प्यार से अच्छे से रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वैसे कुछ पौधे भी होते हैं कि आप जिस भी गमले में लगा दीजिए वो उसमें लग जाते हैं
4: जी। चलिए आगे बढ़िए
5: जी मैम। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पौधे की जो सभी घरों में होता है, मतलब अमूमन तो सभी घरों में होता है।
4: हाँ,
5: जो कि होती है तुलसी का पौधा।
4: हाँ,
5: तुलसी के पौधे की अगर बात करें तो तुलसी का पौधा हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए।
4: ओके,
5: क्योंकि ये साइकोलॉजी, सॉरी विज्ञान भी मानता है, हमारा साइंस भी मानता है कि जो मिट्टी का पौधा होता है वो तुलसी, सॉरी आज क्या हो रहा है मुझे, मिट्टी का गमला होता है वो तुलसी के पौधे के लिए सबसे अच्छा होता है।
4: अच्छा,
5: इसलिए आप हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाएं
4: तुलसी का पौधा।
5: तुलसी का पौधा दूसरा आता है कि साइज की बात आती है, तो मिट्टी का गमला जो होना चाहिए वो 12 इंच से 10 इंच से 12 इंच गहरा गमला होना चाहिए तुलसी लगाने के लिए, ताकि उसमें जो एयर है वो अच्छे से आ जा सके,
4: मतलब इतना बड़ा होना
5: इतना बड़ा होना चाहिए कि ऑक्सीजन अच्छे से पास आउट हो सके, क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन अच्छे से पास आउट नहीं होता है तो कई बार तुलसी के पौधे जो होते हैं वो जड़ से खराब हो जाते हैं,
4: खराब होने लगते हैं
5: इसलिए, और उनकी जड़ बहुत सेंसिटिव होती है।
4: ओके।
5: दूसरा आता है कि बहुत ही प्यारा सा ये इसका नाम मैं सुनती हूँ, इस पौधे का नाम, तो मैं अपने आप स्माइल आ जाती है मेरे फेस।
4: एलोवेरा?
5: नहीं, रोज।
4: रोज, अच्छा,
5: सिंबल ऑफ
4: लव,
5: रेड,
4: रेड सिंबल ऑफ लव,
5: यस,
4: नॉट फॉर रेड,
5: लव। तो अच्छा सा एक होता है ना कि कोई देता है,
4: एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पे रोज को देखकर,
5: काश कोई
4: लड़का मुझे प्यार कर,
5: नहीं
4: ये गाना गाओ तुम, है ना,
5: रोज दे देता।
4: अच्छा अच्छा,
5: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास है, मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे रोज देते।
4: अच्छा, हमें लगा तुम ये कहोगी नहीं नहीं मेरे पास है,
5: नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
4: देने वाले
5: मेरी बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड्स हैं, और मेरी मेरे पास एक माँ है, एक बड़ी बहन है, फैमिली है, बहुत बहुत लोग हैं मुझे रोज देने के लिए।
4: आशु जी लिख रही है कि सारे पौधे मिट्टी के ही गमले में लगाना चाहिए। एग्जैक्टली आशु जी, मेरा मानना भी यही है, तो मैं आज ही अपने घर के कुछ गमलों को उसका फिर से निर्माण करूंगी, और सारे जो कि गमले हैं, और स्पेशली जो तुलसी का पौधा है उस वो तो ज़रूर से मैं चेंज करूंगी, लेकिन उसके लिए कोई फैक्स मतलब एक फिक्स कोई दिन होना चाहिए। संडे को कहते हैं कि तुलसी को नहीं छूना चाहिए, तो आई थिंक मंडे, अभी सावन भी चल रहा है, तो मंडे बेस्ट रहेगा, तो सोच रही हूँ कि उस दिन एक मिट्टी का गमला ले आऊँ। फिलहाल तुलसी माता को तो मैं ट्रांसफ़र करूँ ही करूँ, क्योंकि जब कोई अच्छी बात सुनी जाती है तो उस पर तुरंत अमल करना चाहिए।
5: बिल्कुल। आइए अब आते हैं कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं और मनी प्लांट होता है, इन दोनों को प्लास्टिक के ही गमले में लगाना चाहिए।
4: अच्छा, इंडोर
5: और मनी प्लांट
4: जी।
5: इसके दो फायदे होते हैं कि अगर इन्हें प्लास्टिक के गमलों में लगाते हैं तो ये आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो गमले होते हैं वो 6 से 8 इंच जो होते हैं वो गहरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। और मनी प्लांट इसलिए मिट्टी के गमले में लगाया जाता है क्योंकि मनी प्लांट को बहुत मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप थोड़े से में भी आराम से लगा सकते हो। तो मनी प्लांट हमेशा प्लास्टिक की में ही लगाना चाहिए, और जो इंडोर आपके पास प्लांट्स हो वो आसानी से लग जाते हैं। अब आते हैं मैम के फेवरेट पौधे पे, जो कि एलोवेरा। एलोवेरा कैसे लगाना चाहिए? एलोवेरा के लिए हमेशा मिट्टी के लेकिन छोटे गमले होने चाहिए। मिट्टी के बहुत गहरे और बड़े वाले गमले कभी भी एलोवेरा के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एलोवेरा की जड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सतह मिट्टी में चली जाती है, तो इससे जब पौधे उगते हैं तो उनमें भी उसके कड़ कहीं ना कहीं हो जाते हैं, और आपका एलोवेरा पीला होने लगता है। बहुत लोगों के घर शिकायत होती है कि अरे हमने बहुत अच्छे से उसकी केयर की लेकिन पीले हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि आप जड़ से आधा ऊपर, मतलब बहुत ऊपर, आपने मिट्टी में ही पूरे उसको अंदर कर दिए, और ये कभी नहीं करना चाहिए। जिसे हम कहते हैं ना कि इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है, वैसे पौधों को भी नहीं होती है, इसलिए कभी जड़ से बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी में नहीं डालने चाहिए पौधे। और हाँ, 4 से 6 इंच चौड़ा और कम गहरा पौधा, सॉरी गमला ही एलोवेरा के लिए अच्छा होता है। क्या हो गया है मुझे आज
4: कुछ भूख का ज्यादा असर हो रहा है मुझे?
5: नहीं, भूख तो नहीं लगी है मैम, कुछ सोच लेते हैं तो फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है।
4: क्या सोच लिया तुमने?
5: कुछ का कुछ
4: नहीं, वाली बात
5: ऐसे ही कुछ
4: फूल वाली बात सोच ली होगी कि काश कोई लड़का
5: कोई होता
4: लड़की फूल देती।
5: नहीं, लड़की
4: कोई बात नहीं, मेरे घर के पास बहुत सारे फूल मिलते हैं, कल मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए।
5: थैंक यू सो मच। ठीक है, मैम ही है जो मेरा दिल रख लेती है।
4: खुश खुश जाना कल फूल देख करके। फिलहाल अभी हम लोग कंटेंट पे आते हैं
5: जी, वरना फिर ये हो जाएगा, यही हो रहा है खाली फूल दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं।
4: बस अभी लिस्टर सबसे पहले बोलेंगे यही हो रहा है,
5: यही कर रही हैं आप लोग मैम, ये ना करें तो नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे।
4: सबलू जी फ्रॉम मुंबई, तो वेलकम वेलकम। प्रीति जी वेलकम, और बहुत देर हो गई वेलकम करने के लिए, लेकिन हम लोग की बकबक शुरू हो गई थी इसी वजह से। सुजीत जी नमस्ते, एंड नागेश्वर जी नमस्ते, एंड और क्रिकेट लवर हेलो, कैसी हैं आप? तो नव्या भी आई है आज, नव्या गोंडा। तो हाँ जी, बस और बाकी हमारे लिसनर्स पता नहीं कहाँ हैं इस समय, और आज मन कहीं और लग रहा है अंशिका का, ऐसा नागेश्वर बोल रहा है।
5: नागेश्वर जी को तो चाहिए होता है
4: फॉर ओनली फॉर अंशिका,
5: हाँ वो मेरे लिए आएगा। तो नागेश्वर
4: आज मन कहीं और लग रहा है
5: तो वैसे ही मस्ती करते हैं, और उन्हें मैंने पॉइंट दे दिया आज मस्ती करने का, तो मेरा मन कहीं और नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत, जो कहते हैं ना एकाग्र है, तो मेरा मन बहुत एकाग्र है, मेरा मन कहीं इधर उधर नहीं जाता है, और ऐसी चीजों में तो कत्ते ही नहीं जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना मुझे फ्लावर्स देने के लिए, मेरे पास ढेरों हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं, अभी मैम ने भी कहा वो भी मुझे फ्लावर ला के देंगी, अगर मैं मम्मी से कहती तो वो भी मुझे यही कहती कि ठीक है बेटा हम कल तुम्हें ला के देंगे। तो मैनी मतलब मेरे पास है
4: मैनी ऑप्शन,
5: तो मुझे नहीं।
4: क्रिकेट लवर ने लिखा हुआ है कि मैम मेरे यहाँ एलोवेरा खेत में लगा हुआ है, मतलब इनके पास पूरा खेत है।
5: हाँ पूरा खेत, ओके ओके। तो आइए अब आते हैं कि भाई अभी तक हमने फूल की बात की, एलोवेरा की बात की, लेकिन उनकी बात नहीं की जो कहीं ना कहीं बहुत पसंद होते हैं, रेड रेड होते हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
4: रेड रेड होते हैं सबको बहुत खाने में अच्छे लगते हैं, रेड
5: टमाटर।
4: टमाटर
5: टमाटर की बात कर लेते हैं, मिर्च की बात कर लेते हैं।
4: वो घर में,
5: घर में
4: वो भी मिट्टी के उसमें
5: वो आपको लगाने चाहिए। तो आजकल बहुत ही अच्छे प्लास्टिक के बड़े बड़े जो गमले आते हैं ना, टमाटर और हरी मिर्च उसमें लगानी चाहिए।
4: ओके।
5: क्योंकि इन गमलों को खासकर फैब्रिक और ग्रो वाले कहते हैं। इनसे क्या होता है कि मिर्ची का जो पौधा होता है या टमाटर का जो पौधा होता है उसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती और बहुत मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये आसानी से लग जाते हैं। प्लास्टिक के गमले इसलिए क्योंकि उनमें जगह ज़्यादा होती है, और टमाटर और मिर्च जगह ज़्यादा लेते हैं, इसलिए अगर आप ये घर में लगाना चाहते हैं तो प्लास्टिक के गमलों में लगाएं। और
4: हाँ, लेकिन हम मतलब मानना ये है कि अगर आप पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे अगर आप घर पे भी लगा रहे हैं, और जिनका घर अगर टेरिस पे है ऊपर है तो उनके लिए तो जमीन नहीं है ना, जैसा कि अभी क्रिकेट लवर लिख रही है कि जमीन पर लगाएं सारे प्लांट्स, तो जिनके पास जमीन नहीं है ऊपर फ्लोर पे जिनका मकान है तो वो तो प्लांट्स में प्लांट्स अपना उसमें ही लगाएंगे ना, गमले में लगाएंगे ना। तो गमला लगाएं, लेकिन एक बड़ा गमला लगाएं, मतलब दो ही तीन आपके घर में अगर जगह नहीं है ज्यादा तो दो से तीन या चार आप लोग गमले रखें, लेकिन बड़े गमले रखें, कहने का सेंस केवल इतना है। तो चलिए अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और
5: चलिए लिसनर्स चलते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज का टिप ऑफ द डे, जिसको कह सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, है ना? तो क्या करें क्या ना करें, ये तो गाना मुझे समझ में आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। और आजकल मेरा दिमाग में यही चल रहा है, क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
5: जो दिल कहता है वो करें और जो दिल नहीं कहता है कि ना करो,
4: दिल कह रहा है कि हाँ बी पॉजिटिव एंड दिमाग कह रहा है नो।
5: दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, जहाँ मामला दिल का हो वहाँ दिल की सुननी चाहिए। दिमाग की थोड़ी थोड़ी सुननी चाहिए, बट थोड़ा सा हमें ये लेकर चलना चाहिए कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव।
4: चलो तो एक आज का टिप ऑफ द डे जो है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनों को इग्नोर करते हैं, कई बार होता है ऐसा कि हम अपने अपनों को इग्नोर करते हैं। एक ही रूम में चार लोग अगर बैठे हैं और चार लोगों के हाथ में चार मोबाइल होते हैं, हर कोई अपने में बिजी दिखता है, ना किसी से कोई बातचीत ना कुछ, तो उसके लिए एक छोटी सी आज मेरे पास टेक्निक है कि घर के बच्चे अगर आप एक साथ बैठ करके अगर आप एक वीडियो ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं और पुरानी चीज़ों को आप उसमें बोलिए, पुराने किस्सों को बोलिए, अपने घर की जो कि एक कहते हैं ना कि अनदेखी हुई चीज़ें। जब कभी ऐसा होता है कि सुबह हमको स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है और हमें करना है कि हमारे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, और मम्मी आती हैं और तुरंत कहती हैं ये क्या सामने रखे हुए हैं, और हम सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं सबसे पहला। उसके बाद कुछ ऐसी पुरानी रीति रिवाज जो कि हमारे कस्टम में होता है, तो ऐसा थोड़ा सा छोटा सा कोई ब्लॉग या फिर पॉडकास्ट अगर हम मिल करके करें तो इससे क्या होता है कि एक फन भी मिलता है और सभी को साथ में बैठने का एक मौका भी मिलता है। अब मैं इसको फायदा बताती हूँ इसका, कि इसका फायदा क्या होता है।
5: जी मैम,
4: जब ये अपनी बातें कैमरे पर आप शेयर करने लगेंगे, परिवार के लोग उसे चाव से देखते हैं, आप अपने सारे जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप भेजना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनको लगेगा कि ये मेरी अहमियत भी बढ़ रही है और हमारी बातों को सुना जा रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ?
5: कि उनको एक अकेलापन नहीं महसूस होगा।
4: हाँ, और उसको ये लगेगा, घर के बड़े बुजुर्गों को ये लगेगा कि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है,
5: इम्पोर्टेंस दी जा रही है।
4: समझ में आया? तो इससे ये होगा कि अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये ज्यादा बोलते हैं, मुझे भी लगता है कभी मम्मी को लेकर के, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, उनकी एज है, वो भी तो आके किसी से बोलना चाहते हैं ना, पर हम तो हैं, हमें तो यहाँ से जाने के बाद किसी की आवाज भी नहीं पसंद आती है, मुझे लगता है बस मैं शांति से बैठ जाऊँ और मुझसे कोई बोले नहीं 2 घंटा।
5: होता है मैम,
4: ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी टाइम देना चाहिए। तो अगर ये वाला टिप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और आज की गुड न्यूज ये है कि आज का कॉलर ट्यून गोंडा करेंगी आपकी अंशिका जी, और अंशिका को मैंने दे दी है छुट्टी, वो पानी वानी पी ले क्योंकि अभी आपके साथ बैठना है उसे पूरा 1 घंटा। तो मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी कि मैं और अंशिका दोनों मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

चाहूं रहे ना सदा। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के साथ आप सभी का स्वागत है तहे दिल से आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका कि नाम है कॉल ट्यून गोंडा, जहां कि आप कॉल करते हैं और अपनी फरमाइशें देते हैं और हम आपकी फरमाइशों को प्ले करते हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। कैसे हैं आप सब? और फटाफट से चैट बॉक्स में आ जाएं और अपनी हाजिरी लगाएं और हमें बताएं कि आप आ गए हैं। तो यहाँ मुझे देख रहे हैं सबलू सावन जी, जो कि हमें बम्बई से सुनते हैं। हेलो सबलू जी, कैसे हैं आप? और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, वो भी यहाँ दिख रहे हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और साथ में बेस्ट ऑफ लक भी लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ और देखते हैं कि आज हमारी पहली फरमाइश किसकी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई अगर हमारे जो भी लिसनर हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और जो भी अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें करना बस इतना है कि फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429-6393-3699-316-429-6 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम सॉन्ग, जो कि सबसे पहली फरमाइश है वो है सबलू जी की। तो आइए सुनते हैं सबलू जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल आया सावन झूम के, और ये सावन झूम के कहता भी बहुत कुछ है, बस सुनने वाला चाहिए। तो भाई सावन बहुत ही प्यारा, और सावन की रिमझिम फुहार है वो मन को बस यूं ही भिगो जाती है, और साथ ही साथ में याद दिला जाती है हमें वही बचपन जब हम कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में बहाते थे और हमेशा बस यही सोचते थे कि ऐसा ही सुहाना होता है बचपन। और ऐसी ही कुछ प्यारी प्यारी बचपन के साथ यादें जुड़ी होती हैं, जो कि चाय पकौड़ों के साथ भी जुड़ी होती हैं, कि जब भी बारिश होती है बस मन यही करता है कि चाय पकौड़े होते तो फिर क्या ही कहना था। तो सावन आया है, बहुत सारी खुशियाँ लाया है और साथ में बहुत सारी पुरानी यादें भी। तो आइए इस सावन की झूमते हुए और याद करते हुए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अमित चौधरी जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं अमित जी के सॉन्ग को, और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और इंतज़ार कीजिए क्योंकि आज का ज्ञान कुछ होने वाला है बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग। तो देखते हैं कि आज का ज्ञान क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ नागेश्वर जी आ गए हैं लिखने, वेलकम बैक अंशिका मैम, थैंक यू। अमित चौधरी जी भी आ चुके हैं, और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी अगेन। तो आइए अब चलते हैं जो कि सॉन्ग है अमित चौधरी जी का।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग घर मोरे परदेसिया। तो आइए चलते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि महेंद्र जी आ गए हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। थैंक यू महेंद्र जी। तो अब हमारी अगली फरमाइश होने वाली है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार आपसे आज के ज्ञान के साथ। तो आज का ज्ञान क्या होने वाला है थोड़ा सा सोचिएगा और फिर सोच कर जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के साथ, इंजॉय करते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को और साथ में बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

0: बिल्कुल, मैं तो हूँ सबका, मेरा ना कोई, मेरे लिए कोई आंख ना रोई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी धर्मेंद्र जी ने। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश किसकी होने वाली है ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पहले पहले आइए चलते हैं आज के ज्ञान की तरफ कि भाई आज आपको क्या ज्ञान मिलने वाला है। तो आज का ज्ञान हम आपको देंगे कुछ पहेली के थ्रू, और ये पहेली जो भी सॉल्व करेगा, मतलब इसका आंसर जो भी देगा, उसे फिर हो सकता है कि कुछ रिवॉर्ड मिल जाए, एक सॉन्ग शायद मैं सुना दूँ, ऐसा हो सकता है। तो चलिए फिलहाल हम पहेली बताते हैं और देखते हैं कि किस इस पहेली का जवाब किसके पास होता है। तो पहेली है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको एक सॉन्ग सुनने का मौका मिल जाए। अगर तुम मुझे गवा दोगे तो रोते रह जाओगे, अगर तुम मुझे गवा दोगे तो रोते रह जाओगे, मैं एक बार हाथ से निकल गया तो दुनिया की पूरी दौलत देकर भी मुझे नहीं खरीद पाओगे, बताओ मैं हूं कौन, बताओ मैं हूं कौन। चलिए आप लोगों के लिए एक बार फिर पहेली दोहरा देती हूं मैं, कि अगर तुम मुझे गवा दोगे तो रोते रह जाओगे, मैं एक बार हाथ से निकल गया तो दुनिया की पूरी दौलत देकर भी मुझे नहीं खरीद पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ। तो बताइए भाई कि ये कौन है जिन्होंने आपसे अभी ये सवाल किया है। तब तक हम चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और इस सॉन्ग के उस पार आऊँगी तो आपसे इस पहेली का जवाब ज़रूर चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई तो मुझे जवाब दे ही देगा। तो आइए चलते हैं अब हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है समरीन जी की। तो आइए सुनते हैं समरीन जी के सॉन्ग को, बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, स्टे ट्यून।
1: तमाशा करने आ गया, चला जाए तो चला जाए।

बिल्कुल रोए ना जो याद मेरी आए। कुछ ऐसी ही होती हैं यादें कि जब किसी बहुत अपने की यादें आती हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही होता है यादों का और यादों से जुड़े हुए हमारे इस दिल का। तो चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी जो हमने पूछा था उसका आंसर किसने दिया है। तो रिजू जी ने आंसर दिया है प्यार। सॉरी रिजू जी, आपका आंसर गलत है। सही आंसर दिया है सबलू जी ने, महेंद्र जी ने और धर्मेंद्र जी ने। जो कि सबलू जी ने आंसर दिया है टाइम, बिल्कुल सही है। और उसी के साथ में महेंद्र जी ने आंसर दिया है बीता हुआ समय, ये भी बिल्कुल सही है। और धर्मेंद्र जी का भी बिल्कुल सही आंसर है कि वक्त को कोई खरीद नहीं सकता। आप तीनों का आंसर ही करेक्ट है। लेकिन जो कि सबलू जी और धर्मेंद्र जी का सॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं महेंद्र जी से कहना चाहूँगी, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, कि महेंद्र जी फटाफट से आप अपने सॉन्ग को लिखें, हम आपके सॉन्ग को ज़रूर से प्ले करेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है दुर्गा जी की। तो आइए सुनते हैं दुर्गा जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, आज की जो पहेली है वो पसंद आई होगी। और महेंद्र जी आप अपना सॉन्ग भेज दें।

बिल्कुल तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मोहब्बत में वो मकाम आए। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी दुर्गा जी ने। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है चांद बाबू की। तो आइए सुनते हैं चांद बाबू के सॉन्ग को। और इसी के साथ मैंने महेंद्र जी से कहा था कि वो सॉन्ग भेजें, लेकिन उन्होंने अभी तक सॉन्ग नहीं भेजा है, तो मैं सबलू जी के सॉन्ग को प्ले करूंगी अगर थोड़ी देर में महेंद्र जी ने अपना कोई सॉन्ग नहीं भेजा तो। और इसी के साथ विकास तिवारी जी आ गए हैं, लिख रहे हैं, हेलो बरेली वाली मैम जी, कैसे हो आप? जी आपकी बरेली वाली मैम यानी कि आरजे उन्नति तो आज फिलहाल नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। तो आइए आप बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है चांद बाबू की। तो आइए सुनते हैं चांद बाबू के सॉन्ग को।

गया और इकरार मेरे यार हो गया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

जा तेरी राहों में मैं जिंदड़ी बिछा दूं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी महेंद्र जी ने दुपट्टा तेरा। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

हमें तुम मिले, ज़िंदगी मिल गई है, जवानी की सारी खुशी मिल गई है। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रिजू जी की। तो आइए सुनते हैं रिजू जी के सॉन्ग को।

दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रेनू तिवारी जी की। तो आइए सुनते हैं रेनू जी के सॉन्ग को।

चश्मा, घोड़े घोड़े मुकले पे काला काला चश्मा। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सबीहा जी की। तो आइए सुनते हैं सबीहा जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में, और हाँ कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर है 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429,

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई, जो कि फरमाइश थी सबीहा जी की। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि मुस्तफ़ा जी आ गए हैं, जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। विकास तिवारी जी लिख रहे हैं, अंशिका मैम गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून विकास तिवारी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश किसकी है चलिए जान लेते हैं। तो हमारी अगली फरमाइश जो कि है विकास जी की, तो आइए सुनते हैं विकास तिवारी जी के सॉन्ग को।

बहुत ही प्यारा सॉन्ग चाहतों की दुनिया में ऐसा होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रमेश कुमार जी की, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं रमेश जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वो लड़की बहुत याद आती है, जिसकी की फरमाइश की है जवाहरलाल प्रजापति जी ने। तो आइए सुनते हैं जवाहरलाल प्रजापति जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और हाँ, कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर है 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429, 6393316429,

याद आता है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वो लड़की बहुत याद आती है, मुझे सताती है, बहुत ही अच्छा सा। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी फरमाइश, अगली फरमाइश आइए जानते हैं किसकी है। तो हमारी अगली फरमाइश है जानवी जी की, और जानवी जी का सॉन्ग है बहुत ही प्यारा सा, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, राजा हिंदुस्तानी मूवी का। तो आइए सुन ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। और वाकई कोई जब बहुत याद आता है ना, तो फिर क्या ही कहें, दोस्त भी कई बार ऐसे ही होते हैं ना, जो हमें बिन कहे बिन सोचे बस याद आ जाते हैं। दोस्ती के दिन भी अच्छे होते हैं, कॉलेज में जो टाइम हम बिताते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, दोस्तों के साथ मस्ती, टिफ़िन शेयर करना, प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, बहुत सारी मस्ती करना, कई बार यही यादें बहुत याद आती हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं जानवी जी की फरमाइश की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, परदेसी परदेसी जाना नहीं।

बिल्कुल परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसको कि आवाज़ दी है अलका याग्निक जी ने, और बहुत ही प्यारा सा ये सॉन्ग है अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी का। तो ये थी हमारी लास्ट फरमाइश जो कि थी जानवी जी की, और हमारा समय भी हो गया है आपसे टाटा बबाई कहने का। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ महेंद्र जी आइकॉन्स भेज रहे हैं, और क्रिकेट लवर जो कि हैं वो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ विकास तिवारी जी लिख रहे हैं थैंक यू, यू वेलकम, और आप सभी आपस में बातें कर रहे हैं। सबलू जी, सबलू जी के साथ में रिजू जी, जो भी हमारे साथ अभी तक बने हुए थे, नागेश्वर जी, उन सभी का थैंक यू सो मच। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रेडियो 99.6 एफएम को सुनते रहिए, और यूं ही अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। तो चलिए लिसनर्स, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

हाँ जी, और लगातार आप बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं अपने 89.6 एफएम पर, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौकार जितना आज शाम में लेकर आ रहा हूँ खेत खलिहान। विषय बड़ा दिलचस्प है।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: स्वागत करते हैं आपका आपके शाम के स्पेशल शो खेत खलिहान में। जी हाँ, हर बृहस्पतिवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक आपके गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर हमारे किसान भाइयों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आते हैं खेत खलिहान। और इस प्रोग्राम में होती है खेती किसानी की बातें, यानी हमारे किसान भाइयों के फायदे की बातें, किस तरह की आज की बदलती हुई खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल पाए, किस तरह हमारे किसान भाई एक स्वस्थ समाज का निर्माण करे और हमारी परंपरा, हमारी पहचान, हमारा खेत, हमारी धरोहर हमेशा बरकरार रहे, इन सभी बातों को हम हर हफ्ते इस खास प्रोग्राम में लेकर आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। आज का विषय भी आपने सोशल मीडिया पर गए हमारे पोस्ट को देख करके समझ लिया होगा कि भाई आज का विषय क्या है। हालांकि हम आपको वापस से फिर से बताने वाले हैं कि आज का हमारा इस खेत खलिहान प्रोग्राम का विषय क्या है और आज विशेषज्ञ के रूप में कौन और कहां से मौजूद है, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपके अपने आरजे अतनान। और आपने फिलहाल ट्यून कर लिया है अपना गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के विषय की तरफ और विषय के बाद आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट्स से और बताते हैं कि भाई आज इस खास विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए कौन है मौजूद। सो हमारे किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारे आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा सफल व्यवसाय। अब देखिए ना, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान कहलाता है और हम सबका जो पेट भरता है वो किसान भरता है। इन्हीं किसान भाइयों को किस तरह से सशक्त बनाया जाए, किस तरह से इनकी खेती को और भी ज़्यादा लाभदायक बनाया जाए, इसकी पूरी कोशिश रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कर रहा है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं विषय की तरफ। लेकिन अब चूंकि आपने विषय जान लिया है, विषय है आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा सफल व्यवसाय। बहुत ही अहम विषय है कि हम जो यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं किस तरह से किसान भाइयों का काम आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए और ज़्यादा खर्च से बचाने के लिए किया जाए, जिस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर देवेश कुमार, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं संत कबीर नगर से। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद आपको।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में हमारे को होस्ट की भूमिका निभा रहे इरफान शाह भी मौजूद हैं। इरफान जी, आपका स्वागत है।
3: सबसे पहले तो सर सभी को नमस्कार और सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और आइए अब इस कड़ी में चलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा एक अपना संक्षिप्त सा परिचय डॉट साहब आप दे दिए, ताकि हमारे किसान भाई आपको पहली बार सुन रहे हैं और आप संत कबीर नगर से वक्त निकाल करके हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ तक आए हैं, तो अपने बारे में एक छोटा सा परिचय।
2: सबसे पहले तो मैं इस ज्ञानस्थली 89.6 FM को और हमारे जो सबसे पहले करीबी रहे हैं, जो कई बार फ़ोन किए, इरफान जी और आरजे अदनान जी, आप सभी का इस FM की तरफ से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस ज्ञान स्थली में आकर के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और गोंडा के जितने आसपास के क्षेत्र के हमारे बहुत अच्छे किसान हैं, कुछ अच्छी महिलाएं भी हैं, उन सब का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक इस शो को सुने, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ आप लोगों को कि मैं डॉक्टर देवेश कुमार, कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर से चलकर आपके बीच में आया है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के द्वारा संचालित है, जिसमें हमारे इस समय वाइस चांसलर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सर के मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में भी। इसलिए आज हम गोंडा की धरती पर आए हैं आप लोगों को कुछ जानकारी के लिए।
0: बेशक बहुत अच्छे से आपने अपना परिचय बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में दिया, और अब मुझे लगता है बिना देरी किए हुए हम चले और अपने विषय की तरफ कूच करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, देखिए एक बात तो हम सभी को पता है कि हमारे किसान भाई, कई हमने मूवीज़ में भी देखा है कि आसमान की तरफ निगाह किया और बता दिया कि बारिश कब होने वाली है। तो हमारे अन्नदाता किसी बहुत ज्ञानवर्धक व्यक्ति से कम नहीं होते, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमको ये भी पता है कि चूंकि वक्त बहुत बदला है, समस्याएं बहुत आई और उसका निस्तारण किया गया, कभी वैज्ञानिक कृषि यंत्रों के जरिए तो कभी कुछ ऐसी पद्धतियों को अपनाया गया। आज हमारे किसान भाई लगातार नए नए जो आधुनिक तरीके हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, और उन किसानों को ज़्यादा आप फ़ायदा भी देखेंगे मिल रहा है जो इस आधुनिक पद्धतियों को अपना रहा है। इसी कड़ी में हम चलते हैं, तो हम आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जो कि आज हमारा विषय है आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा सफल व्यवसाय, पहले तो इस विषय से हमारे किसान भाई क्या बात समझे कि आज आप क्या बताने वाले हैं।
2: धन्यवाद। देखिए आज हमारे जितने अच्छे किसान और बहुत छोटे जोत के हैं, बड़े जोत के भी किसान हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं मैं आज के इस शो में। सबसे पहले मैं अभी बता रहे थे ये जो है साहब कि आधुनिक कृषि यंत्रों से एक व्यवसाय कैसे शुरू करें। तो हमारे किसान भाई बहुत सारे लोग जो हैं अच्छी खेती करते हैं, और कुछ कम जोत वाले हैं वो कम खेती करते हैं, लेकिन सभी के लिए व्यवसाय के रूप में एक मैं बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इन्होंने बताया है और मैंने भी इस टॉपिक पर बहुत अच्छा मतलब करने वाला हूँ, आप लोगों को ज्ञान देने वाला हूँ कि सबसे पहले व्यवसाय कैसे करें। जैसे बहुत सारे किसान हैं व्यवसाय के रूप में इन आधुनिक कृषि यंत्रों को देखते नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि सिर्फ खेती करने के लिए यंत्र लाए और बस रख दिया, लेकिन उससे उन्हें ये नहीं पता है कि व्यवसाय हो सकता है और बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप हमारे बहुत अच्छी कृषक अच्छी मशीन लाते हैं खरीद करके, आपस में चर्चा करके कि गांव के पास में या गांव के पड़ोसी या जो भी मुखिया होते हैं उनसे भी बात करते हैं कि हमें एक मशीन चाहिए हमें खेती करने के लिए, तो किसान हमारे सलाह ले लेते हैं, किसान मशीन भी खरीद करके लाते हैं, पर उनका वो व्यवसाय कैसे करें उन्हें नहीं पता होता है। तो हमें व्यवसाय के बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए कोई आप एक मशीन ले आए, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि एक सरल भाषा में लेजर लैंड लेबलर मशीन ले आए,
0: ठीक है।
2: लेजर लैंड लेबलर एक बहुत अच्छी मशीन है, हमारे कृषकों के लिए बहुत उपयोगी मशीन है, बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए। उस लेजर लैंड लेबलर की कीमत होती है 5 से 6 लाख रुपए। आप मान लीजिए इतना कीमत हमारे किसान ने लगाया है, वो मशीन ले करके आए और उन्होंने क्या किया कि अपने खेत का कार्य कर लिया, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया मशीन को सीजन से पहले ढक करके रख दिया या ऐसे ही बाहर रख दिया। अब वो पूरे साल रखी रही, फिर हमारा कृषि का कार्य आएगा तब हम उसको निकाल करके फिर उपयोग में लाएंगे। तो ऐसा हमारे प्रगतिशील कृषक भाइयों से निवेदन है कि ऐसा कदापि ना करें। अगर आप मशीन खरीद करके लाए हैं तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अपना कार्य करें, जब अपना कार्य ख़त्म हो गया है उसको एक मूल्य निर्धारित करके अन्य कृषक भाइयों को जो आपके पड़ोसी हों, घर के हों, परिवार के हों या आपके गांव के बाहर के हों, उन सबको एक मूल्य निर्धारित करके उनको किराए पर घंटे के हिसाब से उनको चलाने के लिए दे दीजिए। उससे क्या होगा कि एक व्यवसाय भी आपका होगा और आपकी खेती का कार्य करने का समय भी बचेगा। जब समय बचेगा अपना कार्य जल्दी हो जाएगा तभी हम दूसरे को दे पाएंगे। तो अपना कार्य फिनिश करके समाप्त करके हम अन्य किसान भाइयों को किराए पर चलाने के लिए दे दें। अब लेजर लैंड मशीन है क्या, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। हमारे कृषक भाई बहुत सारे गांवों से आते हैं और बहुत तकनीकों से वाकिफ नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी मशीन हमारे खेत के कार्य के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से अपने कृषक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कृषि कार्य के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक कल्टीवेटर की। अगर हम कृषि कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में या किसी गांव में ट्रैक्टर आएगा। ट्रैक्टर आने के बाद वो एक ट्रॉली लाएंगे। ट्रॉली लाने के बाद फिर वो सोचते हैं कि हमें कृषि कार्य करना है, सिर्फ हमें माल ढुलाने के लिए नहीं चाहिए। तो अब वो क्या करते हैं कि फिर सिर्फ कल्टीवेटर ले आएंगे। कल्टीवेटर ले आने के बाद फिर क्या करेंगे, रोटावेटर ले आएंगे। अब ये दो यंत्र तो ले आए आप, दो यंत्र से आपकी खेती तो पूर्ण नहीं होने वाली है। अब वो क्या करते हैं कि कुछ किसानों ने या किसी एपीओज ने सजेशन दिया हमारे कृषक भाइयों को कि आप एक लेजर लैंड लेबलर ले लीजिए। अब उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊंच नीच ज़मीन है वो आपकी समतल हो जाएगी। अब ऊंच नीच ज़मीन बहुत सारे गांव में होती है, मैं मानता हूं कि किसान नहीं करते हैं, फिर भी वो नहीं करते हैं, खेती में कुछ ना कुछ उत्पादन में उनके प्रभाव आता है। अब जब आप लेजर लैंड मशीन जो है 4 से 5 लाख रुपए की आप लगाएंगे, उसको लेकर के आएंगे, उससे हमें देखिए लाभ कितना मिलने वाला है। ये किसान भाइयों को सुनना चाहिए कि लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहले जो मशीन ले आएंगे उससे हम अपने खेत का और अपने भाई बंधुओं के खेत का जो है समतलीकरण करेंगे। अब समतलीकरण कैसे करेंगे, जो आपकी ज़मीन ऊसर पड़ी है, बहुत दिनों से कार्य नहीं किया है, उसकी हम रिकवरी भी कर सकते हैं। जो हमारी खेती नहीं होती है उनको भी हम समतल करके खेती का कार्य उस खेत में हम कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ हमारे कृषक भाइयों के लिए कि सबसे पहले तो जब समतलीकरण हो जाएगा आपका खेत का, तो उससे 25 से 30% हमारे पानी की बचत होगी। अभी हम क्या करते हैं, जब हमारे खेतों में समतलीकरण नहीं होता है, हमारे कृषक भाई सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, जब समतलीकरण नहीं होता है तो हमें क्या करता है कि खेत में पानी ज़्यादा लगता है। पानी ज़्यादा लगेगा तो जब आप इंजन सेट या पंपिंग सेट चलाते हैं नालों में डाल करके, कैनाल में या किसी नाली में डाल के, उसमें क्या होता है, पंपिंग सेट चलाती तो डीजल का कंजप्शन आपका खपत ज़्यादा बढ़ती है, एक लेबर चाहिए। तो उसमें जब तक आप पानी लगाएंगे खेत में, जब तक हमारे दूसरे कोने पर पानी ना पहुँच जाए, तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा लगा और आपका डीजल भी ज़्यादा लगा और मजदूरी भी आपकी ज़्यादा लगी। तो इससे हमें छुटकारा मिलेगा लेजर लैंड लेबलर मशीन से। उसमें 25 से 30% पानी बचेगा और पूरे खेत में एक समान प्रकार से हमारा पानी खेत में पहुँचेगा। जब आप फसल लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि फसल भी हमारी एक समान उसकी बुवाई होगी और एक समान उसका जमाव होगा। जब एक समान बुवाई होगी, जमाव होगा, तो हमारी फसल जब बढ़ेगी तो उसे पूर्ण तरीके से खेत में पानी मिलेगा, तो हमारी फसल भी अच्छी होगी और हमारी देखभाल भी अच्छी होगी और पैदावार सामान्य से अधिक होगी। ये हमारे किसान भाइयों के लिए लेजर लैंड लेबलर के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। और बता दूं आपको, जब भी कोई मशीन ले आएँ सबसे पहले जांच पड़ताल ज़रूर कर लें कि हमारी खेती के लायक है नहीं, कौन सी कंपनी की मशीन अच्छी है, कौन से कंपनी की मशीन में थोड़ा मटेरियल कम लगा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। ये 4-5 डीलर से पता करके जो हमें अच्छे रेट पे दे वो मशीन हम अच्छे से ख़रीदें। जब ख़रीद करके ले आएँ उसका एक डेमोस्ट्रेशन करें बढ़िया से अपने खेत में और उसको चलाएँ। तो ये हमें जब चलाएंगे तो गांव के आसपास के लोग आपकी मशीन को देखने आएंगे, जब देखेंगे तो वो भी कहेंगे भाई हमारे खेत में भी चला दीजिए, हमारे खेत में भी चला दीजिए। इससे हमें लाभ मिलेगा, जब हम कोई मशीन ले आए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी आसपास के गांव के लोगों में। जब डिमांड बढ़ेगी उसकी जानकारी लोगों को लगेगी तो वो भी आपसे मांगने आएंगे, चाचा आज हमारे खेत में मशीन चला दीजिए, हमारा खेत ऊंच नीच है और पानी नहीं लगता, उसमें बड़ी समस्या आती है और फसल जहाँ होती है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है तो वो हमारी फसल ख़राब हो जाती है, उत्पादन में हमारे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जब आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगे, जानकारी आएगी, तो बहुत सारी आपको जो है उससे एक व्यवसाय शुरू होगा। मैंने पहले बताया था कृषि आधुनिक कृषि यंत्रों से एक व्यवसाय तैयार कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से हम व्यवसाय को तैयार करेंगे।
0: क्या बात है, आपने इतनी डिटेल्स में इतने बेहतर तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतनी आसान भाषा में बात बताई कि हमारे किसान भाइयों तक सीधे सीधे ये बात पहुँच रही है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि अगर विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। आप अपने ज्ञानस्थली के स्टूडियो के नंबर पर कर सकते हैं, नंबर है 6393316429 6393316429 6393316429 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, यानी यंत्रों के बारे में, अगर आप कोई यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं या लेने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। सो कृषि यंत्रों से व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन कौन से यंत्र जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कुछ ऐसे यंत्रों के नाम बताएं हमको।
2: देखिए, यंत्र बहुत सारे हैं, पर हमारे किसान को किस यंत्र की ज़रूरत है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि किसान वही मशीन खरीदता है जो हमारे कृषि कार्य में अच्छे से उपयोगी हो। अब इसमें जैसे सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कृषक भाइयों को कि एक सबसे पहले होता है कल्टीवेटर, जिससे हम जुताई करते हैं खेत की। दूसरा यंत्र है हमारा, जब हम बुवाई के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उसको, जो है रोटावेटर। इसके बाद सबसे पहले जो है, उससे पहले हम जो अटैचमेंट करते हैं उसमें, उसे चाहिए हमें ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर कई HP रेंज में आते हैं, तो हमारे किसान भाई को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सी, मतलब कितनी ज़मीन हमारे पास है, कितने हेक्टेयर है, उस हिसाब से हम एक हॉर्स पावर ट्रैक्टर का चुनाव करें। सबसे पहले नॉर्मल ट्रैक्टर जो हमारे किसान भाइयों के पास गाँव में होते हैं वो 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन इतने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बड़ी मशीनें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़ी मशीनें जैसे मान लीजिए आपका हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, और बहुत सारी बड़ी मशीनें हैं जो वो ट्रैक्टर उठा नहीं पाते हैं, उनका हाइड्रोलिक सिस्टम कमज़ोर होता है, और आगे से जब उठाएंगे तो आगे से उठ जाएगा, पीछे बैठ जाएगा। तो उसलिए हमें, जब ज़मीन किसानों की ज़्यादा हो, उस हिसाब से हमें ट्रैक्टर और मशीनों का चुनाव करना सबसे पहले आवश्यक होता है। अब जब ट्रैक्टर 35 से 40 HP का चुनाव करेंगे तो आपके एक मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि कम जोत वाले, मध्यम जोत वाले और ज़्यादा जोत वाले किसान पर निर्भर करता है ये चीज़। अगर बड़ी मशीनें चलाना है आपको, एक कोई व्यवसाय चलाना है बहुत अच्छा, कृषि यंत्रीकरण है और कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जो हमारे गाँव में आजकल FPOs के माध्यम से भी चलते हैं और समूह के माध्यम से भी चलते हैं, और कुछ किसानों के ग्रुप होते हैं उनके माध्यम से भी चलते हैं। उसमें जब FPOs के माध्यम से या कस्टम हायरिंग सेंटर से जब हम कोई योजना बनाते हैं, उसमें हम एक ग्रुप में मशीनें खरीदते हैं। अब उस मशीनों के, जैसे बहुत सारी मशीनें हैं, मैं आपको नाम बता दूं कि जैसे आपका ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, रोटर है, और डिस्क प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, और लेजर लैंड लेबलर जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, रिज बेड मेकर है, सीड ड्रिल है, जीरो टिल 40 सीड ड्रिल है, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, पोटैटो प्लांटर है, पावर टिलर है, रोटरी वीडर है, और रोटरी कंबाइन है, और कंबाइन हार्वेस्टर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, मक्का सेलर है जो आपकी मक्का के दाने को अलग करने के लिए, बहुत सारी इस समय किसान भाइयों के पास समस्या होती है, इस क्षेत्र में मक्का भी ज़्यादा होती है, तो मक्का निकालने के लिए भी मशीन आ गई। अब हाथ से हमारे कृषक भाइयों को नहीं निकालना होगा, अब वो मक्का सेलर ऐसी मशीन आई है, सो सीधा भुट्टा लगाइए उसमें और आपका दाना अगल अलग निकल कर के एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये किसानों को एक मजदूरी जो लगती थी वो कम हो गई अब किसान भाइयों की, और बहुत सारी मशीन है, जैसे थ्रेसर है, स्ट्रा रीपर है, भूसा बनाने वाली मशीन है, स्रेडर है जो हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में काम आता है, एक देखिए चारा काटने वाली मशीन भी पावर ऑपरेटेड है और एक मैनुअली ऑपरेटेड है। ये भी बहुत सारी गाँव में लगी होती हैं चारा काटने के लिए जो पशु रखते हैं हमारे गाँव में। इसके बाद एक अहम मशीन है जिसे बोलते हैं ड्रोन, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारे किसान भाइयों के लिए। आज के समय में हम जब देखते हैं कि जब हम कोई फसल लगा लेते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ फसल में समस्या आई, कीट लग गए, पतंगे लग गए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, उसमें कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। उसके लिए अभी आजकल के जो छोटे जोत के किसान हैं वो क्या करते हैं कि एक मैनुअली ऑपरेटेड जो होती है स्प्रेयर, उसको हम यूज करते हैं। जैसे किसान भाई पीठी में लाद के 15 लीटर का टैंक होता है उसको लेकर के खेत में जाते हैं, और उससे हमें क्या होता है कि 15 लीटर ही पानी आता है उसमें, और हम छिड़काव जब करते हैं तो उसमें मजदूरी भी ज़्यादा लगती और हमारा समय भी ज़्यादा लगता है। अब मान लीजिए एक हेक्टेयर का हमें छिड़काव करना है तो उसमें हमारा कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे और लेबर का पैसा भी हमें, जेब खर्च किसानों का बढ़ जाएगा। उसके अपेक्षा एक कृषि ड्रोन आया है। अब उस ड्रोन क्या करता है कि एक बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन है जिसमें 4-5 पंखे लगे होते हैं, वो उड़ता है हवा में, एक कंट्रोलर होता है उससे हमारे किसान भाई उड़ा सकते हैं। आजकल ड्रोन दीदी भी चल रहा है, इफ्को के माध्यम से भी आप किराए पर 300 रुपये प्रति एकड़ उसका छिड़काव का चार्ज है, हमारे नॉमिनल चार्ज है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम मजदूरी भी देंगे सर तो ये जान लीजिए कि 500 रुपये आज हम मजदूरी लेबर को देते हैं, 400-500। अब अगर ये ड्रोन हमारा छिड़काव करता है तो 5-7 मिनट में सिर्फ एक एकड़ एरिया का छिड़काव करके वापस अपनी जगह खड़ा हो जाता है।
0: क्या बात है।
2: अब ये हमारे किसान भाइयों के लिए कितना उपयोगी यंत्र है कि हम उधर मैनुअल

0: बाद पूरे खेत को उड़ान भर के पूरा स्प्रे करके, और खासियत है कि एक समान स्प्रे करेगा, कहीं भी कोई भी गैपिंग नहीं होगा आपका। तो ये सबसे बड़ा किसान के लिए फ़ायदा है कि गैपिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर बीच में गैप हो गया, कहीं हमारी दवाई नहीं डली खेत में, तो वो वहाँ पर खरपतवार या कोई भी कीड़ा मरेगा नहीं, वो दूसरी जगह और फैल जाएगा। अब ये एक समान जब स्प्रे करेगा और 5 से 7 मिनट में एक एकड़ एरिया को कवर करके वापस आ जाएगा, तो हमें कितना फ़ायदा मिला। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख का एक ये कॉस्ट है, और इसमें हमें 40% सब्सिडी भी मिलती है किसानों को, कि अगर सब्सिडी मिल जाती है तो किसान ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण करा के अपने अपने ज़िले में कृषि विभाग है, DD ऑफिस बैठते हैं, उप कृषि निदेशक बैठते हैं, उस ऑफिस में जा कर के कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से इसको ऑनलाइन फार्म भर दें। उसके बाद आपका जो है एक ई लॉटरी निकलेगा, उसमें आपको ये ड्रोन मिल जाएगा। और सबसे बड़ा है उन लोगों के लिए और अच्छी फ़ायदा है जो हमारी महिलाएं कृषक हैं, जो ड्रोन दीदी हैं, आज उनको नॉमिनेट किया गया है सरकार की तरफ से, ड्रोन दीदी कहलाया गया है। उन्होंने 15 दिन का प्रशिक्षण लिया है ड्रोन चलाने का, और उनको एक ज़िले में 2-2 ड्रोन दीदी का कार्य दिया गया है। उनको 2 ड्रोन दिए गए कि आप किसानों के पास जाइए, उनका छिड़काव करिए, उनसे जो भी नॉमिनल चार्ज है उनसे ले लीजिए। इसके बाद समय और लागत सब कुछ बचा और हमारा उत्पादन भी बढ़ा।
1: और इसी में बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी बीच एक कॉलर भी हमसे जुड़ गए, आइए देखते हैं कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कुशल पाल तिवारी है, उसैना विकास खंड रुपेडी, जिला गोंडा।
1: अच्छा, कुशल पाल तिवारी जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं खेत खलिहान प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है भाई साहब। सबसे पहले तो श्रीमान जी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी दूर से आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके साथ में ज्ञान स्थली के खेत खलिहान की पूरी टीम को
1: जी
2: की अच्छी अच्छी जानकारी आपके द्वारा मुझे प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन कुछ आज आपकी टेलीफोन लाइन जैसे डिस्टर्ब है भाई साहब।
1: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब आपने कॉल कर दिया, अब सही हो जाएगी। जी, अच्छा, आपका विशेष
2: जी श्रीमान जी से 2-3 प्रश्न पूछना है।
1: जी जी जी, प्लीज पूछिए।
2: तो सबसे पहले तो श्रीमान जी नमस्कार स्वीकार करें, और गोंडा पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी को।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी धरती पे हमें मौका मिला आने का, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
2: जी जी जी, जैसे अभी कार्यक्रम के दौरान आपने बताया
0: जी
2: कि कोई सामान खरीदते समय 4-5 डीलरों से बात करके जो बढ़िया बतावे कि हमारे में बढ़िया मसाला बढ़िया सामान लगा है उसका खरीदे
0: जी।
2: तो भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारे डीलर अपने सामान को बढ़िया ही बता रहे हैं, कोई घटिया थोड़े बताएगा।
0: हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां हैं बहुत अच्छा मटेरियल लगाती हैं, कुछ कंपनियां जो है पैसे के चक्कर में अपना मटेरियल कम कर देती हैं और कॉस्ट को भी कम कर देती हैं। जैसे हम
2: जी जी जैसे जैसे स्वराज हुआ, किलास्कर हुआ, ये सब तो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं।
0: जी जी जी,
2: लेकिन जितनी अन्य कंपनियां हैं उनके भी डीलर अपने को उनसे बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, अपने सामान को घटिया थोड़े डीलर बताएंगे।
0: जी जी,
2: इसमें किसान कैसे ये पहचान करके संतुष्ट हो कि यह सामान सही है?
0: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, अभी क्या होता है कि जब हम कभी मार्केट में जाते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो 4 प्रकार के आलू रखेगा, 2 प्रकार के आलू रखेगा, टमाटर रखेगा, मटर रखेगा। अब हम क्या करते हैं कि उसी में से ग्रेडिंग करके रखते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़। जब हम कोई भी चीज़ को ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करने के बाद कई सारे मटेरियल अलग हो जाते हैं, बड़े अलग हो जाते हैं, अंडर साइज के अलग हो जाएंगे, छोटे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम वही चीज़ रेट में वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 40 रुपये किलो इस मटर को रखा, और वही दूसरा मटर हमने 25 रुपये में दे दिया या 35 रुपये में दे दिया, उससे दूसरा ग्रेडिंग वाला हमने 25 रुपये में दे दिया, तो मटेरियल वही है। हमने क्या किया, सिर्फ ग्रेडिंग करके अलग अलग रख दिया कि बढ़िया दिखेगा तो आप पैसा हमें 40 रुपए 50 रुपए किलो देंगे, थोड़ा सा अच्छा होगा तो आप 5

0: रुपए कम दे देंगे, लेकिन मटेरियल हमारा वही है, हमने सिर्फ उसकी ग्रेडिंग कर दी। अब ग्रेडिंग करने मशीनी की बात आती है, जब मशीनीकरण हम खरीदने जाते हैं तो हम कोई भी मशीन खरीदें, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 5 लाख की हो, हमारा पैसा किसान का जेब से जा रहा है, तो हम सबसे पहले ये निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मशीन उपयोगी है नहीं। ठीक है, अब ये मेरे लिए उपयोगी है, मैं मान लिया हूँ। अब हमें क्या करना है कि हम 4 जगह पता करेंगे कि भाई ये मशीन, मान लीजिए एक रोटावेटर आपने ख़रीदा, हम चाहे वो लैंडफोर्स कंपनी का हो, चाहे दशमेश कंपनी का हो, चाहे सोनालिका का हो, हम चारों जगह हम जाएंगे और हम उनके रेट का एक एक मतलब कोटेशन लेंगे। अगर हम वो कहेंगे कि इतने में दे रहे हैं, तो भाई इतने में आप क्यों दे रहे हो, हमारा दूसरा इतने में दे रहा है, आपके में क्या खासियत है, वो आपको बताएंगे। पर एक चीज़ होती है ना, हमारी नज़रें जब पड़ती है ना किसी चीज़ पे, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी मशीन हमारी इसमें मटेरियल अच्छा लगा या नहीं लगा। जैसे 3-4 कंपनी की मैं बात करता हूँ, जैसे लैंड फोर्स है, बहुत अच्छा मटेरियल देती है और बिल्ड क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है, और सोनालिका है, मैं कंपनी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ
1: जी, कंपनी के बारे में नहीं कर भरम करने की बात कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ यह पूछा। और दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी रोचक बात बताई खेत समतलीकरण के बारे में।
0: हाँ बिल्कुल जी,
1: आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था जी, जी, जी। बैठा हूँ, जैसे रेडियो का मैं भी बड़ा प्रेमी हूँ।
0: अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपका स्वागत है।
1: रेडियो पे खेती किसानी संबंधी सारे कार्यक्रमों को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ
0: जी जी जी,
1: और खास करके आपके बगल में शायद आज नहीं बैठे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है, यहीं के एक इरफान शाह हैं, उन्होंने मुझे रेडियो का एक चस्का सा लगा दिया है।
0: अरे बगल में है, बात करिए आप उनसे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये उन्होंने पूरा का पूरा टाइम बता दिया है कि हमारे यहाँ से किसानों के लिए इतने बजे कार्यक्रम, देहातियों के लिए इतने बजे कार्यक्रम आता है, तो उसको सब बड़े ध्यान से सुनता हूँ।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा है।
1: अभी अभी आपने खेत समतलीकरण के बारे में बताया
0: जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन श्रीमान जी इसमें मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है।
1: जैसे आप वैज्ञानिक लोग कभी कभी ये भी बताते हैं कि खेत में पानी भरा ना रहे, जैसे किसी भी फसल के बारे में
0: जी,
1: जैसे कोई सब्जी वाली फसल है, मक्का वाली फसल है
0: जी,
1: कि खेत में पानी ना, खेत से पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी बात भी आप लोग करते हैं?
0: बिल्कुल करते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको।
1: हाँ तो श्रीमान जी, इसी पे आपको निश्चित करना चाहता हूँ कि किसी एक तरफ तो ढाल देना ही देना पड़ेगा कुछ, तभी तो खेत का पानी निकलेगा।
0: मैं बताऊंगा बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा
1: जी, मैं पूरा कार्यक्रम सुनूंगा। और ये एक जो अभी प्रश्न है, वो प्रश्न अभी तो सब वैसे प्रश्न थे, आप यही बातों में हमने कन्फर्म कर लिया। एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपने पावर टिलर के संबंध में बात की,
0: बिल्कुल सही है।
1: मैं गन्ने का किसान हूँ, खास करके मुझे खेती तो सभी करता हूँ, खाद्यान्न भी करता हूँ, सब्जी भी अपने लिए करता हूँ, लेकिन मूलतः गन्ने का किसान हूँ। गन्ने में पावर टिलर की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती
0: बहुत,
1: है,
0: बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बात सही है।
1: निराई गुड़ाई के लिए पावर टिलर से बढ़िया साधन मुझे दूसरा नहीं लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: श्रीमान जी, अब तक जो पावर टिलर हम लोगों को प्राप्त हुआ या हमने देखा या उपयोग किया, उनमें होता क्या है कि उनमें दो ही पहिया होती है, हत्थे के सहारे किसान उसको धक्का देकर चलाता है। क्या कोई पावर टिलर ऐसा भी आया है जिसमें चारों पहिया हो?
0: ऐसा अभी पावर टिलर आया नहीं जिसमें चारों पहिया, अभी दो ही पहिये वाला विकास हुआ है अभी। मैं आप चीज़ों की जो बात बता रहे हैं, मैं अपने बड़े जो हमारे संस्थान के इंजीनियर रिसर्च वाले हैं, उनसे मैं इस चीज़ों को डिस्कस करूंगा आपकी।
1: नहीं नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि जैसे उसको जब मैं धक्का देता हूँ गर्मियों में, तो थकान भी महसूस होती है थोड़ा सा, तो मैं सोचता हूँ कि अगर पावर टिलर में जिस तरीके से ट्रैक्टर का एक छोटा मॉडल या छोटा रूप होता, उस तरीके से अगर होता कि जिसमें चारों पहिए होते, किसान को धक्का ना देना पड़ता, तो बड़ी अच्छी बात होती है। हम जानना चाहते थे श्रीमान की, क्या कोई इस तरीके का पावर टिलर बना है या भविष्य में बनने वाला है, कुछ इस बारे में प्रकाश डालेंगे?
0: देखिए पावर टिलर की जब आपने बात करी है, तो पावर टिलर एक बीडर दो प्रकार के ऐसे यंत्र हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे लाभदायक साबित हुए हैं। जैसे पावर टिलर की आपने बात करी कि चार पहिए हों, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो जब आप किस खेत की कंडीशन पे आप पावर टिलर को चला रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके खेत में मॉइस्चर की समस्या ज़्यादा होगी यानी कि नमी ज़्यादा होगी, तो आपको उसमें धकेलने की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आपकी नमी एकदम पर्याप्त होगी, जुताई के लिए बहुत अच्छी नमी होगी, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। उसमें फोर स्ट्रोक इंजन, बढ़िया इंजन लगा होता है जो अपने लिए, जो मशीन चलाने के लिए आप बहुत उपयोगी है।
1: आपका आपका बहुत समय ले लिया श्रीमान, 30 सेकंड में एक बात और पूछना चाहता हूं।
0: जी जी जी।
1: हेलो।
0: हाँ सुन रहा हूँ मैं।
1: एक थोड़ी जिज्ञासा और शांत के, जैसे अभी आपने ड्रोन दीदी के संबंध में बात करी।
0: जी जी जी।
1: मैं श्रीमान आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो खेतों में, खास करके गन्ने की खेतों में दवाइयों का छिड़काव होता है, केमिकलों का छिड़काव होता है
0: जी,
1: उसमें आमतौर पर हम किसान
0: जी
1: एक एक एक एकड़ में 10 टंकी पानी
0: जी जी जी
1: मैं दवाओं को मिला करके, ऐसा सुस्ती होती है चीनी मिल वालों के तरफ से और वैज्ञानिकों के तरफ से कम एक एकड़ में डेढ़ से लीटर पानी होना चाहिए, 150 लीटर पानी होना चाहिए। और ये जो ड्रोन उपलब्ध है श्रीमान, इसको हमने पिछले साल देखा है, चीनी मिल वालों ने छिड़कवाया था मात्र 10 लीटर पानी में उन्हीं दवाइयों को, इन दवाइयों को 150 लीटर पानी में छिड़कते हैं हम लोग, उसको मात्र 10 लीटर पानी में ड्रोन उड़ावा करके पूरे खेत में छिड़कवा दिया। सर ये क्या तरीका सही था?
0: देखिए उसमें क्या होता है, जब आपका एरिया जितना है उसके अकॉर्डिंग उसमें टैंक लगा होता है, वो 10 लीटर की शुरुआत होती है, फिर 15 लीटर होता है, फिर 25 लीटर मैक्सिमम होता है, उसमें इतना ही वो उठा पाता, अभी इतनी कैपेसिटी है उसमें।
1: तो उसमें 10 लीटर क्षमता थी और 10 लीटर क्षमता में उसने एक एकड़ में छिड़काव किया था, चीनी मिल के तमाम वैज्ञानिक मौजूद थे।
0: अच्छा।
1: तो हमने उनसे यह प्रश्न किया तो उन्होंने हमें थोड़ा सा संकेत किया कि शांत रहिए या चुप रहिए, इस तरीके का संकेत किया।
0: ठीक है, बहुत जी जी जी।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो 150 लीटर पानी में दवाओं के घोल से जो भिगोने की बात खेतों को करी जा रही है, फसलों को, क्या वो 10 लीटर में भिग गए?
0: देखिए वो ऐसा है, वो जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो केमिकल और पानी का रेशियो जो है वो उनके वैज्ञानिक ही बेहतर बता सकते हैं आपको कि केमिकल का और पानी का एक एकड़ में कितना रेशियो होता है। हम क्या है, सिर्फ यंत्रों की बात कर रहे हैं अभी, हम केमिकल का रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक एग्रोनॉमिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, वो पानी का और केमिकल का क्या रेशियो है, कितना डालना चाहिए एक एकड़ में, वो बताएंगे आपको। तो कभी यहाँ पे 100 लगे, किसी भी वैज्ञानिक का, एग्रोनॉमिस्ट जो है, सस्य वैज्ञानिक होते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन वाले वैज्ञानिक होते हैं, उन सब से आप कभी, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप पूछिएगा, ध्यान से अच्छा बताएंगे वो। और आपने अभी के बात करी है कि लेजर लैंड लेवलर वाली के समतलीकरण से पानी ज़्यादा भर जाता है, उसके लिए एक यंत्र है हमारे पास कि जैसे बहुत सारे किसान उसको यूज करते हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे बेड प्लांटर है, हम जब हमारी वर्षा ज़्यादा हो जाती है जिस क्षेत्र में, तो उस किसान भाइयों की फसल ख़राब हो जाती है और वो लॉजिंग की समस्या भी आती है उनके पास। तो उनको सबसे पहले हमें क्या करने, जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है या नहर का पानी ज़्यादा आता है, उन किसानों को मैड पर बुवाई करनी चाहिए। एक बेड प्लांटर आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, मुझे लगता है कि 2 लाख या 1.5 लाख का आ जाएगा बढ़िया बेड प्लांटर। तो बेड प्लांटर पे जब आप बुवाई करेंगे, उससे हमें देखिए फ़ायदे कितने मिलेंगे। नंबर एक, आपकी जो फसल में जल भराव की समस्या ख़त्म हो जाएगी, और जो जो आप पानी लगाते हैं वर्षा के समय ज़्यादा पानी होता है, मृदा का अपरदन जो होता है वो भी आपका बच जाएगा, और जब हमारी फसल मेड़ पर लगेगी तो पानी उतना ही उसे मिलेगा जितना ज़रूरत है। नालियों के माध्यम से पानी जहाँ भी आपका ढलान होगा वहाँ निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, और फसल हमारी बहुत अच्छी होगी, और उसको जो है मिट्टी में जो पर्याप्त मात्रा मिलती है, पोषक मिलेंगे, बहुत अच्छी हमारी क्रॉप भी होगी। कभी भी आप मेड़ पर किसी भी फसल को उगा करके देखिए, बहुत अच्छी फसल लगेगी।
1: चलिए श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका स्वागत है।
1: पूरी टीम को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ कुशल पाल तिवारी जी, जिन्होंने रुपए डीहा से कॉल किया था और कई सारे प्रश्नों को पूछा, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट ने बहुत ही सरलता के साथ में बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और मुझे लगता है कि हमारे को होस्ट यानी इरफान शाह अगला प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं।
3: जी सर, तो सर अब हम आते हैं अगले सवाल पर और जानना चाहेंगे सर कि कृषि यंत्र जो है वो किराए पर देने का व्यवसाय कैसे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होगा कि इसको हम अपना व्यवसाय जो है वो कैसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अभी हमारे कृषक भाई जुड़े भी थे, उन्होंने भी ये चीज़ पूछी थी कृषि यंत्र कैसे काम करते हैं, क्या होता है। तो अब सबसे पहले मैं जो हमारा कृषि यंत्र का प्रयोग है वो मैं बताने वाला हूँ कि जी इन्होंने पूछा है अभी कृषि यंत्र का व्यवसाय कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे किसान भाई ये डिसाइड करें कि हम किस ग्रुप से हैं। अगर वो एपीओज के ग्रुप से माध्यम से जुड़े हैं तो एपीओ जब हम किसी संगठन के माध्यम से कार्य करते हैं उसकी हमारी क्षमता बढ़ जाती है, और जब हम अकेले काम करते हैं तो उस कार्य की क्षमता कम होती है लेकिन समय भी उसमें ज़्यादा लगता है। अब हमारे किसान भाइयों को यंत्र की बात बताते हैं। जैसे अभी एक योजना चल रही है मशीन बैंक योजना, और दूसरी है सरकार की तरफ से योजना है मशीन बैंक योजना, और दूसरी है कृषि यंत्रीकरण योजना। दो ऐसी योजनाएँ हैं, और तीसरी योजना है इसी यंत्रीकरण से जुड़ी एक कस्टम हायरिंग सेंटर, जो CHC सेंटर बनाए जाते हैं वो सरकार के अनुदान के सहयोग से इस सेंटर को हम स्थापित कर सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे, जब हमारे किसान बहुत सारे FPO चलाते हैं और उसमें 1200 और 3000 किसान का ग्रुप बना हुआ है और वो बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैंने देखे भी हैं, बहुत ज़िलों में हैं, अपने ज़िले में भी देखे हैं, गोंडा में भी हैं बहुत सारे लोग। तो जो FPO चलाते हैं उनके माध्यम से वो लोग मशीन खरीदते हैं, और मशीन खरीदते कैसे हैं, कृषि यंत्रीकरण को योजना जो इंग्लिश में कहते हैं SMM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम, इस स्कीम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हम एक कृषि जो है एक वेबसाइट है उसके माध्यम से हम एक एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं, वो टोकन मनी कुछ होती है मामूली सी वो हम जमा करते हैं। उसके बाद जब सारी डेट ख़त्म हो जाती है, ऑनलाइन क्लोजिंग हो जाता है, उसके बाद एक ई लॉटरी माध्यम से खुलता है यंत्र का। अब उसमें ई लॉटरी खुलती है तो उसमें किसान का चयन होता है, उस किसान के चयन में मशीन कौन सी आपने अप्लाई की है, कौन सी आपने उसको सिलेक्शन किया है। आप मान लीजिए एक हैप्पी सीडर आपने चूज किया है, या किसी दूसरे किसान ने एक सुपर सीडर यूज किया है, तीसरे किसान ने लेजर लैंड लेबलर को परचेज करने के लिए ऑनलाइन किया, ये 4-5 मशीनें जब ग्रुप में करेंगे तो कई सारे ग्रुप में लोग ऑनलाइन करेंगे तो कई सारी मशीनें अपने ग्रुप में आ जाएंगी। अब ये 4-5 मशीनें मान लीजिए हैप्पी सीडर है, बड़ी मशीन है, सुपर सीडर है, लेजर लैंड लेबलर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, बेड प्लांटर है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, रोटावेटर है, और आपका MB प्लाऊ है जो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है, उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा मैं। तो ये सारी मशीनें अगर आ जाती हैं ई लॉटरी के माध्यम से तो हमारे एक FPO के अंदर ये मशीनें आ गई। अब ये मशीनें FPOs में जितने किसान हमारे जुड़े हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, जो किसान हमारे रजिस्टर्ड हैं वो किसान अपनी खेती करेंगे, उसके अलावा अन्य जिनने खेती कर ली है वो दूसरे खेती के लिए किराए पर दे सकते हैं। अब किराए पर देंगे कैसे, सबसे पहले हमें निर्धारित करना होगा उसकी कीमत कितनी है मशीन की, कीमत के बाद उसकी मेंटेनेंस खर्च कितना लगेगा एक साल में, और उसके बाद हमारा डीजल कंजप्शन एक घंटे में कितना लगेगा ट्रैक्टर के माध्यम से, वो सारा एक हमारा गुणा गणित हमारे जो FPOs के डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद एक नॉमिनल चार्ज, जैसे 400 रुपये घंटा या 600 रुपये घंटा, अगर बड़ी मशीन है तो 700 रुपये घंटा, छोटी मशीन है तो 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हम अपने कृषक भाइयों को किराए पर दे सकते हैं। जब वो किराए पर ले जाएंगे तो मशीन ले जा करके अपनी बुवाई का कार्य करके ख़त्म करके, जुताई का कार्य ख़त्म करके वो खेत पर घर पर आपके रख देंगे और आपको घंटे के हिसाब से पैसा दे देंगे। जब आपने अपना कार्य समय से कर लिया और दूसरी मशीनें किराए पर दे दी तो एक व्यवसाय बन गया हमारा, और हमारा जो व्यवसाय बना है तो उससे इनकम जनरेट हुई और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेशन हुआ, जब हम कोई किसी मशीन किराए पर देंगे तो ट्रैक्टर या मशीन साथ में देंगे, उसमें ड्राइवर होगा और भी एक स्किल्ड लेबर होगा, तो इन सबको एक रोज़गार मिलेगा और हमारा व्यवसाय को आगे बढ़ेगा। इस तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर और मशीन बैंक, ये सब सरकार की योजना है। किसानों को 40% सब्सिडी और उससे अधिक भी मिलती है, 50% सब्सिडी भी मिलती है इन मशीनों पे। जैसे एमबी प्लाउ की मैं बात करूँ, एमबी प्लाउ रिवर्सिबल एमबी प्लाउ एक सामान्य एमबी प्लाउ होता है, दो प्रकार के एमबी प्लाउ होते हैं। अगर रिवर्सिबल एमबी प्लाउ होता है तो वो बहुत अच्छी गहराई तक जाता है, और जब हम कब यूज करते हैं, जब हमारी फसल धान की फसल कटने लगती है, उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हैं हम लोग, तो उसके बाद जो पराली हमारी बचती है, एमबी प्लाउ चलाने से वो पराली हमारी नीचे दब जाती है और मिट्टी में मिक्स हो जाती है। तो अब ये ऐसे इम्प्लीमेंट हमारे बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, तो ये हम किसानों को किराए पर दे सकते हैं। अब मैं छोटे इम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, यंत्रों की बात करता हूँ। जैसे कम जोत के किसान हैं हमारे, जिनके पास ज़मीनें कम हैं, तो वो जैसे अभी भाई साहब हमारे ऑनलाइन में जुड़े थे, बता रहे थे कि पावर टिलर है, पावर वीडर है, और जो है रीपर है, रीपर बाइंडर है। ये छोटी मशीनें जुताई की, और रिज मेकर जो है उसी में अटैचमेंट होता है पावर टिलर में, और कल्टीवेटर भी अटैचमेंट होता है। 4 से 5 प्रकार के पावर टिलर में अटैचमेंट होते हैं। उन अटैचमेंट से हम खेती आसानी से कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, बुवाई हम समय से कर सकते हैं। इन सब की बड़ी महत्वता होती है हमारे छोटे किसान को, जो ऑर्चर्ड और कम जोत के किसान होते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसमें कीमत भी आपकी ज़्यादा नहीं होती है, मेरे हिसाब से किसान भाई अफोर्ड कर लेंगे 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार के अंदर ये सब हमारे यंत्र आसानी से मिल जाते हैं।
2: सुभाई, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कृषि यंत्र किराए पर देने का व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए। एक वर्ड आपने कई बार बोला है, वो है कस्टम हायरिंग सेंटर।
0: जी,
2: हमारे उन किसान भाइयों को बताएं जो इस नाम को सुन तो चुके हैं, जिनको पता नहीं है कि ये क्या है।
0: बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं, जो गांव के किसान हैं हमारे, जो कम खेती करते हैं और गाँव के बाहर नहीं जाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं जानकारी होती है। तो हम वैज्ञानिक का काम होता है कि किसानों के बीच में एक मीटिंग को रखते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं या गांव के में बहुत अच्छी खेती करने वाले हमारे कृषक होते हैं, उनके हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी एक बैठक करते हैं। उसमें हम किसानों को पूरी यंत्रीकरण की योजना के बारे में हम पूरा विस्तार से बताते हैं। तो जब मैं बताता हूँ तो बहुत किसान होते हैं कि साहब हमें इसकी जानकारी थी ही नहीं और है ही नहीं, कोई वैज्ञानिक या कोई भी कृषि विभाग के अधिकारी हमारे पास नहीं आए बताने के लिए। तो मैं उनके साथ जब बैठक करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कहते हैं साहब हमें सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं आपको कि हर ज़िले में एक कृषि विभाग का एक दफ्तर होता है। उस दफ्तर में आप जाएंगे जहाँ पर बैठते हैं उप कृषि निदेशक महोदय, उस कृषि निदेशक महोदय या जिला कृषि अधिकारी, ये दो ऐसे अधिकारी हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और सारी योजनाएं इन्हीं के माध्यम से संचालित होती हैं। जैसे जब आप कृषि विभाग में जाएंगे तो वहाँ पता करेंगे आपके यंत्रीकरण की योजना कैसे होती है, कैसे चलती है, क्या इसमें करना होता है। तो मैं आपको संक्षेप में इसका बता दूँ कि जब आप विभाग में जाएंगे तो वहाँ पर एक नोडल अधिकारी होते हैं, इस स्कीम को देखते हैं, उनसे जब आप बात करेंगे तो वो बताएंगे, कृषि विभाग की वेबसाइट है एग्रीकल्चर यूपी एग्रीकल्चर दर्शन करके, उस पर आप जब ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आप जो है एक योजना के तहत जिसे कस्टम हायरिंग सेंटर जिसे बोलते हैं, उसमें आप मशीनों का संचालन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जब कस्टम हायरिंग सेंटर आप चलाएँगे तो अपनी जो है जेब खर्च जो है हम कम करेंगे और हम उत्पादन को बढ़ाएंगे। वो कैसे, जब आप कोई भी मशीन ले आएंगे, हम आज कार्य अपना लेबर के द्वारा हम 4 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं, उस जुताई की गुड़ाई की बुवाई का कार्य ख़त्म करते हैं। अगर हम मशीन ले आएंगे तो मशीन से हम नंबर ऑफ हेक्टेयर्स का एरिया हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं और हमारा इधर समय बचेगा, और किसान का जो जेब खर्च लेबर के माध्यम से जा रहा था, मजदूरी में चला जा रहा था, वो भी हमारा पैसा इधर बचेगा। जब ये पैसा बचेगा, उधर हम मशीन से सेविंग कर रहे हैं, फिर ऊपर प्लस में हमारा प्रोडक्शन भी, जो हमारी उपज है वो भी हमारी बढ़ेगी। जब हम समय से बुवाई करेंगे, समय से खाद डालेंगे, समय से सिंचाई करेंगे और समय से उसकी कटाई करेंगे, तो सबसे बड़ा अहम रोल होता है किसानों के लिए समय से बुवाई, फसल चक्र अपनाना, ये सब अहम रोल अदा करता है उत्पादन में। जब आप समय से कोई बुवाई नहीं करेंगे तो उत्पादन सोचेंगे हमें ज़्यादा मिल जाए, कदापि नहीं मिलेगा। आप समय के साथ बीज का अच्छा चयन और समय से बुवाई, समय से सिंचाई, समय से कटाई, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा अहम रोल होगा। और मैं मानता हूँ किसान कुछ लेट हो जाते हैं, लेकिन होते कैसे कि मशीनों के कारण उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। अब मशीनें इतनी आधुनिक यंत्र आ गए हैं कि आप किराए पर ले करके, जैसे मैंने कहा कस्टम हायरिंग सेंटर बात कर रहा था, उस पर आप किराए पर आसपास के गांव में कहीं ना कहीं आपको मशीन मिल जाएगी, उसको किराए पर आप ले आइए, अपनी बुवाई करवा के वापस उनको कर दीजिए। कितना बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा फायदा है।
2: बिल्कुल सही कहा, कस्टम हायरिंग सेंटर से एक बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भाई बहुत सारी ज़रूरतों के सामान होते हैं जो किसान भाई अक्सर मजदूरों के अभाव में कई बार डीले हो जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है और जो प्रक्रिया अपनानी होती है वो समय पर नहीं हो पाती है, तो मशीनें इसमें आपकी पूरी पूरी मदद करती हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर पर आपको बहुत ही नॉमिनल यानी नाम मात्र चार्जेस में मिल जाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछने वाले हैं, चूँकि देखिए ये बात तो हो गई कि मशीनों को ले लिया जाए काम आसान होगा, लेकिन मुझे लगता है ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बल्कि बात ये भी आती है कि मशीनों को ले लिया, अब मेन चीज़ मेंटेनेंस होती है, रखरखाव होता
0: जी,
2: है
0: बहुत अच्छा।
2: क्योंकि मुझे लगता है आप भी वैज्ञानिक हैं, आप निकलते होंगे जब फील्ड में, तो ऐसे बहुत सारे किसान देखते होंगे जिनके पास मशीन है, तो रखरखाव को लेकर के आप क्या पाते हैं? और अब हमारे किसान भाइयों से, उन किसान भाइयों से जिनके पास ऐसी मशीनें हैं, चाहे वो सीमांत किसान हो या बड़े किसान हो, उनको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा ये लाभ का साबित होने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा था आपके बीच में कि मशीन बैंक कैसे संचालन करें, कहाँ से मशीनें खरीदें, इसके बाद खरीद के लाने के बाद कस्टम हायरिंग सेंटर्स के साथ में जो मशीनें संचालित हो रही उसको हम कैसे रख रखाव करें, ये सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों के लिए प्रश्न है। कि मशीन तो हम खरीद लेते हैं, आज हमारे किसान भाई 2 लाख की मशीन खरीद के ले आए और अपने खेत की बुवाई करके उन्होंने ऐसे ही रख दिया। अब उस पर जब आप मेंटेनेंस या रखरखाव नहीं करेंगे तो अगले सीज़न में आपकी मशीन नहीं सही से चल पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं या कोई भी बाधित समस्या आएगी। अब हमें सबसे पहले करना क्या है किसान भाइयों के लिए कि जब कोई मशीन खरीद करके लाएँ, चाहे वो देखिए पैसा आपने जेब से लगाया है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपने खेत से पैसा फसल को उत्पादन से लाया है, तो पैसे की बहुत वैल्यू होती है हमारे किसान भाइयों के लिए। और जब फसल ख़राब हो जाती है किसान हमारे चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी फसल ख़राब हो गई, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की पढ़ाई में जाना पैसा है, घर के परिवार में खर्च होता है, तो वो पैसे की हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी कीमत होती है। जब हम किसी उस पैसे को मेहनत से सींचा हुआ पैसा हम कहीं चीज़ लगाते हैं तो दिल में दर्द होता है, एक बार सोचते हैं। तो जब हम 3 लाख रुपए या 2 लाख या 1 लाख रुपए की मशीन को ही हम खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले हम उसका रख रखाव की आवश्यकता हमें ज़रूरत पड़ती है। वो करेंगे कैसे हमारे किसान भाई, जब मशीन खरीद करके लाएँ, एक सीज़न चाहे वो खरीफ का हो चाहे वो रबी का सीज़न हो, आपने कृषि कार्य कर लिया है, पूर्ण आपकी बुवाई हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसको घर पे लाइए, घर पे लाने के बाद उसको बढ़िया से पानी से उसको धुल दीजिए, मिट्टी लगी होती है फालों में लगी होती है, कुछ मशीन अगर सीड ड्रिल है तो उसमें मशीन में मिट्टी लग जाती है, कुछ फर्टिलाइज़र जम जाता है, कुछ बीज फंस जाते हैं, उनको प्रेशर से, पानी के प्रेशर से उसको बढ़िया से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद एक दिन धूप में उसको सूखने दीजिए ताकि जो पानी हमने दिया है उसमें वो सूख जाए। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे कि जो हमारा डीजल होता है जला हुआ पेट्रोल या डीजल, जो हमारे मशीनों से या इंजन से काला जो निकलता है तेल, जो वेस्टेज तेल होता है, हम कहीं यूज नहीं करते उसको, वो तेल आप क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन जहाँ पे हमें रखना होगा छायादार स्थान में, जिसमें बारिश का पानी उसके ऊपर ना पड़े। अगर पड़ता है तो नीचे ईंटा रख दीजिए, उसके ऊपर मशीन को रखिए, उसके बाद ऊपर से पन्नी को ढक दीजिए। अब ढकने से पहले हमें क्या करना है, हमारे किसान भाई नहीं जानते हैं बहुत सारे, उन फालों में वो काला तेल जो होता है वो फालों में सब में लगा दीजिए जहाँ जहाँ जंग लगने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर जब तेल लगा देंगे तो वहाँ पे आप जंग नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। और दूसरी बात, जब फर्टिलाइज़र या कोई भी सीड ड्रिल या कोई मशीन होती है उसमें जब हम उर्वरक या फर्टिलाइज़र डालते हैं उसमें बहुत तेज़ी से जंग पकड़ता है, बहुत तेज़ी से जम जाता है फर्टिलाइज़र, उसमें भी हम काला तेल, उसमें जो हमारी फ्लूटेड रोलर होते हैं जो इससे बीज हमारा निकलता है, खाद निकलती है, वो चलते हैं, उसमें भी हम तेल को लगा करके और बीज वाले कॉलम में भी तेल को लगा करके हम बढ़िया से साफ करके एक छायादार स्थान में पन्नी को ढक करके हम मशीन की रक्षा कर सकते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, जब हमने ये सब कर लिया और मशीन को ढक कर रख दिया, अब आपकी मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कुछ नहीं करना। जब आप सीजन जब शुरू हो आपका मौसम, या चाहे अभी जान लीजिए कि खरीफ का सीज़न है, इसके बाद रबी का सीज़न आएगा, अब ये आप मशीन की सुरक्षित रखिए, जब रबी के सीज़न में मशीन को निकालेंगे एकदम सुरक्षित रहेगी, सिर्फ एक बार जो है उसको चला दीजिए, बिल्कुल सही मशीन होगा, बुवाई के लिए एकदम तैयार है।
2: क्या
0: तो ये सब किसानों के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था और बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को लगी भी होगी। अब इसमें एक कड़ी और थोड़ा जोड़ना चाहूँगा मैं अपने किसान भाइयों के लिए
2: जी।
0: अब ये तो हमारा रखरखाव हो गया, एक कड़ी छूट गई थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सीजन जो हमारा मौसम आने वाला है रबी का, धान की फसल खड़ी है खेत में किसान भाइयों के, और इस मंच के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब फसल खड़ी है थोड़ी बड़ी होगी इसके बाद उसकी कटाई होगी। अब कटाई हमारे किसान भाई धान की करते हैं जनरली कंबाइन हार्वेस्टर से। जब कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी मशीन होती है उसमें कटते हैं, इसके बाद सीधा ग्रेन हमारा जो उपज निकलता है धान का या गेहूं का वो सीधा घर में पहुंच जाता है किसान भाइयों के। अब वो क्या करते हैं, जब धान की फसल कटती है तो पराली जो निकलती है धान की वो किसान जला देते हैं खेतों में। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। अब कष्ट क्यों होता है, इसलिए क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और हमारे किसान बहुत अच्छे सम्माननीय और पूजनीय होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उनके बिना ये देश चल नहीं सकता। अगर किसान हमारे अन्न नहीं उगाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत देश के अन्नदाता हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो मैं इस मंच के माध्यम से 89.6 FM के माध्यम से मैं आपको एक सजेशन और सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे धान की पराली जलाते हैं हम किसान खेत में, उससे कितना फ़ायदा होता है, देखिए जो हमारे किसान हैं खेत में पराली जलाते हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी जल जाती है जिससे तपन होती है, वहाँ पे कीट मित्र हमारे होते हैं केंचुआ, वो खेत में जो केंचुए होते हैं उस तपन की वजह से, उस आग की वजह से वो मर जाते हैं। और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे मिट्टी में मिले होते हैं वो भी मर जाते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारी धीरे धीरे जमीन की उर्वरा शक्ति छीन हो जाएगी। जब हम खेत में पराली जलाते हैं तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान होते हैं, तो नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और जो है आपका ऑर्गेनिक कार्बन, ये कुल मिला के हमारा करीब करीब 10 से 15 किलो जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फर, ये चीज़ हमारी पराली में होती है। अगर हम इस पराली को खेत से हम बाहर निकाल देंगे तो ये पराली का जो आपका जो उर्वरक है वो खेत से बाहर निकल गया, खेत में नहीं रहा, आपने जला दिया तो आपका देखिए कितना नुकसान हुआ, एक तो मृदा का स्वास्थ्य हमारा उतनी जगह का ख़राब हो गया और कीट मित्र मर गए और सूक्ष्म जीव काम करना बंद कर दिए। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा पैदा होती है। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिल्कुल पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ऐसी जहरीले गैसेस होती हैं जो हमारे ह्यूमन पर इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे आँखों में जलन, दमा की बीमारी, घुटन की बीमारी और आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इससे हमें बचना होगा, आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम अगर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में आप झेलने के लिए तैयार रहेंगे।
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि देखिए प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ रहा है, अगर हम किसान ये कदम उठाएंगे, अपनी खेती को बर्बाद करेंगे, तो ऐसा कदापि ना करें। मेरा इस सजेशन मान लीजिए, या मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खेत में पराली ना जलाएं, उसका प्रबंधन कर लीजिए, आप छायादार स्थान में उसको उठा के रख लीजिए। देखिए, बेल बनाने वाली मशीनें आ गई हैं आजकल, बेल भी बना करके छायादार स्थान में रख लीजिए। साल भर पशुओं को चारा खिलाइए, मशरूम उत्पादन करिए, बर्मी कंपोस्ट बनाइए। देखिए, वेस्ट डिकम्पोजर भी आपने दिल्ली से ईजाद हुआ है कि आप उसको वेस्ट डिकम्पोजर बना करके पुआल पर छिड़क देंगे तो एक कंपोस्ट बन करके वो आप खेत में फैला दीजिए। तो हमारे किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।
2: बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही सरलता से बताया आपने कि कितना ज़रूरी है पराली का प्रबंधन और किस तरह से कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं और कैसे मशीनों का इस्तेमाल करके आधुनिक खेती और उसके व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है। चूँकि आज का विषय था आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा सफल व्यवसाय, जिस पर हमसे आज चर्चा हो रही थी डॉक्टर देवेश कुमार, वैज्ञानिक कृषि अभियंत्रण संत कबीर नगर, जो फिलहाल गोंडा FM पर आए हैं और लाइव शो में आपसे बातचीत किया। मुझे उम्मीद है कि आज का शो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है और जो भी हमारे किसान भाई फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से या फिर रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे को होस्ट इरफान शाह का, जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन साथ अपने लाए और आज के इस विषय को डिसाइड करने में इन्होंने पूरी पूरी मदद की आज के इस प्रोग्राम की टीम की। सो बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आए, इतना वक्त निकाला। सो किसान भाइयों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम, आप आकर के हमको चैट बॉक्स पे बता सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते फिर वापस से मिलेंगे किसी नई विषय, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने गोंडा FM पर।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9 8 1 9 7 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
8: Delicious.
9: Hannah, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
8: और क्या क्या है खास?
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
8: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
10: शाह शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
10: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
10: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

स्वागत बा रोवा लोगन के शो गोना मैसेज मसाला मा रोवा लोगन के आरजे सिंपल लॉट्स ऑफ सिंपल के साथ मा। और आप सुन रही हैं रेडियो ग्यारह स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

लिए आप सभी की गुंडा मसल मसाला प्रोग्राम मा आपके अपने आगे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर के धड़कन। तब पहले ये बताइए कि अगर आप सभी घरे हो रेडियो खोल के बैठल बानी तब पहले हमके ये बताइए कि आज के संध्या के कवन मूड बानी, काम से थकल बानी कि कौनो के याद में डूबल बानी कि कौनो के मैसेज के इंतजार में बानी कि फेरू बस रेडियो चला के बैठ गई बानी कि देखी आज ही आरजी का नया तमाशा का लेकर आई बा। तो का भा, स्वागत है आप सभी के दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से, सबलू सावंत मुंबई से, कमल नयन बिहार से शायद, और क्रिकेट लवर इरफान शाह आप सभी का स्वागत है आप सभी के रोवा लोगन के आपन शो गोंडा मैसेज मसाला मा। और सबसे स्पेशल बात तो हम ये कहा चाहता नहीं कि हमके बहुत डिफिकल्ट लागत है जहाँ हमके ये थर्सडे स्पेशल प्रोग्राम करे के होते काहे कि आप लोग के भोजपुरी अडे रहा थे वो एका हम मिस नहीं करा चाहिए थे, और अगर हम मिस नहीं करा चाहिए थे फिर उसके बाद में हमने ये भोजपुरी बोला काफ़ी मुश्किल हो जाते काहे कि हम अवधी बोली वाली हुई ना, तो हमने लिए भोजपुरी तनी भर मुश्किल रहते लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं रहते। आप लोग बतावा जी कि हमारे भोजपुरी आप लोगों का कैसा लागत है। और फिलहाल फिलहाल फिलहाल अब अगर आगाज हो ही गया है ये महफिल के ता सुन ली कि आज की गुरुवार की संझा थोड़ा अलग होखे वाला बा, कहे कि आज गोंडा मैसेज मसाला मा भोजपुरी के रंग चढ़ी, अवधि के मिठास घुली, गाना बजे बतकही हुई है, हंसी मजाक हुई और थोड़ा दिल के बात हुई, अब बीच बीच में रवा लोग के तंगो कहिल जाए काहे कि हमार नाम तो सिंपल बा लेकिन हम तो बिल्कुल सिंपल ना है, को इज नॉट सो सिंपल, काहे कि हम है आपके आरजे सिंपल और आज के आपके गोंडा मैसेज मसाला के प्रोग्राम मा रवा सभे के नाम रही ये पूरा के पूरा प्रोग्राम और ये पूरा के पूरा महफिल और ये पूरी की पूरी आरजे सिंपल। अब एगो बात बताई, भोजपुरी गाना सुने खातिर रउवा के कोनो खास मौका चाहिए का? बिल्कुल नहीं। और भोजपुरी में बतियावे खातिर कोनो त्योहार चाहिए का? ना ना ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना। और माई से खैला हा पूछे खातिर कोनो संडे चाहिए का? ना। तो फिर आज के गुरुवार के संझा हमने काहे ना पूरा देसी हो जाई, शहर में रहब, नौकरी करब, इंग्लिश बोलब, बड़बड़ बात करब, बाकी जब घर से फोन आई और उधर से आवाज आई का हो बबुआ खाना खैला, तो सारा इंग्लिश सारा एटीट्यूड सारा प्रोफेशनलिज्म एक झटके में गायब, बचेला का बस हाँ माई खाली हनी, ये है भोजपुरी के ताकत। अब शुरुआत होके की चाहिए एकदम झक्कास भोजपुरी गाने के साथ, मकाहे हम सही कहता नहीं ना, तो रउआ लोग भी थोड़ा सा वॉल्यूम के बढ़ा दी काहे कि आज पड़ोसी के भी पता चले कि चाहिए कि गुरुवार की संझा मा सिंपल के साथ मा आप लोग हो आपके गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम मा। सो चला जाए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और एक के बाद मा आवा जी अपने गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम मा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेंद्र मोहन आवाज विकास गोंडा से, सबलू सामंत मुंबई से और शायद आजकल ये हैं बिहार में, तो शुभ संध्या आपका भी सबलू सामंत जी। बिहार के का हाल चाल भाव, भोजपुरी के का हाल चाल भाव, अगर ई हाल चाल जाने के बाद तो सबलू सामंत से अच्छा कोई हुई नहीं सकते कि पूरा का पूरा फुली अपडेट हम सबके दे दी। तो सबलू सामंत जी एकदम से बताइएगा कि हमारी भोजपुरी अंदाज आपके कैसन लाग। फिलहाल चला जाए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के तरफ और आप लोग चाहें तो म्यूजिकल ब्रेक के लिए आप लोग भी हमके आइडिया दे सकते हैं कि कौन वाला भोजपुरी गाना बाजे की चाहिए, काहे कि हफ्ता में एक ही दिन तो आवत है ये मिड वीकेंड थर्सडे स्पेशल भोजपुरी एंड अवधि स्पेशल प्रोग्राम, जहाँ हम लोग एकदम जी खोल के सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में डूब जावा जाते, तो काहे कि एक स्पेशल बनावे के तो आप लोग भी अगर साथ दे तो ज्यादा बढ़िया लगी। तो चलो चला जाए इंजॉय करा जाए ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा और मिला जाए इस बहुत ही खूबसूरत से भोजपुरी सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून्ड।

ऐसा गाना सुन के ना मन करे कि काम धंधा सब छोड़ के कहीं चौराहा पर बैठी और साथ में चाय के गिलास होके के चाहिए। और सामने ज्यादा ना है, बहुत ज्यादा ना है, बस चार गो पहचान के लोग होके के चाहिए। अब बत कही के कौनो भी अंत नहीं होके के चाहिए। हमनी के देसी जिंदगी के सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट आखिर का है दोस्तों? हम आप लोगों से पूछता नहीं, आप लोगों से पूछता नहीं, हमके चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमनी के देसी जिंदगी के सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का है। जल्दी जल्दी बताइए। ओके, पहले कमल नयन जी स्वागत है आपका, और धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से स्टे ट्यून, इनके कहना है कि एकदम चकाचक लागत है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम आप लोगों से पूछता नहीं कि हमनी के देसी जिंदगी के सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का है, बत कही क्यों? सही कहा ना, आज के जमाना में लोग सब्सक्रिप्शन लेके एंटरटेनमेंट खोजेला। हमने के गांव में चौक पर दूगो आदमी बैठल बा और तीन गो चाय आ गईल और चौथा आदमी कहत बा देश के हाल खराब बा। अब ई आदमी के देश के हाल में के बारे में कतना पता बा, ई तो भगवाने जाने और इहे आदमी जाने। बाकी चर्चा तो ऐसा 2 घंटा चलेला, ऐसे लगेला कि देश पूरा बस यही 2-4 आदमी मिलके चलावे ले। सो आप लोग के कैसा लागत है गांव के हाल, देश के हाल, आप लोग भी हमके चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और रवा लोग ध्यान देले बानी, गांव में कौनो बात छुपेला ना, शहर में कौनो आदमी के शादी होके तो 2 साल बाद पड़ोसी के पता चलेला कि गांव में के शादी हो गयेला है। और गांव में लड़का लड़की के देखे के पहले 3-4 घर के पता चल जाते हैं कि अरे वो के देखे जात के हैं, वो उनके देखे जात के हैं। और फिर उसके बाद में शादी होवे चाहे ना होवे, लेकिन इन लोगों का वो प्रपंच जो होता है ना, वो पूरे गांव में ऐसे सर्कुलेट हो जाता है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकर। सो आप लोग को क्या आप लोग का क्या लागत है, हमका चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं गाँव शहर के बारे में। और फिर उसके बाद में दोस्तों, अगर अगर हम गांव के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो आजकल लोग फेसबुक पर प्रोफाइल खोजते हैं, लेकिन गांव में भाई, गांव में बस खाली एक तो फोटो दिखावे के और चाची पूरा डिटेल आपका बता दिए, अरे ये तो इनके लड़का हैं, ये फलाना के लड़का हैं, जान तो इनके तो आदत भी सही ना है, बाइक पर बैठ के 4 लड़कन के साथ में घूमते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनुष्का फ्रॉम श्रावस्ती, स्टे ट्यून्ड। चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, म्यूजिकल ब्रेक के बाद में मिलते हैं और फिर आएंगे हम अपनी गोंडा मैसेज मसाला की भोजपुरिया महफिल में धमाकेदार एंट्री के साथ में, क्योंकि मुझे था मेरे लिसनर्स का इंतजार और फाइनली मेरे लिसनर्स आ चुके हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तो ये गाना राहुल धर्मेंद्र मोहन के फरमाइश और धर्मेंद्र मोहन है आवास विकास गोंडा से और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर के धड़कन आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के रोवा लोगन के आप सभी के गोंडा मैसेज मसाला के थर्सडे वाले स्पेशल प्रोग्राम में। सबलू सावंत का बहुत खूब कुछ कहना है, इनका कहना है कि दिल के धड़कन में तोहरे नाम लिख ले बानी। अरे वाह, दिल के धड़कन में तोहरे नाम लिख ले बानी, जन्मों जन्म तोहरे खातिर झेले बानी, आँख के कजराता जान ले ले बा, तोहरा ये मुस्की हमार प्राण लेके मानी, तोहरे सुरतिया दिल में औरी कुछ न सुहावे, तोर याद जबावे करेजा चैन पावे। सो ये कहना है सबलू सावंत का मुंबई से। और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि शहर में आपको आपके मकान नंबर से जानते होंगे लेकिन गांव में आपके माता पिता के नाम से जानते हैं। शहर से भला मेरा गांव अच्छा है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरा मोहल्ला दिन गुजार लेता है, शहर में घर में अकेले घुसकर पूरा दिन गुजरता है। ये तो एकदम नियमन और एकदम सही बात कहा है आपने नागेश्वर धाकड़ जी। और इसी के साथ में स्वागत है आपका अनुष्का श्रावस्ती से। सो दोस्तों, आज है 20 अगस्त थर्सडे की सांझ, यानी अवध के अदब और भोजपुरी के बेबाकपन के रंग जमावे वाला दिन। लेकिन आज के थर्सडे स्पेशल शाम में हमने के एक बहुत ही खास

और कभी बचपन के बेफिक्री, कभी पहली मोहब्बत के मीठ कसक, तो कभी छूटे हुए पुरान यार दोस्तों के याद। जितने लोग गाड़ी ड्राइव करत बानी, चौक बाजार में घूमत बानी, या घरे बैठ के चाय के चुस्की लेत बानी, आज आपन आपन यादों के बक्सा खोलनी और रेडियो के वॉल्यूम पुल कर ली। काहे कि इस सुरीली सफर के शुरुआत करत बानी सावन भादो के मौसम में यादों से भरल एक कड़क भोजपुरी अवधि ट्रैक के साथ में। का दोस्तों आप सबके याद बा ऊ जमाना जब ना हाथ में आईफोन रहे, ना रील के फालतू टेंशन, बारिश में कागज के नाव चलावे की खुशी, नीम के पेड़ पर झूला झूले के खुशी, और कंचा खेले और शाम होते ही दादी नहानी के आंगन में बैठ के किस्से सुनने की वो बेफिक्री। आजकल के जमाने में लड़का लोग तो खाली 5G के स्क्रीन से चिपकल बा, लेकिन हमनी के जमाना में तब माटी के सोंधापन ही पूरा दुनिया समाइल रहत रहे। वो जमाना भले ही बीत गए, लेकिन वो यादें आज भी आंख बंद केले पर मुस्कुराए पर मजबूर कर देला। आज अपना सब उन सभी बचपन के दिनन के याद करा जाई, और फिर उसके बाद माँ एक दूसरे के जज्बात का सुना जी और समझा जी। अच्छा, आप सभी हमारे 89.6 FM के मेंबर्स सच्ची सच्ची बतावा जाइए कि जिंदगी में सब कुछ भुला सका जाते, लेकिन पहला प्यार और एकर याद कबो ना मिट सकेला ना। वो स्कूल, वो कॉलेज के दिन, वो छुप छुप के एक दूसरे के देखे के दिन, वो छत पर आवे के इंतजार करे के दिन, और खत पर इत्र लगा के भेजे के वो मासूमियत। आज की डिजिटल जमाना में भले ही डेटिंग ऐप पर स्वाइप राइट हो जात बा, लेकिन जो कशिश उस जमाने में एक दीदार खातिर तड़पे रहने में रहता था ना, वो आज के ई इंस्टेंट लव में हमके तो नहीं खे दिखत। ये आजकल के ओपन माइंडेड प्रोग्राम ना, ये आजकल के ओपन माइंडेड लव हमें नहीं समझ में आवत। अगर आज रउआ के भी आपन पहला प्यार और पहली भूली बिसरी सुरतिया याद आवत है, तो हमके चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल वर्मा जी सैदापुर से।

सो दोस्तों 7 बजे मा तनिक सा टाइम बाकी बा और याद पर याद स्पेशल मा याद आवत बा हमनी के पक्के लंगोटिया यारन के। याद बहु दिन जब जेब में 10 रुपया रहे लेकिन जिगरा राजा जैसन रहे। चौक बाजार के नुक्कड़ पर चाय के टपरी पर घंटा घंटा बैठ के बकैती काटना, मोमोस खाना, चाउमीन दाबना, दोस्त के गाड़ी पर या तो अपनी स्कूटी पर गेड़ियां मारना, शहर का नापना और एक दूसरे के टांग खिंचाई करना। फिर वक्त बदल गई, कोई दिल्ली चला गईल, कोई मुंबई चला गईल, कोई बलरामपुर चला गईल, कोई बस्ती चला गई और कोई तो इतना हद पार कई देलस कि सीधे विदेश चला गई। आज हाथ में महंगी घड़ी बा, बड़ा घर बा, लेकिन वो पुरानी यारी वाला बेफिक्र सुकून गायब बा। जितने लोग आज अपने अपने काम में बिजी बानी, अपन पुराने लंगोटिया यार के एक बार फिर फोन मिलाई और खाली इतना बोली, का हो गुरु, बहुत याद आवत बा। चलिए इसी के साथ में चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, मिला जाए फिर एक भोजपुरिया अंदाज में एक खूबसूरत सी सफर में जहाँ सिर्फ याद याद और याद रही। स्वागत है आप सभी का, इंजॉय करा जाए ई नगमा जे के फरमाइश अलबा कमल नैन के तरफ से। स्टे ट्यून्ड।

0: कैसन डाटेला हो?
1: ना डाटी हरदम दांत का जियार मिले।
0: ए सुनब
1: का सुन
0: मार हमरे कपड़ा मार हमर खजुआत न बा।

करा जाए, इंजॉय करा जाए हमनी के अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमनी के पास मबा अनुष्का के श्रावस्ती से, और अनुष्का के सुने के बाद बर्बादी हुई। स्टे ट्यून, मिला जी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद मां।

केशव धाकड़ के फरमाइश और एक बार फिर से स्वागत बा रवा लोगन के, रवा लोगन के शो माँ गोंडा मैसेज मसाला माँ रोवा लोगन के आरजे सिंपल के साथ माँ हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और स्वागत है आपके अनिल वर्मा जी सैदापुर से। स्टे ट्यून्ड, इनका कहना है कि बाबा के हुक्का और बूढ़न के ज्ञान, गोरु बछरुओं से सजल खलिहान, दोपहरी में ताश, एक सेकेंड, दोपहरी में ताश की बाजी जमी, ऐसन मस्ती के शहर में बाकमी। जी साहब, और इसी के साथ में सबलू सावंत के कहना है, हाँ तो ई सब तो होता, प्यार में केहू सांप से कटवाता, केहू नीला डम में पैक होता, सही कहता नहीं आप, जैसन जैसन जेकर साथे होता है ना, जैसन जेकर जिंदगी। अनिल वर्मा का कहना है कि हसत खेलत लोग ना कोनो कपट ना बैर, संध्या के चौपाल पे जैसे लागे ला खैर, शहर के चकाचौंध में वो बात कहाँ भाई, जो हमरा गांव के हंसी ठिठोली में समाई, अब कहाँ दिखता है साहेब। सो ये कहना है अनिल वर्मा जी का सैदापुर से। सो दोस्तों, घड़ी माँ टनाटन 7 बजे के ऊपर हो गई बा, और ये पूरा हमार सबके ज्ञान स्थली के माहौल एकदम पुरानी यादों की सौंधी सौंधी मिठास में भर गई बा। अब जरा थम के बात कहल जाओ उस स्वाद के याद के। आजकल के लड़का लोग जोमेटो और स्विगी से पिज्जा बर्गर मोमोज मंगा मंगा के खात बा, प्लेट में सजा के फोटो भी खींचत बा, लेकिन जो स्वाद माई के हाथ के गरम गरम पूरी में होला, और कद्दू के रसेदार सब्जी में, उलद के दाल में, और आम के अचार में, और माटी के चूल्हा पर धीमे धीमे आंच पर बनल उ गुड़ के खीर में रहे, वो दुनिया के कौनो 5-स्टार होटल के 56 भोग में कबो ना मिली। आप लोगों का क्या कहना है, मिली का? और याद करा जाए वो दौर जब शाम के 7 बजते ही घर आंगन में चूल्हा सुलगने लगता था, धुएं के साथ सौंध सौंध महक पूरे मोहल्ले में फैल जाता था, और माई प्यार से थोड़ा डांट के कहत रही, ए बाबू बहुत खेल ले ले, अब जाके हाथ पैर धो के चुपचाप खाए बैठ जा। ओ माटी के सोंधापन, ओ चूल्हा के तपिश, और माई के ममता के ओ दुलार। आज भी कुछ लोगन के याद आवत हुई, उनके आँख में पानियों का कलेजा माँ ठंडक भी पहुँचा देत हुई, और कुछ लोगन के तो कलेजा माँ ठंडक पहुँच गई हुई। आज भले हमनी के पास हर तरह के रेस्टोरेंट बा, लेकिन माई के हाथ के ओ एक कवर रोटी के स्वाद बरसों बाद भी जीभ पर वही कायम बा। सो आज घर के वो पुरानी मिठास, बचपन के वो बेफिक्र दिन, और अपनी माटी के याद में ऑन एयर करत बानी हम ये सब जज्बात, है ना? भले ही हमार बचपन पतना गांव मनाई बीता है, मैंने वो एहसास नहीं किया है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने अपने मम्मी से, अपने पापा से उनके बारे में सुना है, उस हिसाब से गांव बहुत अच्छा होता था। बचपन बहुत नीक होते, बहुत नी मन होते दोस्तों। सो याद के ही सुरीला कारवा मा बात होके के चाहिए शायद संगीत के, और सुनहरे दौर के वो पुरानी आवाज के, और असली जादू के कार हुआ लोगन के याद बहु दौर, जब घर घर में बड़ा सा नेशनल या फिर फिलिप्स के डेक और कैसेट प्लेयर हुआ करता, आलमारी में सजा के रखल 60 और 90 मिनट के रंग बिरंगे कैसेट, और जब रील फंस जाई तब पेंसिल या पेन डाल के बड़ी सावधानी से रील के घुमा घुमा के सेट कराना, वो कैसेट के कवर पर छपल गानों की लिस्ट पढ़ना भी अपने आप में एक अलग सुकून रहे, और शादी ब्याह के माहौल में तब पूछिए मत,
जनवासे में लाउड स्पीकर पर भिखारी ठाकुर के विदेशिया, शारदा सिन्हा जी के सोहर गीत और मोहम्मद रफी जी के सदाबहार नगमे बजना। वो गानों के जो बोल और धुन रहे ना, वो बिना कोनो ऑटो ट्यून के सीधे दिल के आर पार उतर जाते रहे। आज भले ही हाथ में स्मार्टफोन है, ब्लूटूथ स्पीकर है और कान में एयरपॉड्स आ गए बा, एक क्लिक पर लाखों गाने स्ट्रीम हो जात पाए, लेकिन वो कैसेट के हल्का सा सरसराहट, वो रिवाइंड और फॉरवर्ड करे की आवाज और गानों की गहराई आज भी हमनी के दिल पर राज करेला। संगीत तब भी सिर्फ कान से ही सुनल जात रहल दोस्तों, उकरा के महसूस भी करत जात रहल। आज ही सिर्फ हम लोग ना महसूस करत है, बल्कि पहले भी लोग संगीत के बहुत महसूस करत रहे, और आज उसी पुराने खरे और कच सच्चे दौर के याद ताजा करने के लिए पेश बा वह मिठास और वह ठेठ पुराना अंदाज से भरल एक कड़क बहुत ही खूबसूरत सा भोजपुरी गाना। सो कान में ईयरफोन लगाई और डूब जाई अपनी सुरीली याद में। मिला जाई एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी साउदी से, स्वागत है आपका। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि आज मुझे मेरी स्वर्गीय माँ की याद दिला दी। मेरी माँ मुझे बार बार पूछती थी, बेटा खाना खा ले, अभी और कितनी देर पढ़ाई करेगा। मिस यू माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पेन से कैसेट घुमा घुमा कर रील सुलझाई है ना। हम तो कहते नहीं कि हमार बचपन माँ हमके गुड़िया गुड्डा नहीं के दिया जात रहल गिफ्ट माँ, हमके तो वॉकमैन दियल जात रहल, कैसेट दिए जात रहल, काहे कि हम बचपन से ही म्यूजिक प्रेमी हैं, शायद ही गॉड गिफ्टेड है। तो हमार बड़े गद्दा हमके गिफ्ट करत रहे तो म्यूजिक से रिलेटेड चीज़, हमार पापा हमके गिफ्ट करें तो म्यूजिक से रिलेटेड चीज़, ऑर्नामेंट्स, ढोलक, मंजीरे और फिर वो बहुत सारी चीज़ें। आज भी अगर मैं उनसे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी मांगूँ, मेरे घर में सब म्यूजिक प्रेमी हैं। सो मैंने मेरा बचपन तो सच में म्यूजिक में बीता है। मुझे आई डोंट नो कि हम ना जाने थे कि गुड़िया गुड्डा कैसे खेला जाते हैं, गुड़िया किचन सेट कैसे खेला जाता है। गुड़िया के साथ में मेरी बहन पड़ोसियों के साथ हाई स्कूल तक मेरी बहन ने खेला है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उसमें नहीं था इंटरेस्ट, मुझे म्यूजिक में था। मैं डांस में, मैं म्यूजिक में, हर एक पार्टी, हर एक महफिल मेरे लिए तभी अच्छी है अगर वहाँ म्यूजिक है। अगर उस जगह पे म्यूजिक नहीं है तो वो पार्टी मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: चाची वही लो चाचा का फोन आयल बा।
1: चाचा के फोन। हेलो गोर लगतानी
2: पैसा बाड़ू
1: हमार चोरी आपन बताई।
2: अरे हम ठीक बने आपन बताओ ना कैसे बाड़ू
1: कितना दिन करला आज ही बताओ तो हमार अतना दिन से फोन काई ना करत रहनी
3: का करबू कंपनी में अतना काम बाकी एक दिन फुर्सत देखे मिलत के हम घरे फोन करी बाकी घबरा मत हम तीन दिन बाद घरे आवत हनी। हेलो हेलो अरे बोलत काहे नहीं खूब अरे कुछ बोला। हेलो

हफ्ते को फिर से स्वागत बा आप सबके रवा लोगन के शो गुंडा मैसेज मसाला मा रवा लोगन के आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ मा और आप सुनत हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गुंडा शहर के धड़कन। सो का हाल चाल बा कैसन लाग आप सबके ई गाना आप लोग हमके चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताई सकत हैं। फिलहाल दोस्तों 7:24 हो चुका है, आप लोगन से विदा ले के समय धीरे धीरे नजदीक आवत है और ये समय तो उन लोगों के याद सबसे बेसी आवत हुई जो अपन गांव घर खेत खलियान और बूढ़े माँ बाप के छोड़ के परदेश में नौकरी करत बाड़न। ईसा जुन गाना इतना हम लोग सुन लेने गुलरी के फूल और राह चलीला ता टोकीला सुनार सैया जी और एगो चुमो ले जा गाल में संग दिलो ले जा रुमाल में, है ना, सब बिछड़न का बहुत खूबसूरत नगमा। हमार लोग के कुछ मित्र लोग होंगे, कुछ चाचा होंगे, कुछ चाची होंगी, कुछ भैया हुई हैं, कुछ भाभी हुई हैं, क्यों ना क्यों नौकरी करत बाड़न, कोई प्रयागराज, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई गुजरात या दुबई में बैठल बा। हमनी के गोंडा और पूरे यूपी बिहार के लड़का लोग ये सब कहीं ना कहीं घूमत बानी खोवत हैं। जब दिन भर के थका हारा शाम के अपने छोटे से कमरे पर लौटे लाना ता ओकरा अपन गांव के पीपल वाला चौपाल, सरयू जी के पक्का घाट और अपने घर के आंगन के तुलसी का पौधा बहुत याद आवेला। परदेश में बैंक बैलेंस भले ही बढ़ जाला लेकिन आपन माटी के वो सौंधी खुशबू, अपने का वो बेमतलब का प्यार दुनिया के कोनो शहर में ना मिले। जब गांव से फोन आवेला और माई पूछे ली बाबू खेले कि ना, तब परदेश में बैठल लड़का अपना आँख के आंसू छुपा के कहेला, हाँ माई बहुत बढ़िया से खा ले ली। ये दर्द सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकेला। जितने भी लोग आज गोंडा से दूर

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत बा रवा लोगन के शो गोंडा मैसेज में सालामा रवा लोगन के आरजे सिंपल नॉर्थ सिंपल के साथ में। और आप सुनो थे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर के धड़कन। तो शो दोस्तों अब अपने एकदम आखिरी और सबसे भावुक पड़ाव की तरफ बढ़ रहल बा। और ये यादों का सुरीला सिलसिला अभी बिल्कुल भी थमे वाला नहीं खेबा। आज के ये इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और 2 सेकंड वाले इमोजी रिप्लाई के जमाने में क्या रउआ सबके वो डाकिया और खत लाने वाले के सुनहरा दौर याद बा, जब खाकी वर्दी पहने डाकिया दादा साइकिल की घंटी टुन टुन बजावत गली में आवत रहे, तब पूरा मोहल्ला आस लगा के अपने अपने किवाड़, अपने अपने खिड़की, अपने अपने चबूतरे पर खड़ा हो जात रहे कि काहे हमार कोनो खत ना हका। वो पोस्ट कार्ड पीले वाले इनलैंड लेटर और लिफाफे पर नीली लाल स्याही से लिखल एक एक शब्द में जो जज्बात, जो गहरा सब्र और जो इंतजार का असली मजा रहल ना, वो आज की इंस्टेंट मैसेज, ऑनलाइन स्टेटस, ब्लू टिक और लास्ट सीन के भाग दौड़ में कहीं खो गई बा। वो लिफाफा फाड़े के उत्सुकता, वो खत के सहेज के अलमारी या किताब के बीच में छुपा के रखे के क्यूरियोसिटी, और बार बार रात में चिराग के रोशनी में चुपके से पढ़ना और ओकरा में से आवे वाली कागज और स्याही की भीनी भीनी महक, ओह माय गॉड, अपने आप में एक अलग ही एहसास है ना, जो सीधे दिल के गहराइयों में उतर जात रहल और हफ्तों तक दिल को सुकून देत रहल। अब समय के तो एकदम पता ही ना चलल दोस्तों, और समय एकदम से नज़दीक आ गए भाई आप लोगन के फरमाइशी प्रोग्राम के। सो आप लोगन के फरमाइशी प्रोग्राम सीधे 7:45 पर शुरू होके के है, लेकिन आप लोगन के फरमाइशी प्रोग्राम में आप लोगन के आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। उसके बाद में सीधे 8 बजे से आप लोग के फरमाइशी प्रोग्राम को हैंडल करेंगे हमारे आरजे मनु, हम सबके आरजे मनु। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड इम्तियाज अहमद गोंडा से। सो ए थर्सडे स्पेशल शाम में ए सुरीला सफर कब पंख लगा के उड़ गई हमके तो नहीं के बुझल। घड़ी टिक टिक करके इशारा कर रही बाकी अब ऑन एयर स्टूडियो से विदा लेवे कि इनफैक्ट अभी फिलहाल गोंडा मैसेज मसाला से विदा लेवे के समय आ गईल बा, और माइक बंद करे के समय धीरे धीरे एकदम से नजदीक आ गईल बा। आज बचपन के बेफिक्र खेल से लेके माई के हाथ के गरम गरम स्वाद, स्कूल कॉलेज का पहला मासूम प्यार, पुरानी चिट्ठियां, कैसेट का दौर और अपने गांव जवार की सौंधी यादों में रवा सबके साथ तैर के एकदम कलेजा का ठंडा ठंडक पहुंच गईल बा। सच ही कहल गईल बा कि याद ही त हवे जे हमने के ए भाग दौड़ तनाव भरी जिंदगी में ऐसा इंसान बना के रखेला। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और सुकून वाली मुस्कान आवेला। मन तो करत बा कि अभी स्टूडियो के कुर्सी पर बैठ के और 2-3 घंटा बकैती काटी, लेकिन बिल्कुल भी भोजपुरी माँ ना, या तो अवधि माँ या तो हिंदी माँ। तो रउआ सबके ढेर सारी पुरानी बातें, किस्से, कहानियाँ ये सब सुन के और हमार बकैती सुन के रउआ लोगन के बहुत आनंद आवा हुई फॉर श्योर। तो अब वक्त आ गईल बा विदा लेके। तो अभी के सा कल फ्राइडे हवे और गोंडा वालों आप लोगन के बतावा चाहते हैं कि कल शायद आपकी आरजे बिना ही रहेंगे आपके गोंडा मैसेज प्रोग्राम, गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में, और उसके बाद कुछ दिनों तक आप सभी को आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को अपने गोंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम में झेलना पड़ेगा। फिलहाल आज जितना टफ था उतना टफ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज यू नो ना माई भोजपुरी। सो चलते हैं, अभी विदा लेना चाहूंगी आपके गुंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम से। तब तक खातिर हंसत रहिए, मुस्कुरात रहिए और पुरानी खूबसूरत यादों को अपने दिल में, दिल के संदूक में हमेशा खातिर सहेज के रख लें। काहे कि ये सब कुछ चला जाए, जो धन है, दौलत है, लोग हैं, इंसान है, रिश्ता है, लेकिन ये याद कहीं नहीं जाने वाला दोस्त, मेरे मित्र।
तो इन यादों को सहेज के रखो अपनी दिल की संदूक में, और अपनी दिल की मतलब अपनी दिल की मिठास को बनाए रखो, भले ही बोली की मिठास को ना बना के रख पाओ। कहे कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है दोस्तों बोली की मिठास को बना के रखना। मेरा दिल भले ही कितना भी मीठा हो, चाशनी हो, भाई चीटियाँ लग रही हो उसमें, लेकिन जुबान मीठी हो ही नहीं पाती है। सो अभी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को दीजिए इजाज़त। गुंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम से मिलते हैं कल। फिलहाल फरमाइशी का समय आ चुका है, अपने फरमाइशी गीतों को चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। आप लोगों के कुछ गीतों को मैं प्ले करके जरूर जाऊंगी। स्टे ट्यून, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। बाय बाय, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल।

सो नमस्कार, राधा वैन सो शकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, जिन लोगों ने अभी तक फरमाइशी की कटरी को नहीं खोली है, खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। भले ही फरमाइशी महफिल आपकी पूरी की पूरी आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल नहीं होस्ट करेगी, लेकिन इस महफिल का आगाज तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंपल करेगी, हो इज नॉट सो सिंपल। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सोनिया तिवारी, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, नवीन राजपूत एमपी से, नागेश्वर धाकर जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, और इसी के साथ में महेंद्र का कहना है कि इश्क की राह में अब ये कैसा मुकाम आया है, इश्क की राह में अब ये कैसा मुकाम आया है, इन लबों पर हर घड़ी बस तेरा नाम आया है, खो गई नींद मेरी कहीं तेरी उन राहों में, खो गई नींद मेरी कहीं तेरी उन राहों में, चैन खोकर भी देखो दिल को कितना आराम आया है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेश त्रिपाठी एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश है महेंद्र की, और उनको सुनना है गाना करती हूँ मैं तो प्यार सिर्फ संडे को, तुम करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बहुत ही खूबसूरत सरंगमा महेंद्र की फरमाइश पर अभी फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गुंडा से, उनको सुनना है गाना। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है तुमसे दिल लगाने की।

जाने की सजा है। हमने एंजॉय किया राजा हिंदुस्तानी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। शशि सिंह जी आपका स्वागत है, प्रीति शुक्ला बहराइच से आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। रौनक तिवारी फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना गंगा जैसा मन तेरा। तो एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज और कविता जी की आवाज में जंगबाज का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गीत की तरफ अपनी फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना तेरी याद याद याद। सो एंजॉय करेंगे गुलाम अली जी का ये नगमा। इसी के साथ में दोस्तों मैं लेना चाहूंगी आप सभी से अलविदा। अगले आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे हमारे आरजे मनु। फिलहाल अलविदा लेना चाहूंगी दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट तो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है, जिसे अपना समझा वही बेगाना हो गया, मेरा हंसता हुआ दिल आज वीराना हो गया, वो छोड़ गया मुझे बिना कोई वजह बताए, और मेरा हर ख्वाब अधूरा सा अफसाना हो गया। इसी के साथ में नवीन राजपूत का कहना है कि एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें हों पूरी आपकी और आप मुस्कुराओ दिलो जान से। सो लेना चाहूंगी अब अलविदा। बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश, और अनुष्का ने डेडिकेट किया इस गाने को अपनी आरजे आकांक्षा को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और वास्तव में जब सावन का मौसम आता है तो वास्तव में बहनें इंतज़ार करती हैं अपने मायके का, इंतज़ार करती हैं राखी का, इंतज़ार करती हैं उन झूलों का जो उन्होंने बचपन में झूले थे। और बहुत ही भावात्मक गीत ये भाई आपने हमको दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब बढ़ते हैं श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश, कितना आसान है कहना कि भूल जाओ फिल्म दोस्ताना का, ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और मोहब्बत में एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पर इंसान चाहता है कि वो खुद का ही हो जाए, और वो खुद का नहीं रह पाता तो कहता है सामने वाले से, हमको हम ही से चुरा लो। जी हाँ, और रौनक त्वरी जी की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, हमको हम ही से चुरा लो, ये है मोहब्बत की इम्तिहान।
1: हम जीत गए।

0: जी हाँ, मतलब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और ये है सोनिया जी की। और ये भाई कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि इंसान खुद कहता है कि पूछो ज़्यादा पूछो मुझे क्या हुआ है। जी हाँ, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये प्यारा सा गीत, करिश्मा कपूर है पर्दे पर, और पूछो ज़्यादा पूछो मुझे क्या हुआ है।
1: मुझे क्या हुआ है,

जी हाँ, दिल लगाने की सजा यही होती है। अब चलते हैं भाई, जिनके नयन कमल के जब समान जैसे हैं और गीत बहुत पैदा भेजा उन्होंने, दरवाजा खुला छोड़ा ही नींद के बाद। जी हाँ, तो फिलहाल चलिए नींद से जगाते हैं अपने।

जी हाँ भाई, और अब अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। निब्बल भाई ने हमको फोन किया है, गोंडा का भाई निब्बल भाई, और गाना बहुत शानदार भेजा है। पर्दे पर अमिताभ बच्चन है, बारिश का मौसम है, और गीत भेजा है आज रपट जाए तो हमें न बिठाइयो। जी हाँ, आइए सुनते हैं निब्बल भाई की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

भाई क्या गाना है भाई। और अब चलते हैं भाई, जो बात अपनी बहुत धाकड़ अंदाज में करते हैं, नाम के भी आगे लगा है नागेश्वर जी के साथ धाकड़। और किसी को डेडिकेट नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिलहाल बता रहे हैं कि तो मेरे लिए दुनिया में आई है। जी हाँ, कौन है जो आपके लिए आई है श्रीमान जी? जरा चैट बॉक्स में हमें भी तो बताइए आप फिलहाल।

जी हाँ, सावन का महीना और इसके पश्चात मुरली भी बज गई। वाह भाई, धन्यवाद आपको नागेश्वर धाकर जी बहुत ही प्यासा गीत देने के लिए। चलते हैं भैया राजू सलमानी जी की तरफ, और इनका जिगर कोई लेकर चला गया है सावन के महीने में, तो सैया ले गई जिया तोरी पहली नज़र। जी हाँ, पहली नज़र में जिया दे दिया राजू सलमानी साहब ने।

0: जी हाँ, बढ़ते हैं भाई। पहली नजर में जिगर ले गई और अब निश्रा ऑप्टिकल जी की फरमाइश है, माहिया माहिया, बहुत ही प्यारा गीत।
1: I'm so sorry.
2: अरे मैं कब से रुका हूँ,
1: बदली करो ना। चले

ओर अपनी इस शाम में देखे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ दीप्ति पाठक निधीश को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
5: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
6: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
7: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उससे को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
9: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
1: एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके ओके, चल ठीक है,
0: प्लीज।

जी हाँ भाई, श्रीमती रेणु तिवारी जी की फरमाइश पर हमने गीत सुना सजना है मुझे सजना के लिए, और अब राजू जी की फरमाइश पर अल्लाह अल्लाह की कसम बहुत प्यारा गीत हम इंजॉय करें।

प्यार हो गया और इसी मोहब्बत के साथ तो इम्तियाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर के, और ये जब भी आते हैं तो शानदार गीत लेकर के आते हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत। तो आइए भाई इम्तियाज अहमद की फरमाइश को करते हैं पूरा इस गीत के माध्यम से।

जी हाँ, सावन का महीना है। एक बहन ने बुलाया है अपने मायके और दूसरी बहन कह रही है जी नहीं, बरसात का मौसम है, उस बरसात के मौसम में क्या खास है। जी हाँ, आशु मिश्रा जी की फरमाइश जो हमको सुनते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, आइए उनकी फरमाइश को करते हैं पूरा। अमल नहीं करना है, सिर्फ गीत सुनना है।

यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा गीत ये रूप कुमार राठौर और कुमार सानू की आवाज़ में। अब चलते हैं आज की अपनी आखिरी फरमाइश की तरफ। फिल्म उपकार, बहुत ही प्यारा सा गीत, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या पर्दे पर हैं, प्राण जी के साथ मनोज कुमार और आवाज़ है मन्ना डे की। जी हाँ, मनोज कुमार एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हृदय में लगता है कोई सुपरस्टार, और मनोज नाम के जितने लोग होते हैं वो सामान्यतया सुपरस्टार ही होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल, हर शाम 9:15 से।

0: की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9861-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थल 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप आवाज़ मिला दें मेरी आवाज़ के साथ। जी हाँ, आशु मिश्रा जी लखनऊ से हैं। गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या, चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं आपको। और भाई गीत नहीं, अगर आप कोई गज़ल सुनना चाहें तो ज़रूर सुना सकते हैं हम आशु मिश्रा जी, और गज़ल आप कोई कहें तो हम आपको बिल्कुल सुना देंगे, लेकिन गीत के लिए तो अभी तक का समय था मेरे पास, और अब जो कार्यक्रम आगे बढ़ता है वो गज़ल का बढ़ता है, तो आप अपनी कोई गज़ल की फरमाइश करें और उसे ज़रूर पूरी करेंगे हम। मेरे पास सविता शास्त्री जी हैं, शुभ संध्या सर जी, चरण स्पर्श करते हैं आपको, और बिल्कुल अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गज़ल भी सुना दीजिएगा, बिल्कुल सुनाएंगे, और आप जो चाहेंगी वो सुनाएंगे। आप बताइए आपको अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की कौन सी गज़ल सुननी है, आप आदेश कीजिए और हम आपके आदेश का पालन करेंगे। फिलहाल आज जिस दानिश्वर के बारे में, जिस कलमकार के बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में आपसे बहुत ढेर सारी बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपसे राबता कायम करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत मिश्रा जी, प्रणाम गुरु जी। जी और आइए अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं गज़लों की दुनिया में। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार, और शुरुआत करते हैं आज की जी गज़लों के सरताज कहे जाने वाले, अंदाज आपको हो चुका होगा जी, जिन्होंने बहुत सारी गज़लें गाईं और अपना एक मकाम बनाया, हम सभी उनको गुलाम अली के नाम से जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की गुलाम अली साहब के साथ, और इसके बाद फिर भी चलते हैं आपको गज़लों की दुनिया में। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। क्या मतलब, खूबसूरत सी गजल, और इस गजल को गुलाम अली साहब ने जिस अंदाज में गाया वो अंदाज बड़ा शानदार है। मैं साथ अजीत मिश्रा जी हैं, प्रणाम गुरु जी, आपको भी प्रणाम करते हैं, आप स्वस्थ रहें। और मुझसे मिलाती हो तुम शर्मा ही जाती हो, इसी को प्यार कहते हैं। क्या बात है, ये गजल। और एक गजल हमने भी उनकी चुनी थी, बहरहाल हो सकता है आपको वो भी पसंद आए। और कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होंगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बड़ी खूबसूरत सी पंक्तियां ये आशु मिश्रा जी ने लिखी। और आज जिस कवि की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम लेकर आए हैं आपकी महफिल में, उनका नाम है राजेश रेड्डी। एक ऐसा दानिश्वर कलमकार जो, जिनकी गज़लें सिर्फ महबूब से गुफ्तगु ही नहीं करती, वो ज़िंदगी के मसाइल को, जो हमारे सामने मसले हैं, वो उन मसलों को लेकर खड़े होते हैं। वो घर आंगन की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, परिवार के मुखिया की बात करते हैं, मुखिया के दर्द की बात करते हैं। मुझे याद आती है उनकी वो पंक्ति, जब कोविड का दौर था, तो हमारे ऐसे बहुत से साथी मित्र होंगे जो अपने घर पर जाते होंगे, तो शाम को उनके हाथ में कुछ ना कुछ होता होगा। घर पर जब शाम को जाते हैं तो बच्चों को इंतज़ार रहता है कि पापा कुछ लेकर आएंगे, बड़ी उम्मीद के साथ। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो एक दौर ऐसा आया जिस दौर में लोगों के पास शायद उतने ही पैसे थे जितने में वो अपना घर चला पाते। छोटे बच्चों का सामान लाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो पंक्ति याद आई मुझको कि रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूं मैं, रोज खाली हाथ जब घर लौट कर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो ये दर्द समझते होंगे। और इत्तेफाक ये है, अजीब इत्तेफाक ये है मित्रों, कि परिवार का मुखिया अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सकता। वसीम बरेली साहब ने लिखा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे ही रह जाते हैं दुनिया के सवालात, किसके लिए जिंदा हूं बता भी नहीं सकता। तो जिंदगी के में जो गम है वो, किसी शायर ने कहा था कि मेरे महबूब वो मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो मोहब्बत के अलावा भी जब उम्र थोड़ी सी बड़ी होती है, जिम्मेदारियां आती हैं, तो एहसास होता है कि मोहब्बत के अलावा भी गम होते हैं। राजेश रेड्डी साहब लिखते हैं कि जाने कितनी उड़ान बाकी है। हम सभी के जीवन का ये सच है। हम लोग सोचते हैं चलो आज अच्छा हो जाएगा, फिर कल अच्छा हो जाएगा, ये करने के बाद अच्छा हो जाएगा, एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, वो दिन कभी आता नहीं है जब सब कुछ ठीक हो जाए।
मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी इंसान का सब कुछ तभी ठीक हो सकता है जब वो चार कंधे पर हो। उसके पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सिर्फ एक उम्मीद है जो हम लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। कुछ ना कुछ लगा रहता है लाइफ में। कवि ने इंसान की बात की परिंदों के माध्यम से कि जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। परिंदा है बेचारा, वो भी थकता होगा, बूढ़ा होता होगा, पंख उसके थकते होंगे, एनर्जी कम होती होगी, लेकिन जब तक परिंदा है तब तक उसको उड़ना है। हमारे महफिल में पता नहीं कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने जिंदगी भर कमाई की और 70 साल की उम्र में भी मैं देखता हूँ कि बेचारे रिक्शा खींच रहे हैं, जिंदगी को जी रहे हैं। जाने कितनी उड़ान बाकी है, सोचते हैं अब ठीक, तब तक एक को ठीक कीजिए, कहीं कुछ बिगड़ जाता है, कहीं कुछ बिगड़ जाता है। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जितनी जितनी बटनी थी बट चुकी है जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है जिसमें अमनो अमान बाकी है। और फिर पंक्ति आ रही है, संभालिएगा कि इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। इंसान सोच लो ये मुश्किल पार कर ले जाए, दो बेटियां हैं इनकी शादी हो जाए तो तीसरी वाली का भी कर लेंगे, तब तक उसकी शादी के पहले फिर कोई आकर खड़ा हो जाता है, ये एक नया मसला आ गया, कहीं घर का मसला, कहीं समाज का मसला। यही है साहब, एक इम्तिहान को पास कीजिए, दूसरा इम्तिहान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे मतलब काट दिए जाएंगे, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुँह में जुबान बाकी है। बोलिए मत, तमाशा है, बने देखते रहिए, जमाना है। अगर इस ज़माने में आप बोलेंगे तो हो सकता है। हाथ से इंसान जब हुनर दिखाता है तो कभी कभी हाथ काट भी लिए जाते हैं, इसलिए हुनर है तो ज़रूरी नहीं कि उसे दिखाइए। शायर ने कहा था, बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। उनकी पंक्ति थी कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। साहब ऐसी ही जिंदगी है। कुछ आशीष लिखती हैं कि बहुत कदम साथ थे, दिल में जज्बात थे, वो पागल था, उड़ता हुआ बादल था, किसी की तलाश में भटक रहा था, तन्हाइयों से दूर उसे कहीं जाना था। बिल्कुल अजीत मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई हमारे साथ बने रहने के लिए। और जी, जब बात यहाँ पर आ चुकी है तो ऐसा हो जाता। तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल रफ़ी साहब की आवाज़ में याद आ गई, चलिए आपको सुनाते हैं। क्योंकि हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में जो हासिल है वो केवल हसरत है, इच्छाएँ। हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं वो मिला नहीं, ये हुआ नहीं वो रहा नहीं। हर इंसान के जीवन का यही चार में से कोई ना कोई सच है, ये कर नहीं पाए वो हो नहीं पाया, वो मिल नहीं पाया और वो मिल गया लेकिन साथ में रह नहीं पाया। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। अनूप मिश्रा जी, शुभ संध्या आपको। और अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता, क्या बात है। आइए, जब बात ये हुई है कि इन्हीं चार चीज़ों में फंसे हुए हैं हम, तो एक प्यारी सी गज़ल मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ में याद आ रही है, क्यों ना आपको सुनाएं वो प्यारी सी गज़ल। हर इंसान की जिंदगी में यही है, काश ये हो गया होता, काश ये हो गया होता। अब देखिए रफ़ी साहब भी कहते हैं,
काश ये हो गया होता। क्या हो गया होता? हमसे बेहतर है रफ़ी जी के साथ हम चलें और इस हो गया होता को पूरा करें।

जी भाई अनूप मिश्रा जी लिखते हैं, हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है हुजूर, सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। भाई क्या पंक्तियां हैं, यूं तो बहुत से रास्ते मुझ तक पहुंचने के, राहे मोहब्बत से आना फासला कम पड़ेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। और अब चलते हैं राजेश रेड्डी साहब की तरफ। लिखा उन्होंने कि घर से निकले थे हौसला करके, घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। मतलब बहुत हौसला करके निकले, लेकिन जब दुनिया का हाल देखा तो कहा दे बस बस हो गया। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके, दर्दे दिल पाओगे वफा करके, दर्दे दिल पाओगे वफा करके, हमने देखा है तजुर्बा करके। अगर आप वफा करेंगे तो इसके बदले आपको दर्द ही मिलेगा। दर्दे दिल पाओगे वफा करके, हमने देखा है तजुर्बा करके, लोग सुनते रहे दिमाग की बात। ये दुनिया है, इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो दिल से सोचते हैं और एक वो जो दिमाग से सोचते हैं। और एक अच्छा इंसान तो दिल से ही सोचता है साहब, रिश्तों में दिमाग कहाँ लगाया जाता, वो तो शतरंज में लगाया जाता है। लेकिन आजकल की दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि लोग रिश्ते भी इसलिए बना रहे हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए रिश्ते बनाए जा रहे हैं। नहीं साहब, रिश्ते बनाइए और उसमें स्वार्थ ना हो तो गजब का रिश्ता बनता है। किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए, क्योंकि रिश्ते हम दिल से नहीं बना रहे, दिमाग से बना रहे। लोग सुनते रहे दिमाग की बात, हम चले दिल को रहनुमा करके, किसने पाया सुकून दुनिया में। अरे कोई है तो बताइए भाई, किसने पाया सुकून दुनिया में जिंदगानी का सामना करके। ऐसा कौन है जो जिंदगी का सामना कर रहा है और सुकून में है, या तो वो पागल है और या नशे में है जो कहता है कि हम सुकून में है। किसने पाया सुकून दुनिया में जिंदगी का सामना करके, अरे जिंदगी तो कभी नहीं आई, जिंदगी तो कभी नहीं आई, मौत आई जरा जरा करके। हम अपनी जिंदगी का जो भी दिन गुजारते हैं, यूं समझिए कि मृत्यु की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जिंदगी में तो कुछ देखा ही नहीं, मौत आई जरा जरा करके। और ये दुनिया है साहब, और इस दुनिया पर मुझे फिर एक प्यारी सी गजल याद आ गई। देखिए, जब दर्द हो दुनिया में तो बहुत प्यारा एक दर्द है, और दर्द का उत्तर दर्द ही देगा। दो गजलें हैं, पहले आपको रफ़ी जी की गजल सुनाते हैं दुनिया का दर्द, इसके बाद उसका उत्तर अगर कोई दे सकता है तो लता जी दे सकती हैं। दो गजलें आपको सुनाते हैं, एक में दर्द है और दूसरे में उस दर्द का उत्तर है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे काम्बो पैक पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो बताइएगा चैट बॉक्स में कि हमने पहली गजल के बाद जो दूसरी गजल बजाई वो उसका उत्तर था या नहीं। अगर आपको लगेगा कि ठीक है तो हमको भी जरा सूचित कीजिएगा, प्रतीक्षा करेंगे हम आपके चैट बॉक्स की। फिलहाल चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और फिर उत्तर की ओर।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि भाई आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। अजीत मिश्रा लिखते हैं, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। और दिया चिराग बुझाती है आफ्ताब नहीं, जो हवा होती है वो चिराग को बुझाती है, हवा चिराग बुझाती है आफ्ताब नहीं, सूरज को कौन बुझा पाता है साहब। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और सत्या जी लिखती हैं, वाह क्या बात है, पहले ही जीवन से निराश हुए व्यक्ति की प्रार्थना दूसरे जीवन में आशा का संचार करते हैं अपनी मोहब्बत। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपनी मोहब्बत से जीवन में आशा का संचार करते हुए जीवन के प्रति उत्साह बढ़ाना। नागेश सुधाकर जी, आई एम बैक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्या कम्बिनेशन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपसे उम्मीद थी कि हमने ये दो गज़लें चुनी थी। और मुझ मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर लता जी का कोई तोड़ है तो वो रफ़ी साहब के पास है, और रफ़ी जी का कोई तोड़ है तो वो लता जी हैं। ये दोनों भाई बहन हैं भाई, वो रक्षाबंधन बंधवाते थे। जी हाँ, आज की शाम हमने उन दोनों के नाम करी। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो अब शनिवार को आपसे पुनः मिलेंगे आपके इसी कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था, मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी विकल्प। आरती उसका पहला प्यार थी, उसकी कॉलेज लाइफ का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी उसकी और आरती की। वो दोनों कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में मिले और ऐसे मिले कि परफेक्ट कपल के रूप में कॉलेज में मशहूर हो गए। वो आरती से बहुत प्यार करता था, उनके प्यार को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो उसे आरती से दूर कर रहा था। उसकी और आरती की नौकरी लग चुकी थी। आरती के पापा के दोस्त का बेटा विहान भी आरती की कंपनी में ही काम करता था। वो हाल ही में कनाडा से यहाँ आया था। पुनीत उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी नजरें भी साफ बताती थीं कि उसकी सोच भी पुनीत के प्रति कुछ वैसी ही है। देखो आरती, मुझे तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा विहान अच्छा नहीं लगता, एक दिन पुनीत ने आरती से साफ साफ कह दिया। तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है, आरती ने उससे पूछा। उसमें पसंद करने लायक भी तो कुछ खास नहीं है आरती, पुनीत ने सीधा सपाट बात कह दी थी। तो तुम्हें उसे पसंद करके क्या करना है, ये कहकर आरती हंस दी थी। पुनीत के मना करने का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो एक दिन वो उसे बिना बताए विहान के साथ फिल्म देखने चली गई और ये बात पुनीत को उसकी बहन से पता चली। पुनीत को छोटी छोटी

बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। शायद इसीलिए उसने ये बात उससे छुपाई होगी। उस दिन उसकी और आरती की बहुत लड़ाई हुई और पुनीत ने गुस्से में आकर उससे साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे और अपने उस दोस्त के बीच किसी एक को चुन लो। पुनीत, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने मुझ पर अभी से अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। मेरी भी खुद की अपनी लाइफ है और खुद के दोस्त हैं जिन्हें मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बदलूंगी। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उसके और विहान में से विहान की तरफदारी करके पुनीत को एहसास करा दिया था कि वो विहान से अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। आरती और पुनीत हम उम्र थे। उसका और पुनीत का व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा था। पुनीत को लगता था कि अगले दिन आरती खुद फोन करके माफी मांगेगी और जो हुआ उसको भूल जाने को कहेगी, लेकिन वो गलत था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है विकल्प। अब तक आपने सुना आरती और पुनीत एक दूसरे के बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि वो दोनों साथ में अपने कॉलेज में परफेक्ट कपल के नाम से मशहूर थे। लेकिन फिर एक दिन आरती की जिंदगी में विहान आया और उसकी नजदीकियां पुनीत को जरा रास नहीं आईं। फिर एक दिन पुनीत ने आरती से साफ साफ कह दिया कि वो उन दोनों के बीच में से किसी एक को चुन ले। अब आगे आरती के उस दिन के बाद से विहान से नजदीकियां और बढ़ गईं। पुनीत ने भी अपने ईगो को आगे रखते हुए कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसको लगता था कि पुनीत टिपिकल मर्दों की तरह उस पर अपना फैसला थोप रहा है, लेकिन पुनीत उसके लिए अच्छा सोचता था और वो नहीं चाहता था कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वो उसके साथ रहें। एक दिन आरती की सहेली ने पुनीत को बताया कि उसने साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वो उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। आरती और पुनीत के रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। वो उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और वो कुछ समझना भी नहीं चाहती थी। पुनीत को बस हमेशा ये उम्मीद रहती कि अब उसका फोन आएगा और एक माफी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ चीजें बनने के लिए ही बिगड़ती हैं और कुछ बिगड़ने के लिए बनती हैं। पुनीत और आरती की कहानी तो शायद बिगड़ने के लिए ही बनी थी। 5 साल का प्यार और साथ सब कुछ खत्म सा हो गया था। पुनीत के घर में अब उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ उसे रोज नए नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन पुनीत हर बार कोई ना कोई बहाना या कमी निकाल कर मना कर देता था। पुनीत भीड़ में भी अकेलापन महसूस करता था। सबसे ज्यादा तकलीफ जीवन के वो पल देते हैं जो एक समय में सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वो जितने मीठे पल होते हैं उनकी यादें उतनी ही कड़वी होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। पुनीत के साथ आज भी बस आरती की यादें थीं। उसे क्या पता था कि वो उस दिन किसी से मिलने वाला है। वो उस दिन स्नेहा से मिला। उन दोनों की मुलाकात पुनीत के दोस्त की शादी में हुई थी। स्नेहा आरती की चचेरी बहन थी। साधारण नैन नक्श वाली स्नेहा शादी में बिना किसी की परवाह किए सबसे ज्यादा डांस कर रही थी। 21-22 साल की वो लड़की हरकतों से एकदम 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी में जगह है? पुनीत के जिस दोस्त की शादी थी उसकी मम्मी ने आकर पुनीत से पूछा। हाँ आंटी, क्यों? पुनीत ने पूछा। तो ठीक है, कुछ लड़कियों को तुम अपनी गाड़ी में लेते जाना प्लीज। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं। तुम घर के हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा। जी आंटी, पुनीत ने सहर्ष हामी भर दी। सजी धजी 3 लड़कियां उसकी कार के पीछे की सीट पर आकर बैठ गईं। एक उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है विकल्प। अब तक आपने सुना पुनीत और आरती एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती के 5 साल बाद आरती की जिंदगी में विहान आया। आरती और विहान की नजदीकियां पुनीत को पसंद नहीं आईं, और जब उसने आरती को मना करना चाहा, तो आरती को ऐसा लगा कि पुनीत उसको अपने दबाव में रखना चाहता है, और फिर उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब आगे उसके ये कहने के पहले कि सीट बेल्ट बांध लो, उसने बड़ी फुर्ती से बेल्ट बांध ली और वो सब अपनी बातों में मशगूल हो गईं। पुनीत को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस कार का ड्राइवर हो, जिससे बात करने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं थी। तभी स्नेहा ने उससे पूछा, आप रजत भैया के दोस्त हैं ना?
1: जी।
0: पुनीत ने बस इतना ही उत्तर दिया। ना तो इससे ज्यादा उनकी कोई बात हुई और ना ही पुनीत को कोई दिलचस्पी थी। आजकल के हाईटेक युग में जिससे आप आमने सामने बात करने से हिचकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है जो आज के समय में काफी कारगर है, और वो है चैटिंग। स्नेहा ने पुनीत को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और पुनीत ने एक्सेप्ट कर ली। वो दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में स्नेहा ने उसे बताया कि उसे अपने कॉलेज के सेमिनार में एक प्रोजेक्ट बनाना है। पुनीत ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इतने सालों बाद पुनीत ने उसके लिए दोबारा पढ़ाई की उसका प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। कभी वो पुनीत के घर आ जाया करती थी तो कभी पुनीत उसके घर चला जाता। दरअसल वो अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से रजत के घर ही रहती थी। जब भी वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आती तो बस बोलती ही जाती। पुनीत से बिल्कुल अलग थी वो। एक दिन बातों ही बातों में स्नेहा ने उससे पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? पुनीत उसको ना कहकर बात वहीं पर खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसने उसे अपने और आरती के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, स्नेहा ने दुख जताते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। क्या तब से आप दोनों की एक बार भी बात नहीं हुई? स्नेहा ने पूछा। पुनीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, और अब करनी भी नहीं है। ये कहकर वो दोनों फिर से प्रोजेक्ट बनाने में लग गए। उस दिन जब स्नेहा आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आते ही ना उसने कोई जोर से आवाज लगाकर डराया, ना हंसी, कोई चूहलबाजी नहीं। पुनीत ने पूछा, सब ठीक तो है ना? वो बोली, कुछ बताना था आपको। आप मुझे बताना कि सही है या गलत? वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे तो पुनीत ने उससे कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो। स्नेहा ने धीरे से कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है विकल्प। अब तक आपने सुना पुनीत और आरती का ब्रेकअप हो गया क्योंकि आरती विहान के करीब होती जा रही थी और पुनीत के ऑब्जेक्शन करने पर उसको लगा कि वो उस पे हुक्म चलाना चाहता है। फिर पुनीत की जिंदगी में स्नेहा आई। अब आगे पुनीत ने कहा, कौन है वो और क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? स्नेहा ने कहा, पता नहीं। ओह, तुम्हारे ही कॉलेज का है क्या? पुनीत ने पूछा। नहीं, स्नेहा ने बस छोटा सा जवाब दिया। वो मेरा दोस्त है और मुझसे 7 साल बड़ा है। उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो मेरे बारे में क्या सोचता है पता नहीं, लेकिन जब वो मेरी मदद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम, ये कहकर वो रुक गई। उसका नाम? स्नेहा ने पुनीत की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत मजा आ रहा है ना आपको, सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं, और वैसे भी इतने बेवकूफ आप हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। पुनीत बहुत जोर से हंसने लगा। तो स्नेहा बोली, अब क्या फिल्मों की तरह प्रपोज करना पड़ेगा? पुनीत ने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे उम्र में 7 साल बड़ा हूं और मेरे जीवन में तुमसे पहले कोई और थी तब भी। हाँ, और वैसे भी प्यार में उम्र, अतीत, ये सब कुछ मायने नहीं रखते, स्नेहा बोली। पुनीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। अब पुनीत के जीवन में भी कोई आ गया था जो उसका बहुत ख्याल रखता था। कहने को तो स्नेहा पुनीत से 7 साल छोटी थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। वो दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे। पुनीत अब खुश रहने लगा था। उस शाम पुनीत और स्नेहा साथ में ही थे जब पुनीत का फोन बजा। फोन पर दूसरी तरफ एक बहुत ही धीमी लेकिन किसी के रोने की आवाज ने पुनीत को अंदर तक हिला दिया। वो कोई और नहीं बल्कि आरती थी। वो आरती जिसको पुनीत अपना अतीत समझकर भुला चुका था, या फिर स्नेहा के प्यार के आगे उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कौन? पुनीत बोला। मैं आरती बोल रही हूं पुनीत, आरती ने कहा। आज इतने दिनों बाद तुम्हारा फोन? इसके आगे पुनीत और कुछ नहीं कह सका। आरती बोल पड़ी, तुमने तो मेरा हाल जानने की भी कोशिश नहीं की पुनीत। क्या तुम्हारा ईगो हमारे प्यार से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है? तुमने भी तो एक बार भी फोन नहीं किया। तुम्हें आजादी चाहिए थी तो लो, कर दिया मैंने तुम्हें आजाद। फिर अब क्या हुआ? पुनीत बोला, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। लो, आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लौट आओ पुनीत मेरे पास, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आरती बोली। पुनीत बस उसकी बातों को सुने जा रहा था बिना कुछ कहे, और स्नेहा उतनी ही बेचैनी से पुनीत को देखे जा रही थी।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है विकल्प। अब तक आपने सुना पुनीत और आरती एक दूसरे के साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, फिर आरती की जिंदगी में विहान आ गया और आरती को कुछ बातें पुनीत की पसंद नहीं आईं, उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर पुनीत की जिंदगी में स्नेहा आई और वो पुनीत का आरती के साथ सारा अतीत जानते हुए भी पुनीत को प्यार करने लगी और अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के दिल की बात जान चुके थे। अब आगे मुझे तुमसे मिलना है, आरती ने कहा, और बस इतना कहकर आरती ने फोन काट दिया। क्या हुआ, किसका फोन था, स्नेहा ने फोन कटते ही पूछा। कुछ देर के लिए तो पुनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा के दोबारा पूछने पर उसने धीमी आवाज में कहा, आरती का फोन था। ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, स्नेहा ने कहा। पुनीत ने आज तक स्नेहा से कभी कुछ नहीं छुपाया था और अब भी वो उससे नहीं छुपाना चाहता था। उसने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद स्नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक बार आरती से जरूर मिलना चाहिए, आखिर पता तो करना चाहिए कि वो अब क्या चाहती है। ये जानते हुए भी कि आरती पुनीत का पहला प्यार थी, स्नेहा ने ही उसे उससे मिलकर आने की इजाजत दी और सलाह भी दी। अगले दिन वो आरती से मिला और आरती ने उसे देखकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी ऐसे लग रहे हो जैसे कॉलेज में लगा करते थे। आरती, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, पुनीत ने जवाब दिया। क्यों, आरती ने पूछा, कोई आ गई है क्या तुम्हारे जीवन में? हाँ, और उसको सब पता है, उसी के कहने पर मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं, पुनीत ने कहा। क्या तुम उससे भी उतना ही प्यार करते हो जितना मुझे करते थे? क्या तुम उसको मेरी जगह दे पाओगे, आरती ने कहा। पुनीत शांत रहा, फिर उसने धीरे से बोला, हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओह, तो इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या वो, आरती? पुनीत गुस्से से वहां से उठकर चल दिया। उसे लग रहा था कि अब वो वापस क्यों आई है, अब तो सब ठीक होने जा रहा था। उस रात पुनीत को नींद नहीं आई। एक तरफ वो थी जिसको कभी उसने बहुत प्यार किया था और दूसरी तरफ वो जो उससे बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह वो स्नेहा के घर गया तो वो कुछ उदास थी। स्नेहा ने उससे कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये कहकर वो चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। आरती का फोन आते ही पुनीत अपने ख्यालों से बाहर आया। आरती, इस समय मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, उसके फोन रखने से पहले ही आरती बोली। क्यों, क्या हुआ? आरती, मैं स्नेहा को लेकर पहले से ही बहुत परेशान हूं, पुनीत ने कहा। वो अभी बच्ची है, शायद इन सब बातों का मतलब नहीं जानती, इसलिए कह दिया होगा, आरती बोली। उसके इतना कहते ही पुनीत ने फोन रख दिया और उसी समय स्नेहा के घर से निकल गया। उसने स्नेहा के घर के बाहर पहुंचकर स्नेहा से कहा, सिर्फ एक बार मेरी खुशी के लिए बाहर आ जाओ स्नेहा। स्नेहा ना नहीं कर सकी और पुनीत को पता था कि वो ना कर भी नहीं सकती, क्योंकि बात पुनीत की खुशी की जो थी। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। पुनीत ने स्नेहा को गले लगा लिया और कहा, पगली तू क्यों हटना चाहती है मेरे रास्ते से? स्नेहा ने चौंक कर पुनीत की तरफ देखा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकती, अब ये बताओ आरती ने क्या कहा है तुमसे मिलकर? स्नेहा ने रोते हुए कहा, आरती ने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी चाहती हूँ तो मैं तुमसे कभी ना मिलूं, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी के साथ है। ये कहकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। पुनीत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह तो तुम मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर जा रही हो, इतना प्यार करती हो मुझे? स्नेहा ने एक छोटे बच्चे की तरह कहा,
1: इससे भी ज्यादा।
0: पुनीत उसको हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, कितना ज्यादा? स्नेहा मुस्कुरा दी,
1: लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझसे मिली थी? क्या उसने तुम्हें बताया?
0: नहीं, पुनीत ने कहा। फिर? स्नेहा ने पूछा। पुनीत ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने तुम्हें बच्ची बोला। इतने में पुनीत का फोन दोबारा बजा। वो आरती का फोन था। पुनीत ने अपने फोन को काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और स्नेहा को गले लगा लिया। बिना कुछ कहे

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी विकल्प। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी विकल्प। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सोम फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे ही गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चनाय का, क्योंकि अलीशा चनाय का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चनाय। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चनाय के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चनाय का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चनाय। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चनाय। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चनाय के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

एलिशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था एलिशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो एलिशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर एलिशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया, यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिकाओं को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती है। बस ऐसी ही कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।